भावावरी मनाचे फुंकले मनाची या घावावरी मनाचे फुंकले।

0: सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श

विमर्श हुआ। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापान एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ परणा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
2: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक

0: नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
3: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए पीएलआई योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
4: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के चार देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित 4 सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज

0: सर्वोच्च न्यायालय को यह बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
1: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
2: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
1: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की।
3: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
1: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
4: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ो में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश वासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती है। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने की जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत। 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है, 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में $20 अरब निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ। 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य। सोसाइटी और

0: छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है। हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक। भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू प्रेजेंट 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स एट एकता नगर इन केवाड़िया दिस इवनिंग। Union Home Minister Amit Shah to inaugurate National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his counterparts from France, Ecuador, Slovakia and Switzerland on sidelines of UN General Assembly in New York. Britain agrees to provide limited military support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. And in women's cricket, India to take on Sri Lanka in gold medal clash at Asian Games in Japan this morning. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will present the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat this evening. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honors, recognizing artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature, and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards are being held outside the national capital. The ceremony at Ekta Nagar brings together cinematic talent from across the country, embodying the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. The president will also honor the veteran actor Anant Nag with the Dada Saheb Phalke Award for 2024. Our report.
3: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film.

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: नमस्कार, मैं हूँ आरजे अवनी भट्ट, आप सबके साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। आज बहुत सारी बातें होगी, 22 सितंबर है और मस्ती करनी है, ढेर सारी बातें करनी है। लेकिन एक और जो गाना है वो किशोर कुमार दा की, किशोर दा की आवाज़ में आपको सुनवाने जा रही हूँ। सो जुड़े रहिए मेरे साथ यानी कि आरजे अवनी के साथ, ओनली ऑन एफएम रेनबो।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

कहाँ उड़ चली, कहीं पे भी उड़ जाना नहीं है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ हैं। वैसे तो जब मॉर्निंग में मिलते हैं तो कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, जो वाक्य है मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। कहते हैं, 100 बरस लो जगत मही जीवत रही करू काम, 100 बरस लो जगत मही जीवत रहूं रही करू काम, रैदास कर्म ही धर्म है कर्म करहूं निह काम। रैदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो संसार में 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा के लिए निरंतर निष्काम कर्म करते रहते हैं, वैसे तो कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म करना ही मनुष्य धर्म है, वो तो है, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि कर्म कैसे करें हम। अच्छे कर्म करेंगे तो फल अच्छा भुगतना पड़ेगा। किसी ने बहुत साल पहले मुझे बताया था कि कर्म तो करो ही, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके लिए वो सोने की जंजीर है, और बुरे करते हो तो लोहे की। तो मैंने कहा बात तो सही है, कर्म करते रहने चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर हमारा आवागमन मतलब होता रहता है पृथ्वी पे मृत्यु लोक में, तो कर्म तो करते रहना चाहिए लेकिन अच्छे कर्म करने चाहिए। और आप जो भी धर्म को पालन करते हैं, जो भी धर्म का पालन करते हैं, उनका थोड़ा बहुत एक मेडिटेशन ध्यान कहो या नाम जप कहो, वो करते रहना चाहिए, ताकि हमारे जो पुराने कर्म है, हमने कुछ गलत कर्म किए होंगे तो वो भी उतने नहीं भुगतने पड़ेंगे, भुगतने तो पड़ेंगे ही लेकिन उतने नहीं, थोड़ी सी मन को शांति मिलेगी। तो सुबह सुबह ध्यान मेडिटेशन वो तो आपने कर ही लिया होगा, वैसे तो हम प्राणायाम और योगा के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये भी हमें याद आ गया।

और हाँ, सुबह सुबह क्या, कल शाम से मुंबई में बहुत बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जहाँ पे हैं, जो भी इलाके में हैं, तो वहीं पे वहाँ पे भी बारिश हुई होगी। नहीं हुई होगी तो अभी होगी, क्योंकि अभी का जो वेदर है वो बहुत अच्छा है। तो इसी वेदर पे मैं आपको एक गाना सुनाने जा रही हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी कि आरजे अवनी भट्ट के साथ, ओनली ऑन FM रेनबो।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: ध्यान दें, आपकी

को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त मुंबई कार्यक्रम के दूसरे सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करती हूं, आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अवनी भट्ट। और हमारे सभी जो लिसनर्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कि प्रमोद कारखानीस जी, रजनीकांत पाटिल, श्रेय राउत, राकेश माथुर, महेश भाटकर, दीपा पालकर, दीपाली शिरोडकर, विजेंद्र घाटोल, शुभदा जी, अजय सखारे, प्रमोद चिंचोलकर, दिवाकर शिनोय जी, डॉक्टर अंजू जी, प्रसन्ना चक्रवर्ती, हाँ बहुत सारे लिसनर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रकाश शिंदे जी भी हैं, बहुत सारे लिसनर्स, मुझे मतलब मिस ना कर जाऊँ मैं, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि प्रसन्ना जी बता रहे कि आई एम श्योर वी ऑल हैव गोट हैवी रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म्स, दिस आर लास्ट फ्यू गुड बाय रेन्स। ऐसा मत कहिए क्योंकि हमें और बारिश चाहिए, गुड बाय रेन मत कीजिए, क्योंकि अभी तो ये साल की जो बारिश है वो बहुत मेरे ख्याल से कम आई है, तो अभी चाहिए, भले ही दिवाली तक आए लेकिन बारिश चाहिए, है ना। और आप सबको भी ऐसा ही लगता होगा। वैसे हम जब मिलते हैं तो योगासन के बारे में भी बात करते हैं, 9 बज चुके हैं। हलासन के बारे में आज हम बात करेंगे। हलासन एक क्लासिक योग मुद्रा मैं कह सकती हूँ। पहले आप कौन सा आसन करेंगे, पहले तो आपको वार्म अप करना चाहिए। सीधा हलासन कोई नहीं करेंगे जो योग स्पेशली रेगुलर करते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की सेहत को बेहतर बनाने के लिए, रखने के लिए नियमित रूप से योगासनों के अभ्यास को आवश्यक माना जाता है। ये तो आप मानेंगे ही, क्योंकि जितनी बार हम मिलते हैं तो ये बात तो हमारी होती ही है। तो आपको जो वार्म अप कर लेना है, फिर आप अपना एक रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से बना सकते हैं कि जैसे आपने सूर्य नमस्कार कर लिए 12, या तो फिर स्टार्टिंग में आप प्राणायाम से शुरू कर सकते हैं, ओमकार उद्विक प्राणायाम से, वो भी शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो अपने हिसाब से एक अच्छे से टाइम टेबल बना लीजिए और उसके बाद एक एक आसन कीजिए। जैसे हम लोग जब भी करते हैं तो उसमें हम हफ्ते में पेट के आसन है या पीठ के आसन है तो वो हफ्ते में एक बार करते हैं, तो वो एक अलग सेशन रहता है कि फ्राइडे को ये करना है। तो हलासन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हलासन को हम प्लो पोज भी बोल सकते हैं। प्लो पोज ऐसा ही एक कहते हैं ना अद्भुत योग मुद्रा है। इसमें आपकी पीठ के बल लेटकर और पैरों को अपने सिर के पीछे की ओर से ले जाना होता है। वैसे तो आपको स्टूडियो में बैठ के दिखा नहीं सकते, लेकिन आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। इस मुद्रा में शरीर की स्थिति हल्के आकार की हो जाती है, और हलासन का अभ्यास जो है वो रक्त परिसंचरण को बढ़ाने, रक्तचाप यानी कि आपका जो बीपी है उसमें सुधार करने, और आपका जो ब्लड शुगर है उसके स्तर को भी कम करने में मददगार माना जाता है। कोई भी आप एक्सरसाइज करेंगे, आप समझो हलासन के बारे में बात की, आपको कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है तो आप एक आधा घंटा वॉक कर लीजिए, उससे भी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा। और आजकल एक प्रॉब्लम होता है काफ़ी लोगों को, ये चल रहा है भाद्र पक्ष। भाद्र पक्ष में, भाद्र जो महीना होता है उसमें वात की स्थिति यानी कि गैस की जो स्थिति है बॉडी में वो बढ़ जाती है, पीत की भी बढ़ जाती है। तो लोगों को क्या होता है, अचानक ही कमर में दुखने लगता है, 3 दिन तक मतलब खड़े नहीं हो सकते, या तो घुटनों में दर्द होता है। ऐसा आप में से किसी को तो होता ही होगा आजकल, तो उसमें क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले हम किशोरदा की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ यानी कि अवनी के साथ, ओनली ऑन FM रेनबो।

वैसे हमारी जो बातें हैं वो योगासन पे हो रही थी और खास करके आज हमने हलासन पे बात की थी। तो हलासन करने से पहले अगर आपने सर्वांगासन कर लिया तो वो बहुत ही बेहतर है। सर्वांगासन करने के बाद हलासन करना इजी हो जाता है। और हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आज एक्सरसाइज किए, जैसे कि दीपा जी बता रही है कि हमने आज बॉडी पार्ट टैपिंग एक्सरसाइज 15 मिनट किया और बाद में वॉकिंग किया मराठी गाने सुनते सुनते, क्योंकि हमारा अगला प्रोग्राम उस टाइम पे चल रहा था। बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं और साथ में म्यूज़िक बजता है ना तो वो मतलब मज़ा आता है, कहाँ पे समय चला जाता है पता नहीं चलता। फिर यशवंत आनमुड़े जी पूछ रहे हैं कि शीर्षासन करने में मतलब कितना टाइम लगाना चाहिए। तो शीर्षासन बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे हिसाब से, ये मैं तो नहीं करती लेकिन जिन्होंने जो करते हैं उनको मैंने देखा है, तो 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट है और आपके सर के बल आपको रहना है। तो ये अगर जिनकी प्रैक्टिस होती है उनको ही करना चाहिए, या तो बचपन से जो कर रहे हैं उनको। अचानक कोई 40-50 पे शुरू करेंगे तो वो ठीक नहीं है अपनी सेहत के लिए भी। तो दूसरे आसन तो काफ़ी है, वो तो आप कर सकते हैं और आई एम श्योर कि आप करते हैं कि नहीं वो आपने बताया नहीं है, लेकिन शीर्षासन डिफ़िकल्ट है। और फिर हमारे साथ किन्होंने बात की, प्रसन्ना जी भी कुछ तो बता रहे थे, मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या मैसेज किया है। अच्छा, पंकज मौर्य जी भी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ, अच्छा बारिश के बारे में बात कर रहे हैं कि पिछले मंगलवार को हुई थी, उसके बाद नहीं हुई तो अभी होगी क्योंकि ये जो सेकंड राउंड है वो चालू है। बीच बीच में तो आती ही रहती है ये सीज़न में, लेकिन मतलब अभी चाहिए, बारिश तो चाहिए। और दीपाली जी बता रही है कि गणपति का प्रसाद तो सबने लिया ही होगा। अच्छा, आपने भेजा है, थैंक यू सो मच। आप सब मुझे यहाँ पर प्रसाद भी भेज रहे हैं, चाय भी भेज रहे हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं। अब प्रसाद की बात हुई तो मुझे याद आया कि आप 5 दिन के गणपति, 7 दिन के गणपति, कई लोगों के घर गए होंगे, प्रसाद लिया होगा, काफ़ी कुछ खाया होगा जैसे कि छोले पराठे हैं, तो फिर होता है ना कि सेहत का थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता क्योंकि जहाँ पे जाएंगे वो तो भर भर के मतलब अच्छे से खिलाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ खास करके आहार के बारे में, और ये जो चीज़ें हैं जैसे कि आपने दही वड़ा खाया होगा या छोले खाए होंगे, तो उससे पेट में जो वात है वो बढ़ता है, वो बढ़ता है इसलिए फिर आपको अचानक ही कुछ पेन होने लगता है, कमर में होने लगता है, घुटनों में होने लगता है, तो आपको लगता है कि आपसे कुछ मचक आ गई है। मचक नहीं आई है, वो गैस जो होता है बॉडी में जहाँ पे खाली जगह देखता है वहाँ पे आ जाता है, और वहाँ पे आता है इसलिए आपको वहाँ पे दर्द होता है और समझ में नहीं आता, इतना दर्द होता है कि वात इतना मतलब वायु जो है वो इतना दर्द कर सकता है ऐसा हमें मन में नहीं मतलब समझ में नहीं आता। और फिर हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास भी जाते हैं और एक्सरे भी करवाते हैं। बहुत तकलीफ़ है तो ऑब्वियसली आपको जाना चाहिए, नहीं तो आपको 2 दिन ये सोचना चाहिए कि ये जो तकलीफ है मुझे किस वजह से हो रही है। तो ये सीज़न ही ऐसी है, गुजराती में इसको भादरवा महीना कहते हैं, भाद्र पक्ष कहते हैं, ये सीज़न में ऐसी चीज़ें होना मतलब ना हो उसके ऊपर आप बिल्कुल ध्यान रखें। और भी मुझे बताना है कि आजकल चिकनगुनिया है, मलेरिया भी हो रहा है, तो उसको हम कैसे ना आए, और वो जो ब्लड है उसमें जो मच्छर अगर आपने काट भी लिए तो वो जो वायरस है बैक्टीरिया है वहीं तक रहे, फैले नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। लेकिन एक गाना सुनेंगे हम विनोद राठौड़ की आवाज़ में, बहुत ही सुंदर सा गाना है, चलिए सुनते हैं मेरे साथ, क्योंकि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल।

छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। बहुत ही खूबसूरत सा गाया ये गाना विनोद राठौड़ जी ने। 9:27 होने को है और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ठीक 9:30 आप सुनेंगे एशियन गेम्स के बारे में और फिर मैं वापस हाजिर रहूँगी। तो बस एक और प्यारा सा गाना हरिहरन जी और साधना सरगम की आवाज़ में हम सुनना चाहेंगे।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

0: सारे इवेंट्स हमने देखे हैं और देखने को भी हमें मिले। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कबड्डी में भारतीय टीम का जो प्रदर्शन अभी तक रहा है वो बहुत ही डोमिनेटिंग रहा आज इन द मेंस ग्रुप ए, जहां पर हमने साउथ कोरिया को 63-31 से हरा कर एक बहुत कन्विंसिंग जीत के साथ आज के दिन की शुरुआत करी। उम्मीद भी भारतीय कबड्डी के खिलाड़ियों से यही रहती है कि हमारा, क्योंकि इस खेल के अंदर हमेशा ही दबदबा बना रहा है, हम इसी तरह से जीत हासिल करें। मूविंग ऑन टू सॉफ्ट टेनिस, जैमीन आर रजिस्टर्ड अ क्लीन 4-0 स्वीप अगेंस्ट पाकिस्तान हुसैन अरायन एंड मेन्स सिंगल्स ग्रुप डी, वाइल आद्या तिवारी फेल 1-4 टू थाईलैंड अलीशा जिलगर इन वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी। पेंसिंग की भी अगर हम बात करें तो सचिन और हिमांश सिंह, दोनों सचिन हमारी तरफ से थे पूल 5 के अंदर और हिमांश सिंह रहे पूल 1 के अंदर, उन्होंने चौथे स्थान पर अपने अपने पूल के अंदर मेंस इंडिविजुअल फॉयल में फिनिश किया। वहीं अगर कराटे की बात करें तो चेतन भट्ट सफर्ड हार्ट ब्रेक इन द मेंस 84 kg कुमिती सेमीफाइनल, नैरोली मिसिंग आउट ऑन अ स्पॉट इन द फाइनल वाया द सेंच रूल। अब स्विमिंग की ओर बढ़ते हैं। आर्यन नेहरा टच द वॉल 4th इन फाइनल बी ऑफ द मेंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल। वुशु में हमारी तरफ से देवी हंजाबाम फिनिश 9th इन द वुमेन्स नान क्वान फाइनल। एंड मूविंग ऑन, यहां से भी आगे आएंगे सेपक तरो की तरफ, जहां इंडिया की कैंपेन सफर्ड अनदर सेटबैक फॉलिंग 0-2 मलेशिया इन मेंस टीम रेगू ग्रुप बी। एंड नाउ द ब्राइटर न्यूज ऑफ द डे, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं। बॉक्सिंग के अंदर साक्षी चौधरी हैज एंटर्ड इनटू द राउंड ऑफ 16। जी हां, शी डिलीवर्ड अ टैक्टिकल मास्टर क्लास इन द फाइनल राउंड, मैनेजिंग द रिंग स्मार्टली टू सील अ यूनानिमस 5-0 विक्ट्री ओवर पेरिस ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आयरा विलिगस, कंट्रोलिंग द पेस, लैंडिंग प्रिसाइज शॉट्स एंड थ्वार्टिंग विलिगस अटेम्प्ट्स टू ब्रिज द गैप, द इंडियन प्यूजलिस क्रूज थ्रू टू द राउंड ऑफ 16। वेल, अब साक्षी के लिए यहां से आगे का सफर दिखाता है कि शी विल बी अप फॉर अ प्री क्वार्टर फाइनल क्लैश अगेंस्ट कजाकिस्तान्स रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन आलुआ बालकिबेकोवा। इसके बाद एक नजर बैडमिंटन की ओर भी आज डाल लेते हैं। बैडमिंटन में कहूंगी मैं कि पीवी सिंधु का के साथ आज बैडमिंटन की जो शुरुआत हुई, वहां पर हमने देखा कि कैसे पीवी सिंधु वाज अप अगेंस्ट जापानीज अकाने यामागुची। शुरुआत के मैचेस में या गेम्स में कहेंगे, पहला जो गेम था जहां पर पीवी सिंधु ने उस गेम को अपने नाम किया 23-22 से, वेरी नैरली बट अ वेरी गुड गेम दैट वी गॉट टू विटनेस, शी वाज एबल टू विन। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे गेम के अंदर, पीवी सिंधु गॉट बीटन बाय द जापानीज 21-18 से, और तीसरा गेम फिर से क्विक सक्सेशन में पीवी सिंधु हार गई अपनी जापानीज ओपोनेंट से 21-11 से। As a result, that did not go in India's favor. उसके बाद आई उन्नति हुड्डा, जिन्होंने गेम नंबर 2 में, मैं कहूंगी उन्नति हुड्डा की तरफ से भी परफॉर्मेंस बैडमिंटन में निराशाजनक ही आज रहा, क्योंकि जो इसमें भी हमने देखा वहां पर भी शी वॉज इनिशियली ट्राइंग टू विन द गेम बट देन वेंट ऑन टू लूज द गेम अल्टीमेटली। डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम उन्नति हुड्डा एज तोमोका मायाजाकी फ्रॉम जापान मेड एन एग्जेम्पलरी कमबैक टू टेक द सेकेंड गेम अवे फ्रॉम हर 21-18। पहला गेम तो वो हार ही चुकी थी 16-21 से, और दूसरा गेम दोबारा से वो हार गई, जिसकी वजह से यहां पर भी वुमेन्स टीम का जो क्वार्टर फाइनल में कंटेंशन हम चाह रहे थे, क्योंकि ये पूरा एक टीम गेम है, वो हमारे लिए बहुत हमारे फेवर में नहीं गया। एंड थर्ड मैं बात करूंगी यहां पर कि उम्मीदें अभी बनी हुई हैं गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली से, लेकिन उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो ओपनिंग मैच जरूर हमने जीत लिया है अगेंस्ट यूकी फुकुशिमा और मायू मत्सुमोतो। दिस इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली, जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली, लेकिन अगर इनको हमारे सेमीफाइनल के होप्स को लाइव रखना है तो बहुत जरूरी है कि ये गेम भी ये जीते। सो फार इट्स नॉट बीन टू ब्राइटर न्यूज ओवरऑल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन, एंड शूटिंग वंस अगेन टर्न्ड आउट टू बी The biggest disappointment, should I say, of the day today, because बहुत उम्मीदें थी 10 meter air rifle mixed team finals के अंदर, लेकिन rifle shooting के अंदर हमारा जो रहा, India finished 4th and hence missed out on a medal. Well, Elavenil, Valarivan और Parth Mane were shattered by the result as they finished 4th with 376.3 points. So far, the best news I can say has come only from the world of boxing. लेकिन दिन अभी बहुत लंबा है, क्रिकेट भी आने वाला है जहाँ पे भारत का मेडल कंटेंशन रहेगा। We'll keep bringing these updates to you every hour. For now, it's a goodbye.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर। हम बात कर रहे थे कि भाद्र महीना जब चलता है तो क्या क्या तकलीफें होती है, और उसका भी सॉल्यूशन तो हर जगह पे रहता ही है। जैसे कि हम फूड की बात कर रहे थे, भाद्र में आपको पता होगा अभी तो गणपति फेस्टिवल है, वो पूरा होने जा रहा है 26 तारीख को, 25 तारीख को, और फिर भाद्र पक्ष के जो पितृ पक्ष है उसकी शुरुआत हो रही है। तो ज़्यादातर ये महीने में खीर क्यों खाई जाती है, आपको पता है खीर क्यों खाई जाती है इस महीने में ज़्यादा, आपको मुझे बताना है। तब तक हम एक गाना सुनते हैं मन्ना दा की आवाज़ में, तब तक मैं वेट करूंगी कि खीर क्यों खाई जाती है इस महीने में।

जिंदगी कैसी ये पहली हाय। वैसे तो मैं आप सबकी वेट कर रही हूँ, जैसे आप राजेंद्र बापाया जी बता रहे हैं कि योगा टीचर मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ। मैंने बोलने से पहले टिप्स, क्या बात है, अच्छा मेरे बोलने से पहले, थैंक यू सर। प्रमोद चिंचोलजर भी बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि अवनीत दीदी आज

योगा जो है वो किया है, और किशोर नायक जी भी है हमारे साथ. एंड उन्होंने कहा कि आई जस्ट केम बैक फ्रॉम साइकिलिंग एट वर्ली कोस्टल रोड. वेरी गुड सर, ये सबको करना चाहिए. साइकिलिंग है, फिर वॉकिंग है, जॉगिंग है, हमें एक्सरसाइज करनी है. आप सबके मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँ. मैंने अभी आपको पूछा था कि भाद्र पक्ष में खीर क्यों खाई जाती है. खैर, मैं ही आपको बता देती हूँ कि भाद्र में खीर खाने का वैज्ञानिक महत्व क्या है. कभी कभी घर पे आपको बच्चे पूछते होंगे ना कि खीर क्यों बनाई जाती है इस टाइम पे. वैसे तो आजकल हम लड्डू भी बनाते हैं श्राद्ध पक्ष में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खीर सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो बिना उपयुक्त वातावरण में नहीं पनप सकते. और कहीं पे आप आजकल आजू बाजू में भी कुछ लोगों से सुनते होंगे कि इनको चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया. तो जब हमारे बॉडी में पित्त जो होता है वो बढ़ता है, तब ये चीज़ें होने के रीजन्स, मतलब रीजन तो क्या कहूँ, हो जाते हैं. ऐसे ही मलेरिया के जो बैक्टीरिया है वो जब पित्त का वातावरण उसको मिलता है, मतलब अपने बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, पित्त मिलता है, तभी वो चार दिन में पूरे शरीर में, जैसे कि मच्छर ने आपको काट लिया और आपके शरीर में पित्त ज़्यादा है, एसिडिटी ज़्यादा है, तो मच्छर ने काटा, फिर वो जो बैक्टीरिया है वो खून में पनपते हैं. और आगे क्या होता है, तभी वो चार दिन में पूरे शरीर में फैलते हैं, नहीं तो थोड़े समय में समाप्त भी हो जाते हैं अगर आपका जो बॉडी है वो बेस वाला होगा तो. इतने सारे प्रयासों के बाद भी मच्छर और कहते हैं ना रोगवाहक सूक्ष्म कीट नहीं काटेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ तो कर सकते हैं. पित्त को नियंत्रित रखना तो हमारे हाथ में है. शरद भाद्र में 5-7 बार आपको खीर खानी चाहिए, क्योंकि खीर खाने से आपके बॉडी में जो एसिड होता है वो कंट्रोल में आता है और बेस बन जाता है जो दूध रहता है उसमें. इसलिए दूध भी अच्छा वाला दूध, आजकल मतलब वो सब चीज़ें क्या आप खा रहे हो उसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है. तो खीर से आपके शरीर में बेस बनता है, और इसलिए ये सीज़न में बारिश भी मतलब छोटी मोटी होती रहती है और फिर आपको मच्छर काटते हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा, आपको डेंगू नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. आपको अपने बॉडी में ध्यान रखना है कि आपके बॉडी में वात है, पित्त है या कफ है, उस चीज़. और हाँ, दूसरी चीज़, ये जो आप खीर बनाते हो उसमें आपको ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डालने, क्योंकि ज़्यादा ड्राई फ्रूट से भी एसिड जो है वो बॉडी में बढ़ता है. तो आई एम श्योर कि आप खीर बनाएंगे, लेकिन सिंपल खीर बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे. ये खीर हमारे शरीर में पित्त के प्रकोप, जो प्रकोप कहते हैं ना, उसको कम करती है, और आप मतलब सेहतमंद रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. चलिए एक और प्यारा सा गाना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में. जुड़े रहिए मेरे साथ यानी कि अवनी के साथ, ओनली ऑन FM Rainbow

वैसे 9:55 मिनट होने को है और आपको बता दूं कि 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रंजीता कौर का आज जन्मदिन है। हम उन्हें जन्मदिन की शुभेच्छा देना चाहेंगे एफएम रेनबो और उनके चाहने वालों की ओर से। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। और उनको जब याद करते हैं तो कौन सा गाना याद आता है, आपको याद ही होगा क्योंकि सिनेमा जगत में उनकी सादगी, मासूमियत और बेहतरीन अभिनय के लिए उनको जाना जाता है। उनकी कहते हैं ना, सबसे प्रसिद्ध फिल्में अखियों की जरोखे से, लैला मजनू और आप तो ऐसे ना थे। उनके सदाबहार गीतों की लाइनें और संवाद जो है वो आज भी लोगों के दिलों को छू जाते हैं। रंजीता कौर की फिल्मों और उनके यादगार किरदारों पर आधारित कुछ बेहद खूबसूरत मैं गाने तो मैंने आपको बता दिए, गाना ही सुना देती हूँ क्योंकि ये गाना हम उनको डेडिकेट करना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और ये गाना हम रंजीता कौर को डेडिकेट करेंगे, आज उनका जन्मदिन है।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, अभी के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर है। राष्ट्रपति आज शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समाचार में आगे, रक्षा मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 500

से करोड़ रुपए के उपकरण खरीदने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। स्वदेशी रूप से विकसित एपीयू को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता और विश्वसनीयता और बढ़ेगी। समाचार में आगे, सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने कल मुंबई के महालक्ष्मी स्थित किंग जॉर्ज पंचम मेमोरियल ट्रस्ट का दौरा किया। श्री वर्मा ने उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास प्राप्त कर रहे बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों तथा बौद्धिक और बहुदिव्यांगता वाले बच्चों से लोगों से बातचीत की। समाचार के अंत में, जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक के मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। अभी के मुख्य समाचार यहाँ पर समाप्त हुए। धन्यवाद।

वैसे हमारी कहते ना कि जो बात है वो, माफ कीजिएगा, हम जो बात करने जा रहे हैं आपसे कि इसके पहले भी हमने बात की कि जब भी ये काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और खाने पे हम ध्यान देते हैं, तो खाने पे ध्यान होना ही चाहिए, क्योंकि हमने अभी खीर की बात की कि अभी चल रहा है भाद्र पक्ष, तो भाद्र पक्ष में खीर क्यों खाई जाती है, क्योंकि दूध है, चावल है, मिश्री से बनी खीर जो है उसकी तासीर जो है वो अत्यधिक शीतल होती है, इसलिए पित्त नहीं होता, और ये चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। वैसे इसमें हम चावल ऐड करते हैं, नहीं तो आपके पास अगर मिलेट्स है तो वो तो उससे भी बड़ी अच्छी बात है कि आपको ग्लूकोज जो है वो बढ़ेगा नहीं, डायबिटीज़ जिनको है उनको तकलीफ़ नहीं होगी, तो आप कुटकी है, कंगनी है, मतलब जिनको बनियाड बोलते हैं, सामा है जो फास्ट में हम खाते हैं, ये सब मिलेट्स जो है वो आप फास्ट में खा सकते हैं, चावल आप फास्ट में नहीं खा सकते। तो ऐसे दिन जैसे कि आज फास्ट की बात करें तो आज एकादशी है, तो कई लोगों ने एकादशी भी की होगी, तो आज भी आप खीर बना सकते हैं, लेकिन आप इसकी कुटकी, कंगनी, जिनको हम क्या बोलते हैं, बनियार्ड बोलते हैं, ब्राउन टॉप मिलेट बोलते हैं, फॉक्सटेल बोलते हैं, तो इनकी आप बना सकते हैं, आपको कोई उससे तकलीफ़ नहीं होगी। और हाँ, जैसे ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, लेकिन आप इलायची डाल सकते हैं, क्योंकि इलायची की तासीर जो है वो भी ठंडी होती है। तो ज़्यादा भी नहीं खाना है, मित आहार करना है, और ख़ास करके जब आप फास्ट करते हो, फास्ट हम क्यों करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग ऐसे वैसे थोड़ी है, या तो ऋषि मुनि जो है उन्होंने ऐसा क्यों बनाया होगा, क्योंकि हम जो खाते हैं उसमें मतलब मित आहार यानी कि कम आहार लेते हैं, उससे हमें नींद नहीं आती, नींद नहीं आती तो आपका फोकस बढ़ता है, आपका ध्यान जो है, आप जो भी प्रभु का नाम ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका ध्यान जाता है, तो हमें उसके लिए ज़्यादा आज के दिन या तो जब भी आप फास्ट रहते हो उस दिन आपको नहीं खाना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारी होती रहेगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक प्यारा सा गाना सुनाने जा रही हूँ उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। जुड़े रहिए आरजे अवनी भट्ट के साथ ओनली ऑन FM रेनबो। और हमारे सुखविंदर सिंह जो गौड़ा जी है, पंकज मोहत जी है, प्रणव शिंदे है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, थैंक यू सो मच। अगला गीत बहुत ही प्यारा सा है, जुड़े रहिए, क्योंकि आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल।

दूसरी बातें करनी है और फिर भी याद आ जाता है कि अरे ये तो कहना भूल गए। आपको बता दूं कि आज के दिन या तो फिर आप जब भी फास्ट करते हो या भाद्र पक्ष आप रहते हो तो आप रेगुलर योगा तो करते ही हो, इसलिए आपका बॉडी जो है वो हैबिचुएटेड है उससे। लेकिन आपको लगता है कि हाँ मुझे पित्त हुआ है, एसिडिक फील हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको कपालभाति जो प्राणायाम है वो नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? शीतली प्राणायाम करना चाहिए। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं? जो बाहर की हवा है उसको अंदर लेते हैं। उसके बारे में भी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, नहीं तो पूरा शो अपना इसमें ही चला जाएगा। ऐसे करके अंदर लेते हैं और फिर नाक से श्वास जो है वो छोड़ते हैं, तो उससे शीतली प्राणायाम मतलब पेट के अंदर ठंडक होती है। दूसरी चीज़ एक और भी बता दूं कि ये सीज़न में क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे कि भिंडी की सब्ज़ी जो है, भिंडी है वो नहीं खानी चाहिए। ऐसा नहीं बोल रही कि बिल्कुल मत खा।

खाओ लेकिन थोड़ा खाओ, कम खाओ। बैंगन की सब्जी वो नहीं खानी चाहिए, कम खाओ। और हो सके तो सैलड हम खाते हैं, ककड़ी ये भाद्र पक्ष में ये महीने में नहीं खानी चाहिए। ये लोग बहुत गलती करते हैं, ककड़ी खाते हैं, दही खाते हैं, कई लोग ककड़ी को दही में मिक्स करके खाते हैं, तो इससे आपका पित्त बढ़ेगा, वात बढ़ेगा। इसलिए आपको सैलड में ये सीज़न में ककड़ी नहीं खानी है। बाद में मुझे मत बताना कि हमारे जो पैर है वो जकड़ गए, हमारी कमर जकड़ गई, और कुछ कौन से गुजराती में या मराठी में इसको बोलते हैं कि शब्द मैं भूल जाती हूँ, स्पेसिफिक वर्ड है जो हो जाता है, जकड़न होती है उसको, तो खैर याद आएगा मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आज के दिन, आज है 22 सितंबर, आज है विश्व रोज डे। ये दिन जो है वो कैंसर पीड़ितों के जीवन में आशा, प्रेम और खुशियाँ बांटने के लिए मनाया जाता है, और ये दिन मेलिंडा रोज की याद में समर्पित है। दूसरा बता दूँ कि आज है वर्ल्ड राइनो डे। राइनो यानी कि गेंडा, गेंडे की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने और उनके शिकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये वैश्विक दिन जो है वो मनाया जाता है। आज है वर्ल्ड रोज डे एंड वर्ल्ड राइनो डे। और भी आज के दिन की बात करेंगे, लेकिन एक प्यारे से खूबसूरत गाने के बाद। से जुड़े रहिए आरजे अवनी भट्ट के साथ ओनली ऑन FM रेनबो।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

0: खास गणेशोत्सवानिमित्त जय गणेश नवीन डिपॉझिट स्कीम।
1: व्याजदर सर्वसाधारण ठेवीदार 7.25%, ज्येष्ठ नागरिक 7.40%, ठेव कालावधी 444 दिवस, मासिक आणि त्रैमासिक व्याजांच्या पर्यायांसह।
0: ही योजना फक्त 25 सप्टेंबर 2026 पर्यंतच, अटी लागू।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव्ह बँक, जीवन करा समृद्ध।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स के साथ। मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त है अभिनव पुंशी और हम लेकर आ गए दोस्तों आपके लिए सुबह 11:30 बजे का अपडेट। सबसे पहली जो न्यूज़ मैं आपको देने वाली हूँ वो है बैडमिंटन की दुनिया से। कोई अच्छी खबर तो लेकर नहीं आ रही हूँ लेकिन निराशाजनक खबर ही आपको दूंगी कि भारत का बैडमिंटन के अंदर का जो सफ़र है वो आज आकर समाप्त हो गया। जी हाँ, हम जापान से 3-1 से हार गए और इसके साथ ही साथ क्वार्टर फाइनल्स के आगे हम प्रवेश भी नहीं कर पाए। भारत की तरफ से पीवी सिंधु का जो पहला मुकाबला था उनकी जापानीज ओपोनेंट अकाने यामागुची से वो 23-11, 18-11, 11-21 से हारी। उन्नति हुडा लॉस्ट तुमोका मियाजाकी आल्सो 16-21, 18-21 और फाइनली त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला भी उन्होंने भलाई हराया था यूकी फुकुशिमा और मायू मात्सुमोता को 21-17, 21-16 से। इकलौती जो हम कहेंगे जीत इसके अंदर भारतीय खिलाड़ी को मिली लेकिन वो जीत अपने आप में काफ़ी नहीं थी क्योंकि ये एक गेम था जो इन दोनों ने हमारे लिए जीता।

0: और फाइनली तन्वी शर्मा हार गई नोजोमी ओकुहारा से 21-12, 21-10। यानी अंत में हमने देखा कि 2-3-1 से भारतीय टीम जापानियों से हार गई।
1: मगर देयर इज गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेबल टेनिस। जी हाँ, इंडिया ने जीत वहां पे पाई टेबल टेनिस के अरीना में से। इंडिया वन देयर मैच 3-2 and the star for India was Yashwini Gurpale, who won two matches. Yaad dilaye is match mein, is time India was down 2-1, magar 3-2 se jeet mili. Aur fir Shreeja Akula, thanks to her, India through to the quarterfinals. Aur North Korea se hamara samna hoga quarterfinals mein 3:50 mein. So look out for that. And now some news from the world of swimming.
0: Yes, Abhinav, and now I bring in the bright news for all our listeners, because अगर हम स्विमिंग की बात करते हैं तो भारतीय स्विमर्स की जो टीम है 4x400 meter medley relay final के अंदर वो क्वालिफाई कर गए हैं। ये फाइनल होगा हमारा 2:55 भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ये टीम हमारी बनी है ऋषभ दास, दानुष सुरेश, बेनेडिक्शन रोहित और आकाश माणे की वजह से, जिन्होंने कुल मिलाकर अपनी जगह आज इस फाइनल्स रिले फाइनल्स के अंदर दर्ज कर ली। बिकॉज भारत ने समाप्त किया 7th स्पॉट पर फ्रॉम अ टीम टोटल टीम ऑफ 16 टीम्स दैट वर प्रेजेंट इन द हीट्स।
1: And now moving on to cricket, all the eyes are on our women in blue, jinka aaj chal raha hai gold medal match against Sri Lanka. It's a repeat of the Asia Cup final. Bas India ko repeat karna hai jo unhone kara tha Asia Cup final mein, aur jeet hasil karni hai kyunki India won the toss. They were elected to bat first, and as we are talking, Smriti Mandhana has hit a superb boundary. So best of luck to the Indian team.
0: Yes, indeed. And hopefully India finishes on a good note over there against Sri Lanka. Now to carry on the good news, soft tennis ki duniya mein aapko bata dein ki Bharat ne Pakistan ko hara diya. Ji haan, Jai Meena took on Aryan Hussain in the men's singles group D clash, jahan par unhone outplay kar diya Pakistan ke Aryan Hussain ko 4-2, 4-0, 4-2, 4-0 se. And as a result, we were able to secure that victory. Lekin soft tennis ki duniya mein ek khushkhabri jahan main aapko de rahi hu, wahi pe aapko ek khabar aisi bhi dungi jo thoda sa setback रहा है हमारे भारतीय खिलाड़ी के लिए, क्योंकि आद्या तिवारी सफर 1-4 डिफीट टू थाईलैंड अलीशा जियलगर इन वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी।
1: एंड गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग इज साक्षी चौधरी आर कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने हराया पेरिस ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एरा वेलिगास को इन द वुमेन्स 51 kg राउंड ऑफ 32, और हराया भी है कॉम्प्रीहेंसिवली, तीनों राउंड्स मिले साक्षी को, एंड शी रजिस्टर्ड अ 5-0 विन। एंड याद दिलाएं आर आर्मी मैन जादूमणि सिंह, ही इज इन एक्शन एज वेल अगेंस्ट चांद बहादुर थापा इन द 55 kg राउंड ऑफ 32।
0: Right, and the last update and a quick one that we bring to you is from the world of karate, but not a lot of good news, because karate mein women's kumiti 55 kilogram ki category mein Alicia suffered a 1-6 defeat against Indonesia's Kok Istri Agyung Sanastiraini in the round of 16, aur Chetan Bhagat bhi apna bronze medal match aaj haar gaye Chinese Taipei ki Chung Myong Yu se. As a result, not a lot of good news from the world of karate, Abhinav.
1: But we are hoping for much better news from the world of cricket. And of course, we have some big matches to look forward to, big encounters look forward to for India today. So please tune in an hour at Akashwani 11:30. We will give you the latest update from Asian Games, from Aichi Nagoya. Se. And hopefully, we have some better news and some great news for all you Indian fans out there. Thank you so much for tuning in on Akashwani.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

10:36 होने को है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्ते भारत। नमस्ते भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं और सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि आज है 22 सितंबर और आज किन का जन्मदिन है। 1979 में जन्मे हुए रोहित सरदाना जो कि भारतीय समाचार वक्ता थे उनका आज जन्मदिन है। 1950 में जन्मे पवन कुमार चामलिंग जो कि भारत के सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री थे तथा राजनीतिक दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक, उनका भी आज जन्मदिन है। और 22 सितंबर को हुए निधन के बारे में बताना चाहूँगी। आशालता वाबगांवकर मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री, उनकी आज पुण्यतिथि है। एफएम रेनबो की ओर से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मंसूर अली खान पटोड़ी

उनका नाम किसने नहीं सुना होगा, भारतीय मशहूर भारतीय क्रिकेटर जिनका भी आज निधन हुआ था 22 सितंबर 2011 को, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1991 में दुर्गा खोटे हिंदी व मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री, आपने उनकी कई सारी फिल्में भी देखी होगी। अगर आपको याद आता है तो सबसे पहले जब दिमाग में उनको याद करते हैं तो मुगले आजम फिल्म याद आती है। 1991 में उनका निधन हुआ, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एफएम रेनबो और हम सबकी ओर से। और सिखों के पहले गुरु यानी कि नानक देव को भी हम याद करना चाहेंगे, आज उनकी भी पुण्यतिथि है, हम उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और अगला गाना जो है रहमान की आवाज़ में, एआर रहमान साहब की आवाज़ में मैं आपको सुनवाना चाहूँगी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल और एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी कि डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ यानी कि आरजे अवनी भट्ट के साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो।

दिल से रे, दिल से रे, बहुत ही सुंदर सा गाना रहमान साहब की आवाज़ में हमने सुना और संगीत भी उन्होंने ही दिया था, कंपोज गाना जो है वो उन्होंने ही किया था। 10:45 होने को है और जब भी हम मिलते हैं तो मंगलवार खास करके कुदरती संपत्ति के बारे में भी बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसे ही आया था कि आपको भी लगता है कि जैसे गणेशोत्सव अभी भी चल रहा है तो उसमें जो गणपति की मूर्ति बनाई गई है अभी तो कुछ ऐसे मटेरियल की जाती है, या तो इको गणपति तो अभी बहुत चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया होगा उन्होंने जो सोचा होगा कि कुदरती संपत्ति से ही हम गणेशोत्सव कैसे सेलिब्रेट करें, मिट्टी से जन्म और मिट्टी में विसर्जन। शादू माटी जो आती है ना, प्राकृतिक मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, पारंपरिक रूप से गणेश जी की मूर्तियाँ नदी या तालाब के किनारे प्राकृतिक मिट्टी जो है उससे, वहाँ की मिट्टी से ही बनाई जाती है, और विसर्जन जो होता है वो उत्सव के अंत में मूर्ति को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये भी अपनी कुदरती संपत्ति, मतलब जहाँ से हमने लिया वहीं पे उनको समर्पित कर दिया। दूसरी एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि पत्री पूजा क्या होती है, 21 प्रकार की जड़ी बूटियाँ और वनस्पतियाँ, ये आपने सुना होगा अपने फोरफादर से या अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि गणेश चतुर्थी की पूजा में गणपति बापा को 21 प्रकार की पत्तियाँ चढ़ाई जाती है, जिसमें दुर्वा होता है, अभी सीजन भी है, बारिश हुई है तो घास है, तुलसी है, नीम है, पीपल है, बेलपत्र है और धतूरा भी शामिल है। कनेक्शन क्या है इसका कि ये अनुष्ठान भारत की समृद्ध वनस्पति की पहचान करवाता है और मॉनसून के मौसम में उगने वाली इन पत्तियों में औषधीय गुण भी होते हैं और इनकी पूजा करना जो है वो समाज को वनस्पतियों के संरक्षण की याद दिलाता है, उन्हीं से लिया उन्हीं को दिया है ना। तो ये जो है वो कुदरती संपत्ति से, मतलब कह सकते हैं कि हमने गणेशोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया। आइए एक और गाना प्यारा सा सुनवाने जा रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा, और ये जो फिल्म है उसको भी रिलीज हुए आज ही के दिन 20 साल हो गए हैं, डोर फिल्म का ये गाना हम सुनेंगे।

ये हौसला, ये जो फिल्म है वो आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी, और जैसे मैंने आपको बताया ये खोसला का घोसला, वो फिल्म भी बहुत ही प्यारी है, और हमने सुना है कि उसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। हम वेट करते हैं कि जल्दी से आ जाए। और अभी प्राकृतिक और कुदरती संपत्ति की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि कई क्षेत्रों में गणेश जी के साथ उनकी माता गौरी जी को भी हम लाते हैं ना, सातवें दिन पर उनका विसर्जन करते हैं। गौरी की पूजा की जाती है, और ग्रामीण और पारंपरिक इलाकों में

माता गौरी को किसी मूर्ति के बजाय जंगली पत्तों, फूलों और धान के पौधों के बंडल के रूप में सजाया जाता है। तो ये भी सीधे तौर पर धरती मात्रा माता और फसल की पूजा है। मौसम और कृषि संपदा का हम स्वागत करते हैं गणेशोत्सव में। संक्षेप मतलब इन शॉर्ट कहे तो गणपति बापा को प्रकृति पुरुष माना गया है और उनकी पूजा का असली मकसद भारत की कुदरती संपत्ति का सम्मान और उसकी रक्षा करना है। हमें कहीं पे भी कचरा बिल्कुल नहीं करना है, कोई करे तो भी हमें ध्यान रखना है। खैर बहुत सारी बातें करनी है, 10:53 होने को है और समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। सो अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।

0: गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर सुन सकते हैं। इस घंटे के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबलों में प्रमुख के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबलों के प्रमुख भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत

अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन में इस आयोजन का विषय जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और उपनगरों में अगले 3 से 4 घंटों में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। इसके अलावा मुंबई से सटे पालघर, रायगढ़ और ठाणे जिले में भी मौसम साफ रहेगा। जापान में हो रहे एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिलो ने रजत और रुद्राक्ष पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने इससे पहले पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। धन्यवाद।

0: हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ आरजे स्वेच्छा और आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स। समय हो रहा है 11:08, 9 मिनट होने वाला है और शो है ब्रेक फ्री। तो ब्रेक फ्री की शुरुआत करते हैं आज कुछ इस तरह कि अच्छा, एक बात बताइए कि आप 30 के हो गए हैं या उससे ज़्यादा के, तो क्या हुआ? तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया है क्या कि ज़िंदगी वहीं रुक जाती है या हम कुछ नया शुरू नहीं कर सकते? जब हम अक्सर आपने अपने आसपास सुना होगा, जब हम 30s में होते हैं या हमारी 30s की शुरुआत होती है या आगे उम्र बढ़ने लगती है, तो लोग कहते हैं कि अब कुछ नई शुरुआत नहीं हो सकती, अब जैसी ज़िंदगी चल रही थी वैसी ही चलेगी, शादी नहीं की, घर नहीं खरीदा, अच्छी नौकरी नहीं है, ओफो इतना टेंशन दे देते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ही समझ नहीं आता कि 30 की उम्र आते ही लोगों को ऐसा क्यों लगने लगता है कि अब तो बस जो होना था ना वो हो चुका है, अब क्या ही नया करेंगे, क्या ही कुछ सीखेंगे, क्या ही हम बदल लेंगे। और जैसा वो खुद के लिए सोचते हैं ऐसा वो दूसरों के लिए भी सोचते हैं, लेकिन सबकी ज़िंदगी सेम तो नहीं है ना। अब ज़िंदगी आगे बढ़ती है, रुकती थोड़ी है, तो हम भी कोशिश करना कैसे छोड़ सकते हैं। तो आज ब्रेक फ्री में ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं और ब्रेक फ्री को आगे बढ़ाते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बहुत खूबसूरत गाने के साथ।
1: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
2: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
1: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना आज नचले फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत गाना। बात हम कर रहे थे 30s की, जिसको हमारे सोसाइटी ने या आसपास के लोगों ने एक बड़ा टैबू बना दिया है, बड़ा मतलब वो कि इसके बाद कुछ नहीं। तो काफ़ी लोगों ने इस बात पर बड़ी अच्छी बात कही है। तो राकेश माथुर जी बोलते हैं कि मैं 60 वर्ष का हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता कि ज़िंदगी में ग्रोथ रुक गई है। बिल्कुल सही कहा आपने,

0: और बहुत ही खूबसूरत बात कही। इसी तरह दीपा पालकर जी बोलती हैं, जिंदगी के हर एक मोड़ पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं और अपनी और दूसरों की जिंदगी हसीन बना सकते हैं। सिर्फ मेहनत, सकारात्मकता और अच्छा दृष्टिकोण और इस सबसे हम आगे बढ़ सकते हैं और लोगों की लाइफ और अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा और यही मैं कहना चाहती हूँ कि कभी भी लाइफ नहीं रुकती है, तो हम ये सोच के या हम दूसरों के सोचने की वजह से खुद क्यों इफ़ेक्ट हों, क्यों खुद को परेशान करें। तो क्योंकि हम सबकी शुरुआत एक जैसी नहीं होती है, सबके परिवार अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं लाइफ में। किसी की शुरुआत जल्दी होती है, किसी की थोड़ी सी लेट होती है, किसी की चल रही है। तो ऐसा नहीं है ना कि ज़िंदगी को हम बिल्कुल एकदम लाइक हाँ कि हमें ये करना ही है ना, आज ही करना है, कल ही करना, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें आप बस मेहनत करते रहिए, सब अपने हिसाब से बेहतरीन होता रहेगा, है ना। किसी की जल्दी नौकरी लग गई है, किसी की लेट, किसी की जल्दी शादी, किसी ने जल्दी घर ले लिया है, किसी ने थोड़ा बाद में, तो लेट कुछ नहीं होता है। बस आप चलते रहिए, करते रहिए, है ना। कोई अभी अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश ही कर रहा है और लोग उसे जज करते हैं, और हम और इस समय सबसे बड़ा लोग जो है सबसे इजी टारगेट पकड़ते हैं वो है एज को, कि अब तो इनका कुछ नहीं हो सकता है। और इनमें ना किसी मतलब हम किसी एक सबकी कहानी यू नो सबकी लाइफ अलग अलग है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम ना एक दूसरे को एक दूसरे से कंपेयर करके, है ना, ये सब बड़ा इससे बहुत कंफ्यूजन करते हैं। यदि हम अपनी अपनी लाइफ खुद के बारे में सोचेंगे, खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे, लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो आपको अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर लगने लगेगी। और शायद आप जब दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देंगे और किसी से कुछ किसी के अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, अच्छा सोचना शुरू कर देंगे सबके लिए, तो आपको अपनी लाइफ और बेहतर और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपको एक्चुअल में क्या करना है और क्या नहीं। तो इसीलिए बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना कभी अपने आप को किसी से कम मत समझिए। तो 30s अंत नहीं, एक न्यू बिगनिंग है, और इसी के साथ हम सुनते हैं एक नया गाना एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
2: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ हैं इस वक्त दोस्तों अभिनव पुंछी, और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सबसे बड़ी खबर आज के दिन की, जो कि है भारतीय महिलाओं का क्रिकेट का मुकाबला। दे आर प्लेइंग द गेम अगेंस्ट श्रीलंका, इट्स द फाइनल मैच एंड वी डू होप इन दिस our hopes are resting on the Indian women cricketers that they'll be getting us the gold today, the first time in this Asian Games when the Indians can eye a gold medal and hope for that. भारतीय कप्तान हमारी तरफ से हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले आज बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, and that has proven to be very lucky for the Indians because they are off to a frolicking start, जहां 14.3 ओवर में भारतीय महिलाओं ने अभी तक 141 ऑन बोर्ड बना दिए एक विकेट गवाकर, जो कि गया शिपाली वर्मा का, जिन्होंने आज 48 रन बनाए 29 बॉल्स में। शी जस्ट मिस्ड आउट ऑन अ हाफ सेंचुरी बाय अ मियर टू रन्स ओवर देयर थैंक्स टू अ स्टुपेंडस कैच दैट वाज कॉट बाय काव्या काबंदी ऑन द बॉल ऑफ चामुदी प्रबोदा। Much needed wicket out there for the Sri Lankans because this partnership was getting very, very stable and sturdy between Shefali Verma and of course Smriti Mandana, but they were able to get a breakthrough on 99 runs. So a good start, Abhinav, for the Indians out there.
5: Yes, a brilliant start by our Indian women in blue, and hopefully they keep going great guns. And unfortunately, table tennis ke arena se itni achhi news nahi hai kyunki ek bahut tough encounter tha Indian men's table tennis team ka South Korea ke khilaf pre-quarterfinals match mein. Harmeet Desai, Manusha aur Manav Thakkar tino apna singles match haar chuke hain, aur us haar ke baad wo 3-0 jeet ke baad South Korea ne advance kara hai quarterfinals mein. But hamare listeners डिसअपॉइंट मत हुई है क्योंकि हमारी इंडियन विमेन्स टीम जो टेबल टेनिस की टीम है वो अपना मैच जीती थी प्री क्वार्टर फाइनल्स का थाईलैंड के खिलाफ 3-2 से, और आज हमारा क्वार्टर फाइनल है नॉर्थ कोरिया के

0: क्लब एट 3:50 PM
1: जी। और जैसे हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं, अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि हरमनप्रीत कौर जस्ट मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी। जी हाँ, 73 रनों पर हरमनप्रीत कौर आज आउट हो गई है। 42 गेंदों में 73 रन उन्होंने आज बनाए भारत के लिए, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के मौजूद थे। एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 173.8, द विकेट कमिंग जस्ट एट द राइट टाइम। एंड वी नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स फेंसिंग, वेयर द इंडियन मेंस इंडिविजुअल फॉयल कैंपेन has come to an end in the round of 32 with both fencers crashing out against the Kazakh opposition. Himanshu Singh Sanasam also succumbed to a 9-15 defeat against Kalim Nurumov, while 17-year-old prospect Sachin met an identical feat, falling 9-15 to Timofey Semyonov. So, भारतीय मैन का इंडिविजुअल फॉयल कैटेगरी के फेंसिंग में भी आकर एशियन गेम्स 2026 में समापन हो गया है।
0: जी हाँ, एंड लेट्स टॉक अबाउट बैडमिंटन, जिसमें विमेन्स टीम का कैंपेन खत्म हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया लॉस्ट ऑल दे 3 सिंगल्स मैचेस टुडे। पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा एंड तन्वी शाह ऑल लॉस्ट द सिंगल्स मैचेस। द ओनली ब्राइट स्पॉट वाज गायत्री गोपीचंद एंड त्रिशा जॉली हु वन द डबल्स मैच। मगर निराश मत होइए, क्योंकि हमारी मेन्स टीम क्वार्टर फाइनल में खेल रही है जापान के साथ। 11:30 बजे ये मैच शुरू होना था एंड द फर्स्ट पॉइंट इज जस्ट अबाउट टू बिगिन। सो होपफुली द इंडियन मेन्स टीम गेट्स अस सम गुड news from the badminton courts.
1: जी, and a slight correction to be made over there कि स्मृति मंदना अभी भी क्रीज पर टिकी हुई है। जी हाँ, 73 रन उन्होंने बनाए हैं, 43 गेंदों में उनका विकेट नहीं गया है। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की जो कप्तान है, उनका विकेट जा चुका है। 17 गेंदों में 19 रन का उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। बट स्मृति मंदना ऑल होप्स रेस्टिंग ऑन हर शोल्डर्स टुडे, क्योंकि शायद आज वो दिन भी हो सकता है जहाँ हम उनके बल्ले से 100 रन यानी सेंचुरी आते हुए देख ले। ही इज विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट। इंडिया गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, कमिंग बैक नाउ टुवर्ड्स द नेक्स्ट अपडेट दैट वी ब्रिंग टू यू, जो है कबड्डी की दुनिया से, जहां भारत ने आज साउथ कोरिया को 63-31 से हरा दिया इन द मेंस कैटेगरी, एंड दैट वाज अ वेरी कन्विंसिंग सॉलिड विन। अब भारत बांग्लादेश को कल फेस करेगा इन द ग्रुप स्टेज अगेंस्ट चाइनीज तेपाई, विच विल बी द नेक्स्ट गेम कमिंग अप टुमारो इन कबड्डी।
0: Of course, a great news there from Kabaddi, and also great news from boxing, because Sakshi Chaudhary has beaten the Paris Olympics bronze medalist Era Villegas and has advanced to the women's round of 16 in boxing 51 kgs. And please do not miss Jadumani Singh ka bout hone wala hai Chandra Bahadur Thapar ke khilaf, 55 kg round of 32. This is going to happen at 2 PM. And of course, we will be back with the latest updates and hopefully Smriti Mandana ki century ke saath 12:30 baje only on Akashwani. So hopefully we'll get you more good news from Aichi Nagoya Asian Games 2026.
2: Asian Games 2026 Aichi Nagoya.

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

0: उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

गाने सुनते सुनते बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। समय अब ब्रेक फ्री ख़त्म करने का हो रहा है, तो एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि हम बात कर रहे थे 30s और उससे आगे की उम्र के बारे में, उससे आगे की ज़िंदगी के बारे में। तो मैं बस यही कहूँगी कि हम कोशिश करना नहीं छोड़ सकते, और 30s को 20s से बेहतर साबित करना ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। हर उम्र की ना अपनी परेशानियाँ, अपनी खुशियाँ, अपनी चुनौतियाँ होती हैं, और वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, वही हमें जीवन में आगे बढ़ाती हैं। बस 30 की उम्र को ना ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव ना समझें, मैं बस इतना सा कह रही हूँ। और किसी के लिए ये करियर की नई शुरुआत हो सकती है, किसी के लिए प्यार की, और किसी के लिए अपने शहर से बाहर निकलने की, और किसी के लिए खुद को थोड़ा बेहतर समझने की। तो नई शुरुआतें तो होती ही रहेंगी, तो आज अगर आप 30, 35, 40 या किसी भी उम्र में हैं, तो ऐसा क्या है जिसे आप अपनी ज़िंदगी में जगह देना चाहते हैं? ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हम

सोचते हैं, और जैसा लाइफ के अपने खुद के अलग प्लान्स होते हैं वो अपने हिसाब से चलती है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, पीछे छूटती जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में उस नई चीज़ को, उस सोची हुई पुरानी जहन में नया चांस दे हर नई चीज़ को, और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से इंजॉय करे, अच्छे काम करे। तो इसी के साथ ब्रेक फ्रीक से हम टाटा बाय बाय करते हैं, और नेक्स्ट मिलेंगे हम म्यूज़िक कैफ़े में नई बातों के साथ, नए गानों के साथ। तो अभी आपको मैं छोड़ के जा रही हूँ बैक टू बैक एक गाने के साथ, उसके बाद हम न्यूज़ पढ़ेंगे, एंड देन मैं बस आपसे यही कहूँगी कि आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूज़िकली योर्स।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के इतर न्यूयॉर्क में कल पहली B4+ भारत विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। बैठक B4 की मौजूद स्लोवाक अध्यक्षता में हुई। भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनर्उपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित 4 सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका के टेक्सास के यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल ऊर्जा और गृह विभाग और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। पुणे में 3 कंपनियों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी दस्तावेज और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि दोनों ने वर्ष 2022 से सितंबर 2026 के बीच करीब 4,427 करोड़ 92 लाख रुपए विदेश भेजने की मदद की। इससे सरकार को कर राजस्व का नुकसान होने की बात सामने आई है। एशियाई खेलों के ग्रुप ए के मुकाबले में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने जापान के नायोग में आज दक्षिण कोरिया के 63-31 से हराया। ये भारत की लगातार दूसरी जीत है। भारतीय टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर बनी हुई है। धन्यवाद।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: अपनी गलती स्वीकारना और सुधारना मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: तो हमें पहला संदेश मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पीकारिया जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू।
1: और तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
2: ग्राम भजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर से हमारा आभार। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
1: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में उनका आविष्कार हुआ।
2: अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सरल, सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे प्यारा वाहन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक मजेदार हिंट देती हूँ। ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
1: ट्रेन ट्रेन ट्रेन, बिल्कुल सही समझा आपने श्रोताओं, वो है साइकिल। देखिए ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल, ना इंजन का शोर और ना प्रदूषण
2: जी।

0: बस दो पहिए, थोड़ा सा संतुलन और पैरों में ताकत, है ना?
1: लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी साइकिल की कहानी है आज से लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी? तो आइए चलते हैं आज से लगभग 200 वर्ष पीछे 1817 के जर्मनी में। बता दें कि दुनिया में आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे घोड़ा और घोड़ा गाड़ी।
0: लेकिन श्रोताओ, 1815 की बात है, एक भयंकर वैश्विक घटना हुई और वो थी इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। इसके प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और फसलों पर बुरा असर पड़ा और इसके कारण घोड़ों के लिए चारा भी महंगा और दुर्लभ हो गया।
1: ऐसे समय में जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल वॉन ड्राइस ने सोचा, क्या ऐसा कोई वाहन बनाया जा सकता है जिसे इंसान खुद चला सके और जिसके लिए घोड़े की जरूरत न पड़े। उसने बहुत शोध किए, नवाचार किया और फिर परिणाम स्वरूप सामने आया एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन।
0: जी, एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन। पता है श्रोताओ कैसा था वो वाहन? सचमुच अजीबो गरीब। एक लकड़ी के फ्रेम में आगे पीछे दो पहिए लगा दिए गए और लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाले डंडे में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगा दी गई।
1: न उसमें पैडल थे, न चेन, न ब्रेक। सवार उस पर बैठता और अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ता। सामने कोई आता तो चीखता, हटिए सामने से।
0: खैर श्रोताओ, इसके द्वारा मनुष्य ने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे वो ढलानों में पांव साइकिल के फ्रेम पर रख लेता और दूर तक लुढ़कता चला जाता।
1: जी।
0: तो इसे जर्मन भाषा में कहा गया ड्राइजिन, जिसका अर्थ होता है मूविंग मशीन।
1: तो साथियों, आज की साइकिल का पहला रूप ऐसा था जिसे चलाने के लिए पैडल ही नहीं थे।
0: जरा सोचिए, साइकिल पर बैठे हैं और पैर जमीन पर, धक्का दिया और चल पड़े।
1: जी,
0: यानी एक तरह से कह सकते हैं पैदल चलते हुए वाहन चलाना, है ना मजेदार बात?
1: बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, समय आगे बढ़ा और कुछ और आविष्कारकों ने इस दो पहिया मशीन में बदलाव शुरू किए। 1860 के दशक में फ्रांस में पियरे और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने पहिए में पैडल लगाने का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।
0: आशोताओ, इसके बाद अब सवार को बार बार जमीन पर पैर मारने की जरूरत नहीं थी।
1: जी।
0: पैडल घुमाइए और पहिया घूमने लगता।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस दौर की साइकिलें आज की साइकिलों से काफी अलग थी।
1: जी।
0: इनमें आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था और पीछे का पहिया छोटा।
1: और फिर आया वो बदलाव जिसने साइकिल को आम लोगों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। 1880 के दशक में विकसित हुई एक और साइकिल, इसमें दो लगभग समान आकार के पहिए थे, पैडल चेन से जुड़े थे और सवार अपेक्षाकृत नीचे बैठता था। यही वो डिजाइन था जिसने आधुनिक साइकिल की नींव को मजबूत किया।
0: तो श्रोताओ, फिर धीरे धीरे साइकिल सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही, यह स्वतंत्रता का प्रतीक बनी।
1: जी।
0: यूरोप और अमेरिका में लोग साइकिल से काम पर जाने लगे। महिलाओं के लिए भी साइकिल ने सामाजिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले। लंबी दूरी तय करना आसान हुआ और लोगों की दुनिया जैसे थोड़ी बड़ी हो गई।
1: और फिर साइकिल 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी 1880 से 1890 के दशक में भारत में पहुंची और धीरे धीरे शहरों और गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय तक स्कूटर और बाइक के आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी जरूर कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जरूरत की सवारी तो थी ही, अब सेहत के लिए भी जरूरी सवारी बन गई है।
0: जी, ये जरूरत की सवारी तो थी ही लेकिन अब
1: सेहत के लिए जरूरी सवारी बन गई है।
0: तो साथियों, आज साइकिल कई नए नए रूपों में हमारे सामने है। अब बैटरी की मदद से लोग लंबी दूरी भी आसानी से तय कर रहे हैं।
1: जी।
0: मैं तो यही कहूँगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
1: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
0: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के माध्यम से बच्चों को हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये संदेश

0: दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बच्चों को खेलना कूदना बहुत जरूरी है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात, यह सात

कंचों या 7 गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से 2 टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा 7 कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को, मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम संध्या गीत। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं एक अंग्रेजी का सुंदर गीत और इसका शीर्षक है इफ यू आर हैप्पी।
2: गतिविधि आधारित इस गीत में भिन्न भिन्न शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बच्चों को इस गीत के द्वारा कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: Diksha, Digital Infrastructure for School Education, an initiative of the Ministry of Education, Government of India. Brought to you by the National Council of Educational Research and Training.
1: Diksha, Diksha for Empowering Education.
2: और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है चतुर मूर्ख।
3: ये कार्यक्रम एक हास्य प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें एक मूर्ख को बुद्धिमान समझ लिया जाता है और जब धीरे धीरे उसकी कलई खुलने लगती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसी के बारे में कोई राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए।
2: चतुर मूर्ख।
4: तीन मूर्ख थे, वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही रात हो गई। वे पास के एक गांव में रुक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई। भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। बची हुई खीर कौन खाएगा, इस बात पर बहस छिड़ गई। बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों लेट गए। वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। दो तो जल्दी सो गए। तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा।
5: कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले।
4: धीरे धीरे सवेरा होने लगा। ना तो वो सोया और ना ही उसने कोई सपना देखा, लेकिन वो चतुर था। वो चुपके से उठा और सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई। दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बात।

0: तलवार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
1: अरे उठो, अरे उठो,
2: उठो,
1: अरे उठो,
0: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,

0: हाँ, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह वाह वाह।
1: दूसरे ने कहा,
2: मैं तो सपने में गढ़वाल का राजा।

0: जाकर मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बगल में महारानी थी।
1: ओ।
0: लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। बड़ा अच्छा दृश्य था।
2: अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोच कर बोला,
1: मेरे सपने को मत पूछो।
3: हाँ,
1: मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया।
3: भूत
1: उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा, मुझे क्यों मार रहे हो भाई? उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ।
0: मैं
1: कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा, चलो सीधी तरह खीर खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।
3: क्या कहा?
4: खीर खाए तू? ऐसे किस किस किस?
2: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
3: तो क्या तुमने खीर खा डाली?
5: नहीं खाता तो क्या करता? अपनी जान से हाथ धोता?
4: तुम झूठ बोलते हो।
3: जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों नहीं जगाया?
5: जगाता कैसे? तुम में से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
2: ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए।
6: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है 107.1 FM रेनबो। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, मेरे यानी आरजे स्वेच्छा के साथ। म्यूजिक कैफे का समय हो गया है, समय हो रहा है 12:29 और ये है म्यूजिक कैफे का समय। म्यूजिक कैफे में हम एंटर कर चुके हैं और इसकी शुरुआत करेंगे कुछ अच्छे गानों के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी से ठीक 12:30 पे 5 मिनट के लिए स्पोर्ट्स रिले आएगा और उसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे म्यूजिक कैफे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पर।
1: 26 अपडेट।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एशियन गेम्स 2026 के अपडेट लेके आए हैं मैं अभिनव पुंछे, मेरे साथ है साक्षी मानवाल। और गुड न्यूज फ्रॉम द क्रिकेट फील्ड, इंडिया ने टारगेट दिया है श्रीलंका को गोल्ड मेडल मैच में 217 का। जी हां, इंडिया में 216 for 3। टॉप स्कोरिंग वाज स्मृति मंदना विद 79, शिफाली वर्मा 48 एंड अ स्टनिंग 22 ball 49 बाय ऋचा घोष। श्रीलंका जवाब में एक विकेट ऑलरेडी अपना खो चुके हैं, इमेश सिद्धुल्यानी आउट हो गए, मगर कैप्टन फैंटास्टिक चमारी अट्टापड्डू इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। याद दिलाएं, ये वही हैं जिन्होंने 83 नॉट आउट मारे थे पाकिस्तान के खिलाफ एंड दैट हैड मेड श्रीलंका चेज अ रिकॉर्ड टारगेट ओवर देयर। सो इट्स अ स्मॉल ग्राउंड, इट्स हाई स्कोरिंग एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम वी अपडेट यू देयर इज सम विकेट्स एंड होपफुली शिफाली दिस द कैप्टन फॉल्स।
4: Well, let's hope for the best for India, always rooting for India. Go India, go the women in blue. And moving on to the next quick update, दोस्तों आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं from the world of fencing. Fencing में तनिष्का खत्री वो इकलौती ऐसी खिलाड़ी भारत की तरफ से बनी है जिन्होंने अपना राउंड ऑफ 32 में वुमेन्स एपी इंडिविजुअल को जीत कर विद कन्विंसिंग 15-10 की विक्ट्री थाईलैंड के नटापापट संगनियो के ऊपर, उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ गई टूवर्ड्स द राउंड ऑफ 16। जी हाँ, मतलब दिस इज गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग, बिकॉज तनिष्का खत्री वो इकलौती ऐसी खिलाड़ी है जो अब राउंड ऑफ 16 में साउथ कोरिया की फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट सोंग से रा के साथ अब उनका आमना सामना होगा। वहीं फेंसिंग की दुनिया में अगर बात करें तो वुमेन्स एपी इंडिविजुअल में मितवा जेसंगबाई चौधरी या फिर मेंस इंडिविजुअल फॉयल में भी हम अगर देखें हेमश सिंह सनासम या उसके साथ साथ सचिन, ये सारे ही प्लेयर्स अपने अपने राउंड से यानी राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गए।
3: थैंक यू सो मच फॉर दैट साक्षी, अपडेट कमिंग इन फ्रॉम फेंसिंग। मगर बैडमिंटन से भी आपको अपडेट दीजिए तो इंडिया वर्सेस जापान क्वार्टर फाइनल्स आर ऑन राइट नाउ और एक्शन में है लक्ष्य सेन, उनके सामने कोडाई नारोका और इनका बहुत ही क्लोज इंकाउंटर चल रहा है, 1-1 चल रहा है क्योंकि पहला जो सेट था वो लक्ष्य सेन हारे थे 21-11 से, दूसरा सेट जीते 21-5 से, अभी 19-14 से पीछे है लक्ष्य सेन। याद दिलाएं इसके बाद हमारी सात्विक चिराग की जोड़ी होने वाली एक्शन में, तो होपफुली दिस टाई कैन बी टर्न्ड अराउंड एंड इंडिया हैज अ चांस बिकॉज आर इंडियन वुमेन आर ऑलरेडी आउट। द वुमेन्स टीम का कैंपेन हैज एंडेड बिकॉज दे लॉस्ट अर्लियर टुडे टू थाईलैंड एंड दैट वाज अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय द इंडियन वुमेन टीम बिकॉज सारे सिंगल्स मैचेस हम लोग हारे हैं एंड ओनली गायत्री गोपीचंद एंड टीसा जोली गिव अस सम गुड न्यूज।
4: राइट, एंड नाउ मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग, जहां सुबह से हमारे पास शूटिंग में कुछ खास अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। वहीं अगर अब हम स्कीट की बात करें तो मेन स्कीट के जो आज प्रदर्शन रहे हमारे भारतीय

0: उसका मेंस कीट के अंदर वो काफी कॉन्ट्रास्टिंग रहे, मतलब अनंजीत सिंह नरू का सेकंड प्लेस पर अभी बने हुए विद अ टोटल ऑफ 96 पॉइंट्स एंड ही हैज पुट हिमसेल्फ इन द प्राइम पोजीशन टू क्वालिफाई फॉर द इंडिविजुअल फाइनल्स इन द मेंस कीट इवेंट। वहीं मिराज अहमद खान इस समय 23rd प्लेस पर है विद अ टोटल ऑफ 91 पॉइंट्स और भवतेक सिंह गिल 35th पोजीशन पर है विद अ टोटल ऑफ 86 पॉइंट्स। तो यानी अनंतजीत सिंह नरूका ने अभी भी भारतीय शूटर्स और शूटिंग के कैंपेन की उम्मीदों में वो रोशनी रखी हुई है डालकर कि हो सकता है जिस तरह से वो 96 पॉइंट्स के साथ अभी बैठे हुए हैं, he stands in a very good place to qualify for the individual finals also. अगर women's keith standings की हम बात करते हैं जो आज की हमारी महिला shooters का प्रदर्शन रहा है women's keith में, तो Raiza Dhillo has moved up to the 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhalewal इस समय 9th position पर है with a total of 89 points और Maheshwari Chauhan इस समय 16वें स्थान पर है with a total of 85 points.
1: थैंक यू फॉर दैट अपडेट अगेन साक्षी। और एक और आपको दे दे जाते हुए बस ब्रेकिंग न्यूज खबर, गुड न्यूज अगेन फॉर द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, श्रीलंका हैव लॉस्ट दिस सेकंड विकेट, सो होपफुली जस्ट 8 मोर टू गो, बस 8 विकेटें हैं और गोल्ड तय है हमारे। दैट्स ऑल फ्रॉम अस ऑन दिस अपडेट फ्रॉम आकाशवाणी, प्लीज स्टे ट्यून एंड एट 1:30 यू कैन कम बैक फॉर अनदर अपडेट।
0: And just to carry on with the quick one also over there, because we have a little amount of time, दर्शकों दोस्तों आपके साथ, तो quickly आपको बता दें कि भारत की जो अभी भी medal tally में table standing है वो 12वें स्थान पर बनी हुई है। कुल मिलाकर हमारे पास अभी 6 medals या 6 total medals है जिसमें 4 silver और 2 bronze है। Let's also not forget that these have come from the world of shooting. These have come from the world of shooting primarily, but for now, hoping that India gradually climbs up, it's a goodbye.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी, ये बेहद खूबसूरत गाना अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो वेलकम, आप सभी का स्वागत करती हूँ म्यूज़िक कैफ़े में। हालांकि 12:42 हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जितने गाने हम सुन सकते हैं उतने गाने सुनेंगे ज़रूर, और थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे। वैसे ना कभी कभी ना दिन का जो प्लान है, जैसे आज कुछ और सोच के मैं आई थी और कुछ और ही हो रहा है। जैसे कई लोगों ने पूछा कि शो का टाइम चेंज हो गया या कुछ, तो आज सुबह से ही मेरी प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं जब आ रही थी तो आधे पौना घंटे करीब मैं ट्रेन में फंसी हुई थी, एक जगह ट्रेन रुकी हुई थी, तो मैं लेट हो गई। उसके बाद शो भी थोड़ा सा उसमें चेंजेस आए, तो आप लोगों ने सवाल किए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि हम जैसा सब कुछ प्लान करें दिन वैसा ही हो, कभी कभी ऊपर नीचे होता है, बट एट द एंड सब कुछ अच्छा हो वही इम्पॉर्टेंट है। वही ज़रूरी है कि सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, हम शो भी सुन रहे हैं, अच्छे से बातें भी कर रहे हैं, म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, और आप सब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सब भी शो सुनते रहिए, और हिट एंड हॉट के लिए आप अपने गानों का नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा हिट एंड हॉट स्टार्ट होगा, तो आप उसके लिए अभी से हमको मैसेज कर सकते हैं अपने पसंदीदा गाने। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661।

1071 म्यूजिक कैफे ऑलमोस्ट अंतिम पड़ाव पे चल रहा है, पर कोई बात नहीं, जब तक थोड़ा बहुत समय है हम मतलब म्यूजिक कैफे में अभी कुछ समय बचा है, तब तक हम सुनते हैं बैक टू बैक दो गाने। तो आप इंजॉय कीजिए म्यूजिक कैफे, और उसके बाद हम मिलेंगे हिट एंड हॉट में।

इश्क वाला लव, बहुत ही खूबसूरत गाना। अभी हम शुरू कर चुके हैं हिट एंड हॉट, तो आपका स्वागत करती हूँ हिट एंड हॉट में, जहाँ आपकी यानी श्रोताओं की पसंद के गानों को प्ले करने की कोशिश करूँगी। तो अभी जो मैंने गाना किया था प्ले इश्क वाला लव, वो दीपा पालकर जी ने कहा था, तो उनकी फरमाइश पे किया था। आगे कई सारे नाम आए हैं, तो अभी मैं कुछ नाम और उनके साथ उनके गाने बोलती हूँ और हम वो सुनेंगे, फिर बैक टू बैक और एंड देन फिर रिटर्न आएंगे। तो अभी दीपा पालकर जी का गाना फिनिश हुआ है और अब हम सुनेंगे विजेंद्र घटोल जी का गाना फूलों सा चेहरा तेरा। और एक और फरमाइश आई हमारे पास, हमारे नए लिसनर हैं आकाश, उन्होंने अपनी उन्होंने लिखा है कि वो हमारे नए श्रोता हैं और वो अपनी खूबसूरत और प्यारी पत्नी सोनम शर्मा के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। ये तो बहुत खूबसूरत बात है और गाना भी उन्होंने बहुत खूबसूरत सा चुना है, जीना जीना बदलापुर का, तो वो गाना भी हम ज़रूर सुनेंगे आकाश ने जो अपनी वाइफ के लिए फरमाइश की है। और अगला गाना हम सुनेंगे पंकज मोहर जी का अनदेखी अनजानी सी, और इसी के बाद हम दोबारा लौट कर आएंगे और फिर करेंगे कुछ बातें और बाकी लोगों की फरमाइशें भी करूंगी मैं पूरी। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पर। तो अभी मैं पहला गाना जो प्ले करने जा रही हूँ वो है जीना जीना, जो आकाश जी ने अपनी वाइफ सोनम शर्मा के लिए चलाया है।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Welcome, a very warm welcome, Jai Hind, as we bring to you the latest update at 1:30 PM on Akashvani. Main hu Sakshi Mandwal, dosto, aur mere saath is waqt hai Abhinav Punchi, and we bring you the big news ki Bharat ko Asian Games 2026 ka pehla gold medal mil chuka hai. Ji haan, wo lekar aayi hamare liye hamari cricket ki Bharatiya mahila ki team. Yes, the first gold that comes in for India today. They have gone on to create history for the Indians because this is always going to be special. The first goal of the ongoing Asian Games 2026, they defeated England by a huge margin of 147 runs. Bharatiya mahilaon ne 216 run banaye unke given stipulated 20 overs mein for the loss of 3 wickets, and then they went on to defeat and completely choked the Sri Lankans for just mere 69 runs. Abhinav, what a day to celebrate this moment, to cherish this moment.
2: जी हाँ, श्रीलंका को हराया है हमारी भारतीय महिलाएं ने, और क्या ट्रिमेंडस विक्ट्री थी श्रीलंका के अगेंस्ट, बिकॉज इंडिया हैड पुट अप अ मैमथ टोटल ऑफ 216 for 3, और उसके बाद श्रीलंका जो जिन्होंने अपनी रिकॉर्ड चेस करी थी सेमीफाइनल्स में, आज कुछ नहीं कर पाए. इट वॉज अ डेमोलिशन डर्बी जैसे कहा जाता है. 69 ऑल आउट, इंडिया विनिंग बाय 147 रन, एंड द इंडियन वुमेन हैव डिफेंडेड द गोल्ड विच दे वन इन हैंग्स ऑफ 4 years ago. Fantastic performance with the bat by Spriti Mandana with 79, Shefali Verma 48, Richa Ghosh at 22 ball 49, aur uske baad wickets mein to kamal dikhaya. DP Sharma with 3 wickets, Shefali ka fir se all-round performance, 2 wickets, Shriyanka Patil with 2 wickets as well, and Shree Channi with 2. So कमाल की परफॉर्मेंस, और इंडिया के पास पहला गोल्ड आ चुका है. जी हाँ, सुबह से आप लोग हमारे अपडेट सुन रहे होंगे, थोड़े से निराश हो रहे होंगे क्योंकि इंडिया का आज इतना अच्छा दिन नहीं गया, मगर साक्षी, व्हाट अ ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस विक्ट्री, एंड आई थिंक पूरे नेशन का जो मूड है आज इज गोना गेट मच बेटर, एंड एवरीबॉडी इज गोना हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस.
1: यस इंडीड, और आज ये चेहरे की हंसी हटनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज हमारी लड़कियों ने हमें इतने सारे रीजंस दिए सेलिब्रेट करने के लिए. सबसे ऊपर तो गोल्ड मेडल रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बताएं कि ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए 8th लगातार 8वीं T20 इंटरनेशनल की जीत है. यस, दे हैव गॉन ऑन टू विन 8 T20 इंटरनेशनल्स ऑन अ ट्रॉट, एंड दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. और उसके साथ साथ श्रीलंका ने आखिरी बार भारत को 2024 के एशिया कप के फाइनल्स में हराया था, वो हम सब जानते हैं. उसके बाद से भारतीय महिलाएं उनको 8 बार T20 इंटरनेशनल मैचेस में हरा चुकी हैं. और एक और बहुत अच्छी खबर जो है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, वो ये है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ये जो 147 रन के मार्जिन से श्रीलंका को हराया है आज, वो अभिनव आज तक का सबसे बड़ा डिफीट मार्जिन है जो भारत ने किसी भी ओपोनेंट को दिया होगा. 147 इज द बिगेस्ट मार्जिन बाय व्हिच इंडिया हैज डिफीटेड एन ऑपोजिशन नेशन इन अ T20 इंटरनेशनल.
2: इट्स बीन अ ग्लोरियस सितंबर इंडियन वुमेन के लिए. एशिया कप में उन्होंने धमाल दिखाया, और आज उन्होंने एशियन गेम्स में सुपर धमाल दिखा दिया है ये जीत पाकर. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रिमेंडस एफर्ट बाय द इंटायर इंडियन वुमेन्स कंटिजेंट, कोचेज कंटिजेंट, सबको बहुत ढेर सारी बधाई, और हमारे देशवासियों को भी बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि अब इंडिया का गोल्ड का खाता खुल चुका है. जी हाँ, एंड इट इज नॉट द ओनली गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम द एशियन गेम्स, वी हैव मोर गुड न्यूज फॉर यू, बिकॉज बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट कोडाई नारोका के खिलाफ. लक्ष्य सेन ने अपना मैच, पहला गेम हारा लक्ष्य सेन ने 11-21 से, दूसरा गेम जीता

0: 21-5 मगर तीसरे गेम में ही वॉज डाउन 14-19 फिर भी कम बैक करके उन्होंने वो गेम जीती 21-19 वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट को हराया इंडिया को वो 1-0 की लीड दी एंड अनदर गुड थिंग इज सात्विक चिराग हमारे फेवरेट डबल्स पेयर अभी एक्शन में है वो पहली गेम जीत चुके हैं अपने जापान के ओपोनेंट्स के अगेंस्ट एंड साक्षी कैन गिव अस डिटेल्स अबाउट दैट
1: यस इंडीड पहला गेम तो वो अपना जीत चुके हैं हम बात करें सात्विक रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की अगेंस्ट द ओपोनेंट्स होकी और कोबायाशी लेकिन सेकेंड गेम के अंदर भी इस समय बहुत तगड़ी फाइट दोस्तों चल रही है जापान हैज ओनली अ 2 point लीड राइट नाउ ओवर द इंडियन ओपोनेंट्स बिकॉज इनफैक्ट वो 2 point की लीड भी अब एकदम खत्म ही हो चुकी है बिकॉज भारत के पास इस समय 18 पॉइंट्स है सेकंड गेम में और जापान के पास है 17 यानी गेम को मैच पॉइंट पर लाने के लिए इंडिया को 2 और अंक इनफैक्ट कहना चाहिए जीतने के लिए 2 और अंक कमाने लगातार अगर ऐसा होता है तो वेल India should be able to give this entire match in their favor. But right now, keeping all those hopes and faiths up, it's time for a moment for us to just sit back and enjoy the victory that has come the way and through the Indian women's cricket team. A very big milestone achieved over here by the Indian girls. Kudos to India. Jai Hind hamare har deshvasi ko. Aur iske saath hi hum kahenge ki yahan se ye jo khushiyon ki hum jo aapko khabar aur update leke aa rahe hain ye silsila ab shuru ho jaye aur barqarar rahe. Filhal ke liye hame dijiye ijazat. Goodbye.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया
3: अभी यहाँ पे एशियन गेम

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: म्यूजिकली और समय हो रहा है 1:36 और प्रोग्राम चल रहा है हिट एंड हॉट। पूरी कोशिश कर रही हूँ आप सभी के फरमाइशों को पूरा करने की। अभी मैंने अमित भगत जी का गाना ओ जाने जाना मधोशी पिक्चर का जो है चलाया था, प्ले किया था, और अब हम नेक्स्ट करेंगे गुजारिश जो कंचन जी ने बोला है फिल्म गजनी से, और प्रणव शिंदे जी ने भी एक गाने की फरमाइश की है। उस गाने का नाम है भेजा है एक गुलाब, तो वो गाना भी हम प्ले करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप सभी के मैसेजेस पढ़ के रिप्लाई करने की और आपके सॉन्ग्स प्ले करने की, बट आप हमारे साथ बने रहिए और अभी सुनिए बैक टू बैक दो गाने और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स।

समय हो रहा है 1:49, और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। मैं हूँ आरजे स्वेच्छा, और अभी मैं मैसेजेस पढ़ रही हूँ, तो उसमें दीपा पालकर जी ने बोला है, कंग्रेचुलेशंस फॉर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम फॉर विनिंग गोल्ड इन एशिया कप 2026। जी हाँ, बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि हमारी महिला क्रिकेट टीम जो है वो गोल्ड जीती है एशियन कप 2026 में। तो हम सभी की ओर से हमारी इंडियन क्रिकेट वेमेन इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत कंग्रेचुलेशंस। ये बहुत ही खुशी की बात है, और मैं आप सभी के जो आप सब लोग इतने समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबह से और 3 घंटों से, जिसमें हमने ब्रेक फ्री म्यूज़िक कैफे हिट एंड हॉट यू नो सब कुछ चल रहा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ आप सभी के मैसेजेस को देखने की, रिप्लाई करने की। तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सभी के नाम लेना चाहूँगी एक बार। यशवंत आठमुडे जी, प्रणव शिंदे, राकेश माथुर, गुरमीत सिंह, मीता सिंह, अभिजीत गवानकर, फिरोज़ शिगनपुरिया, विजेंद्र घटोल, लाल गिरी गोस्वामी, दिग्दर्शन एंड कविता, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपा पालकर जी, झारखंड से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश, संगीता, लिपि, दीपाली गोप, और हमारे साथ हैं टीडी मल्होत्रा जी, जो सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, बाबा दादर से पंकज मोहर, सुबलक्ष्मी मस्तकर, मुकेश कश्यप, कंचन जी भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ महाराष्ट्र रायगढ़ महाराष्ट्र से, संदीप कुमार, हरजिंदर जी जुड़े हुए हैं, राजेंद्र परमार, मिंटू टोमस, पिंकी लवली, चेतन कुमार जी, संजय दर्शन, अजय साखरे इंदौर से, मेहर अरोरा, अमित भगत, हितेंद्र दास, प्रमोद चिंचोलकर, आकांक्षा मनोज सिन्हा, अशोक पाटिल वर्ली से, अंजू जी अंधेरी से, दीपाली शिरोडकर, महेश भटनागर सेंटा क्रूज से, रजनीकांत पाटिल और शुभदा, ये सारे लोग जो हैं हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं। धनंजय जी न्यू मुंबई, नवी मुंबई से, रामदास तांबे डोंबिवली से, और काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी जो मैं नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने वाली हूँ, वो अब मैं करने वाली हूँ, अभी जो मैंने एक गाना प्ले किया था चांदनी मूवी का, लगी आज सावन की, वो संदीप कुमार जी ने फरमाइश की थी, और अभी जो हम गाना सुनने वाले हैं दिल तू ही बता क्रिश मूवी का, वो अजय साखरे जी ने उसकी फरमाइश की है। तो इसी के साथ, इसी गाने के साथ हमारे शो का एंड हो जाएगा, और आज के लिए आपको इस आखिरी गाने के साथ छोड़कर जा रही हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे हमारे FM रेनबो पर ही। तो अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और ज़िंदगी को जीते रहिए। जैसे आज हमने 30s की बात की थी, अनप्लान्ड डे की बात की थी, तो सब कुछ दिन अनप्लान्ड हो कोई बात नहीं, बट फिर भी एट द एंड सब चीज़ें अच्छी हो ही जाती हैं। और जैसे ही हमने 30s को लेके बात की थी, तो चाहे आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी समय में हो, जैसा जैसे भी हो, अपने लिए, अपनों के लिए, खुद के लिए बेहतर सोच सकते हैं। कोई उम्र किसी भी चीज़ का दी एंड नहीं है। तो आप हमारे साथ बस यूं ही बने रहिए, इतनी सारी बातें करी हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी, और हिट एंड हॉट को समेटना चाहूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं हूँ आरजे स्वेच्छा, आप

आप सुनते रहिए FM रेनबो और बने रहिए अगले आरजे के साथ. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. और आज का आखिरी गाना जो कि मैं बजाने जा रही हूँ, तो ये लास्ट सॉन्ग आप सभी के लिए. ओके okay.

0: International Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon challenges of water management. Union Home Minister Amit Shah inaugurates the third National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads of States and UTs in New Delhi to deal with drug menace. Government urges bank employees to refrain from resorting to strikes, agrees to keep performance-linked incentive scheme in abeyance. And Indian women's team thrashes Sri Lanka to win gold medal in Asian Games. Opener Smriti Mandhana creates history as she becomes first woman cricketer to complete 11,000 runs in international cricket. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
2: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
1: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
4: इस सम्मेलन में 36

0: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
3: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
2: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 AD को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
4: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाए और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाए। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
1: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई

दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर

0: में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
1: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
2: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
1: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
4: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी, तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। IMD ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 3rd राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: तो चलिए आपको लिए चलते हैं एशियन गेम्स 2026 की अपडेट के लिए।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी इस लाइव अपडेट में जो हम दोपहर के 3:30 बजे आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त है अभिनव पुंछी। और आज की दिन भर की सबसे अच्छी और खूबसूरत खबर तो यही रहेगी दोस्तों कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आज श्रीलंका को हरा कर हमारे देश को पहला स्वर्ण पदक दिलवा दिया है। जी हाँ, द फर्स्ट गोल्ड मेडल हैज कम इन फॉर द इंडियंस थैंक्स टू आवर इंडियन गर्ल्स आउट देयर हु वेंट ऑन टू डिफीट श्रीलंका टुडे इन क्रिकेट बाय अ ह्यूज मार्जिन ऑफ 147 रन्स। 216 भारत ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 20 ओवरों में बनाए जिसमें उन्होंने सिर्फ अपने 3 विकेट गवाए। और वहीं जब श्रीलंका

0: इसी टारगेट को चेज करने के लिए उतरा तो पूरी की पूरी श्रीलंका की टीम सिर्फ 69 रन में सिमट गई, मात्र 15.4 ओवरों में सिमट गई, 69 एट अ टोटल ऑफ 69। एंड विद दैट नॉट ओनली डज दिस हेल्प कि भारत का जो अब मेडल टेबल में स्टैंडिंग है उसमें भी बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। हम एक समय पे आज 18वें स्थान पर आ गए थे, लेकिन अब थैंक्स टू दिस गोल्ड मेडल भारत मेडल टैली में 8वें स्थान पर आ चुका है। एक गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, देयर टोटल मेडल्स बीइंग 7। एंड द अदर गुड न्यूज दैट हैज जस्ट कम इन इज दैट एक और मेडल भारत के लिए इस वक्त अश्योर हो चुका है। 2 times एशियन गेम्स मेडलिस्ट 2018 और 2023 की, 2018 एंड 2023, उसमें भी हम आपको ये बता दें कि 2023 में वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट रोशिबेना देवी हैज बीटन चू मानसिन ऑफ मकाओ बाय WDP टू रीच द सेमीफाइनल्स इन वुमेन 60 kg इन सांडा वुशू एट एशियन गेम्स 2026। जी हाँ, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि भारत के लिए एक और मेडल अभिनव कंफर्म हो चुका है। एक ऐसा दिन फाइनली आ रहा है जहां हम सब के, आपके और मेरे चेहरे पे भी बहुत बड़ी मुस्कुराहट है।
1: जी हाँ, पूरे भारत में मुस्कुराहट होगी क्योंकि आर एथलीट्स आर डूइंग अस प्राउड। और याद दिलाएं, वुशु में एक और मेडल भी गारंटी हो सकता है बिकॉज आर्यन का क्वार्टर फाइनल उज्बेकिस्तान के सैदुलो के साथ बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, मेंस 56 kg। एंड अगर हम गारंटीड ब्रॉन्ज मेडल्स की बात कर रहे हैं तो इंडियन बैडमिंटन टीम, व्हाट अ परफॉर्मेंस, अ स्टनिंग विक्ट्री दे हैव हैड, दे हैव रीच द सेमी फाइनल्स एंड दे गारंटीड अ ब्रॉन्ज मेडल। और इंडियन टीम की शानदार जीत का पूरा क्रेडिट देना चाहिए लक्ष्य सेन को, फैंटास्टिक कम फ्रॉम बिहाइंड विक्ट्री हुई थी लक्ष्य सेन की। उसके बाद सात्विक चिराग ने अपना जोश दिखाया, उन्होंने स्ट्रेट गेम्स में मैच जीता और फिर आयुष सेट्टी ने भी कोकी वाटरनाबी को हरा कर इंडिया ने जापान को हराया और पहुंच गए हैं क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल्स में। तो शानदार प्रदर्शन हमारे इंडियन बैडमिंटन कंटिजेंट का। और उसके बाद बॉक्सिंग में भी जादूमणि सिंह ने अपना जादू दिखाया, हराया चंद्र बहादुर थापा को 5-0, 55 kg, राउंड ऑफ 32। सो इट्स बीन अ गुड आफ्टरनून हियर फॉर द इंडियन एथलीट्स एंड होपफुली थिंग्स गेट बेटर फ्रॉम हियर ऑन।
0: राइट, एंड द अदर गुड न्यूज तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि जितनी खुशखबरी हम आपको दे सकते थे इस अपडेट के अंदर वो तो हमने दे दी कि भारतीय खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन आज का। लेकिन आप थोड़ी सी एक निराशाजनक खबर, लेकिन क्योंकि है जरूरी हम आपको देंगे जरूर, वो है स्विमिंग की दुनिया से, जिसमें 4x100 meter मेडले रिले के फाइनल्स में आज भारतीय स्विमर्स उत्कर्ष पाटिल, शब्दास, दानुष सुरेश, बेनिस्टन बेनिक्टन और आकाश माने ने बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन दिया। हाँ, हम 4x100 meter मेडले रिले के फाइनल्स में बहुत जरूर गए, हमने प्रवेश कर लिया, लेकिन हमने उसके अंदर फिनिश किया है 8वें स्थान पर, यानी हम लास्ट आए हैं ऑलमोस्ट 3:44.26 के अंदर। जी हाँ, इट वॉज डेफिनेटली अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फिनिश बाय आर इंडियन स्विमर्स आउट देयर इन द फाइनल्स, बट टू मेक इट टू द फाइनल्स ऑल्सो वी कैन कंसिडर इट टू बी एन अकम्पलिशमेंट। एंड नाउ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि बॉक्सिंग में मेंस पूल ए का मैच भारत और श्रीलंका के बीच इस वक्त शुरू हो चुका है, एंड वी आर काउंटिंग ऑन द गुड ग्रेसेस ऑफ आर हॉकी प्लेयर्स की अभिनव, दिस गेम शुड आल्सो बी गोइंग इन आवर फेवर।
1: Of course, and we are looking for a comprehensive win in hockey. Indian men and women's team have been on a goal spree in Aichi Nagoya. India or Sri Lanka, abhi to 0-0 hai. Match abhi bas shuru hi hua hai. First quarter chal raha hai. Magar hum chahenge ki India achhi tarah apna goals kare aur Sri Lanka ko comprehensively haraye, kyunki do bari mil chuke hain aur dono bari Asian Games mein India jeeta hai. Aur ek aur bhi bada contest hai, wo bhi hamara hone wala hai 3:50 ko. Hamare table tennis ki women's team is going to have their quarter final encounter. That is another very very big match which is going to be happening here from the Asian Games. So hopefully we have some good news to report to you when we come back next with our update for the Asian Games from Aichi Nagoya. So stay tuned to Akashwani, and hopefully India keeps bringing glory, all the athletes keep doing well.
2: Asian Games 2026 Aichi Nagoya.
3: श्रोतेहो, आत्ताच आपण एशियन गेम्स 2026 चे अपडेट ऐकलेत. आता पुन्हा एकदा वळूयात आपल्या सप्तरंगी 7 या कार्यक्रमाकडे.

0: This is Akashwani. We now take you over to Ekta Nagar, Kevadia, Gujarat for the live broadcast of the 72nd National Film Awards ceremony being organized in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. Our commentators are Neelam Thapliyal in Hindi and Shailendra Singh Jadeja in English.
1: Ye Akashwani hai. अब हम आपको एकता नगर केवड़िया गुजरात लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम थपरियाल हिंदी में और शैलेंद्र सिंह जडेजा अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, मैं नीलम थपलियाल अपने साथी अंग्रेजी समीक्षक शैलेंद्र सिंह जाडेजा एवं आकाशवाणी वडोदरा और अहमदाबाद की पूरी टीम के साथ गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर से 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के शुभ अवसर पर देश के कोने कोने में अपने रेडियो से जुड़े सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ।
1: नमस्कार। Cinema lovers across the nation and around the globe, where Narmada flows with a timeless grace, under Sardar's gaze in this sacred space, the silver screen weaves its magic untold to crown Indian cinema's masters in gold. Along with my co-commentator, Ms. Neelam Thapliyal, and the team of Akashwani Vadodara and Ahmedabad, I, Dr. Shailendra Singh Jadeja, welcome our listeners to the live broadcast of the landmark 72nd National Film Awards. Good afternoon.
0: जी हाँ श्रोताओं, इस समय हम मौजूद हैं उस ऐतिहासिक समारोह स्थल पर जहां दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी आकाश को छूती खड़ी है। आज यहाँ भारतीय सिनेमा के वर्ष 2024 के श्रेष्ठ कलाकारों, फिल्मकारों और तकनीशियनों को देश के प्रतिष्ठित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। नर्मदा की लहरों की गूंज के बीच आज पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह ने दिल्ली की सीमा लांघी है और यह ऐतिहासिक क्षण अपने आप में एक फिल्मी पटकथा जैसा लगता है।
1: For the first time in our half a century, this historic ceremony has moved beyond the national capital to the majestic bank of the river Narmada. Today, Ekta Nagar serves as the ultimate crossroads where art, culture and national unity converge.
0: श्रोताओं, कुछ कहानियां पर्दे पर उतरती हैं और कुछ सीधे दिल में। सिनेमा उन दोनों के बीच का वह पुल है जहां भारत अपनी कहानी खुद सुनाता है। कहानियाँ हमारी विरासत हैं, किरदार हमारी पहचान और सिनेमा वह आईना है जिसमें दिखता है हमारा महान, अतुल्य, समृद्ध, गौरवशाली, विविधतापूर्ण, शक्तिशाली, सांस्कृतिक, अखंड भारत।
1: To truly appreciate the weight of this afternoon, we must look back to 1954 when the government of India instituted these honors as the state awards for films. Established under the Ministry of Information and Broadcasting, their founding vision was to promote cinematic excellence, encourage artistic craftsmanship, and build a unified national identity through the medium of films.
0: श्रोताओं, आज मेरे सामने जो दृश्य है उसे केवल भव्य कहना पर्याप्त नहीं होगा। सभागार रोशनी से जगमगा रहा है। मंच पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रतीक चिन्ह अपनी पूरी गरिमा के साथ दिखाई दे रहा है। सामने की पंक्तियों में भारतीय सिनेमा के जाने माने चेहरे बैठे हुए हैं। यामी गौतम, कार्तिक आर्यन, धनुष, ममूटी, संजय मिश्रा, रणदीप हुड्डा, अनंत नाग और मनोज मुंतशीर जैसे कई जाने पहचाने चेहरे देख सकते हैं।
1: Over the past seven decades, the National Film Awards have evolved into the highest and most respected cinematic honor in our country. Unlike commercial award shows driven by box office collections, these awards celebrate artistic depth, socio-cultural relevance and technical mastery across all 22 constitutional languages, bringing mainstream blockbusters, regional gems and independent non-fiction onto the same prestigious national platform.
0: इन पुरस्कार पाने वाले चेहरों पर किसी पर उत्सुकता है तो किसी पर वर्षों की मेहनत के बाद मिलने वाले सम्मान की प्रतीक्षा। ऐसे अवसर पर हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। श्रोताओं, सिनेमा की यात्रा भी ऐसी ही है, कभी तालियां मिलती हैं तो कभी आलोचना।
1: And now, let us listen to what Secretary INB Shri Chanchal Kumar ji has to say as his welcome address begins.
2: गौरव का विषय है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

सिनेमा की उत्कृष्टता का सम्मान नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास की यात्रा का आईना भी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन पुरस्कारों में सम्मानित होने वाली फिल्में हमें बदलते भारत की झलक, भारत की कहानियाँ और इसमें भारत के लोग दिखाई देते हैं। हमें प्रसन्नता है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत ने जो आत्मविश्वास अर्जित किया है, भारतीय सिनेमा उसका साक्षी रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इसमें देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की उपस्थिति दिखाई देती है। आज फीचर फिल्म श्रेणी में 34 भाषाओं की कुल 400 फिल्मों के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से ज्यूरी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में 22 पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। नॉन फीचर फिल्म में 24 भाषाओं की 161 फिल्मों के आवेदन थे, जिसमें से विभिन्न श्रेणियों में आज 23 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। सिनेमा में उत्कृष्ट लेखन के लिए 3 पुरस्कार दिए गए हैं। इन पुरस्कार के चयन की पूरी प्रक्रिया में अपनी प्रतिबद्धता, परिश्रम और विशेषज्ञता योगदान करने वाले सभी श्रेणियों के सम्मानित ज्यूरीगण को मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सिनेमा, जिसे कभी केवल मनोरंजन का साधन माना जाता था, आज सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन चुका है। गढ़वाली और तुलु जैसी भाषाओं में बनी फिल्मों की राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति यह दर्शाती है कि भारतीय सिनेमा का निरंतर विकास हो रहा है। लोग अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के प्रति निरंतर और अधिक जागरूक और सक्रिय हो रहे हैं। हमें खुशी है कि बीते वर्षों में भारतीय सिनेमा ने तकनीक में ही नहीं बल्कि वैचारिक स्तर पर भी अपनी विशिष्ट वैश्विक पहचान बना ली है। इस वर्ष की विजेता फीचर फिल्मों में भारतीय सिनेमा की व्यापकता और रचनात्मक ऊर्जा स्पष्ट दिखाई देती है। आर्टिकल 370 का प्रभावशाली ऐतिहासिक कथानक, श्रीकांत में दृढ़ संकल्प और संघर्ष की प्रेरणादायी कहानी, मिथ्या का गहन आत्मविश्लेषणात्मक तथ्य, ब्रह्मयुगन का वातावरण, सिनेमाई शिल्प और उत्कृष्ट प्रस्तुति। इसी प्रकार पुष्पा 2 और कल्कि 2898 AD जैसी लोकप्रिय फिल्मों की सफलता मुख्य धारा के सिनेमा की निरंतर लोकप्रियता को दर्शाती है, जबकि चलचित्र खौन और कमिटी कुरुलू जैसी फिल्म भारत की समृद्ध क्षेत्रीय कहानी कहने की परंपराओं को भी सामने लाती है। नॉन फीचर फिल्म के विजेताओं ने भी उन कहानियों और जीवन की वास्तविकताओं को सामने लाया है जो अक्सर हमारे ध्यान से ओझल रहती थी। भंगार, श्रम, जीविका, संघर्ष और मानवीय गरिमा से जुड़े परिस्थितियों के बीच जीने की इच्छा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। रामनामी समुदाय की सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत करती है। मुझे खुशी है कि आज अनंतनाग साहब को मैं सामने देख रहा हूँ। मालगुड़ी डेज, अंकुर, हमारे किशोरावस्था की खूबसूरत स्मृतियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं। इन्होंने कन्नड़ के साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी भाषाओं की 300 से भी अधिक फिल्मों में स्मरणीय चरित्र निभाए। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के सम्मान के लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हर नई आवाज़, हर नई भाषा और हर नई कहानी के साथ भारतीय सिनेमा अधिक समावेशी, सशक्त और वैश्विक मंच पर प्रभावशाली बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष वेव्स के दौरान कहा था, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। अब सिनेमा का दायित्व है कि वह हमारी ताकत को, विश्व को रूबरी होने का अवसर दे। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे गांव, हमारे लोगों में जो हौसले की कहानियां छिपी है, उसे विश्व के सामने वह सामने लाए। आज हम एकता नगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा की छत्र छाया में एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन दिल्ली से बाहर करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस पहल में सरदार पटेल की वैचारिक दृढ़ता और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका समर्पण हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बना। आने वाले समय में यह पुरस्कार समारोह अन्य शहरों में भी आयोजित किया जाना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से सभी पुरस्कार विजेताओं तथा दादा साहब फाल्के सम्मान से अलंकृत श्री अनंतनाग जी का मैं एक बार पुनः हार्दिक उन्हें बधाई देता हूँ।
इन्हीं शब्दों के साथ 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।

0: आपका हार्दिक आभार माननीय सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार जी। सम्मान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आइए आज के इस गौरवपूर्ण संध्या के बहुप्रतीक्षित पल का पूरे उत्साह, सम्मान और उल्लास के साथ स्वागत करें, क्योंकि अब हम 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय, पुरस्कार वितरण की प्रथम कड़ी में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
1: The National Film Awards are divided into three comprehensive primary sections: Best Writing on Cinema, Non-Feature Films and Feature Films. And finally, the icing on the cake is the Dadasaheb Phalke Award, India's best and the highest lifetime achievement award in cinema, recognizing a lifetime of extraordinary contribution to the growth and development of Indian film. So let's now begin with the Best Writing on Cinema.
2: श्रोताओं, पुरस्कार वितरण के क्रम में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा हो चुकी है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए स्वर्ण कमल का सम्मान मिल रहा है कन्नड़ भाषा के लेखक डॉक्टर किचनूरू प्रदीप कुमार शेट्टी को। उनकी पुस्तक नानी रूडे निमा गागी, नानी रूडे नाना गागी, कन्नड़ सिनेमा दा थातवा मथु राजकीयम।
1: While the winner of the best book on cinema author is being felicitated, before that, let me tell you what is the jury doing about the best writing on cinema. It honors critical scholarship research and film journalism through Swarna Kamal medals. Non-feature films recognizes short stories, socio-environmental documentaries, biographical compilations, and technical achievements in non-fiction cinema, and feature films celebrating artistic performance and technical brilliance across narrative feature films in all Indian languages, including high honors like Swarna and Rajat Kamal medals, are the final epitome of these awards.
2: श्रोताओं, शीर्षक का अर्थ है मैं तुम्हारे लिए हूँ, राज्य हमारे लिए है, कन्नड़ सिनेमा के दार्शनिक और राजनीतिक आयाम। श्रोताओं, यह पुस्तक कन्नड़ फिल्मों को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि समाज, रणनीति, राजनीति, विचारधारा और दर्शन को समझने के माध्यम के रूप में देखती है।
1: The best book on cinema publisher is also now getting felicitated. It is the Mirror Pustaka Publication House, represented by Ms. Soumya H. Publisher Mirror Pustaka receives the Swarna Kamal alongside the author for bringing this landmark film literature to life. Represented by Ms. Soumya H., the publishing house was praised for high editorial quality and dedication to film studies. Their work ensures that critical cinematic discourses reaches film scholars nationwide.
2: श्रोताओं, संजीव श्रीवास्तव को यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके हिंदी फिल्म समीक्षक के रूप में दिए गए विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक लेखन के लिए दिया गया है। उनका काम भारतीय सिनेमा के सौहार्द शास्त्र, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों और समकालीन फिल्म निर्माण को एक नई और गहरी समझ के साथ पाठकों के सामने रखने के लिए सराहा गया है।
1: Shri Sanjeev Srivastava takes home the Swarna Kamal for his insightful Hindi film criticism. His writings demonstrate a keen understanding of cinematic form, narrative nuances and societal reflections in modern film. The next in the category is the non-feature films. The first mention is Chola Dora or Sui in Hindi. Director Shri Lakulesh Ghai receives a certificate and a special mention.
2: श्रोताओं, यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म पश्चिम हिमाचल क्षेत्र में रहने वाले गद्दी समुदाय के जीवन, उनकी समृद्ध संस्कृति और उनकी अनूठी वेशभूषा पर आधारित है। फिल्म का मुख्य केंद्र गद्दी समुदाय की पहचान माना जाने वाला पारंपरिक पहनावा चोला डोरा है। श्रोताओं,
1: Director Lakulesh Ghai receives a special mention certificate for his subtle portrayal of traditional textile arts. The short film weaves a poetic visual thread around craft heritage and human emotion. The jury commended its standard observational technique. Next in the category is a special mention, Chola Dora or Sui, Director Shri Jaimin Modi receiving a certificate.
2: श्रोताओं, इसी श्रेणी में अगला पुरस्कार मिल रहा है मलयालम फिल्म भद्रकाली नाटकम को। फिल्म फिल्म भद्रकाली नाटकम को विशेष उल्लेख का पुरस्कार प्रमाण पत्र के रूप में दिया जा रहा है। यह फिल्म केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक लोक कला और अनुष्ठानिक कहानी कहने की कला को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर जीवंत और संरक्षित करती है।
1: In progress are the non-feature films awards. Next in line is the best script, Obur, Hindi and Kashmir. Script writer Shri Faraz Ali receives a Rajat Kamal.
2: श्रोताओं, फिल्म के लेखक और निर्देशक फराज अली ने इस फिल्म के नाम में ओबुर यानी कि बादल शब्द का इस्तेमाल एक बहुत ही अनोखे और भावनात्मक रूपक यानी मेटाफर के रूप में किया है। आधुनिक दुनिया में हमारा डेटा, हमारी तस्वीरें, वीडियो, यादें इंटरनेट के क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रहती हैं। फिल्म के कश्मीरी ग्रामीण किरदारों के लिए इंटरनेट का यह क्लाउड पूरी तरह से नया और भ्रमित करने वाला है। वे मासूमियत में सोचते हैं कि उनका डेटा आसमान में तैरने वाले असली बादलों में चला गया है।
1: The next award in the category is Best Narration Voiceover, Little Planet, A Tale of Frogs in English. Narrator is Ms. Soundarya Jayachandran, who is receiving a Rajat Kamal. Soundarya Jayachandran takes the Rajat Kamal for her engaging, warm and articulate voice-over narration. Her vocal performance transforms a natural history film on amphibians into an enchanting story for viewers of all ages. The commentary brings clarity, humor and wonder to ecological science.
2: श्रोताओं, यह 44 मिनट्स की एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है जिसे दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के जंगलों में 9 साल की लंबी अवधि में फिल्माया गया है।
1: नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, परत 41 डिग्रीज चा मागावर। म्यूजिक डायरेक्टर श्री शिवपाल सिंह कांग रिसीव्स अ रजत कमल। शिवपाल सिंह कांग विंस फॉर हिज इवोकेटिव म्यूजिकल स्कोर दैट एलिवेट्स द फिल्म्स इमोशनल लैंडस्केप, ब्लेंडिंग एकॉस्टिक टेक्सचर्स विद ट्रेडिशनल मेलोडीज। हिज कंपोजिशन प्रोवाइड्स अ सटल सोनिक हार्टबीट टू द नैरेटिव। द स्कोर एलिवेट्स की विजुअल्स, बीट्स विदाउट ओवरपावरिंग द स्टोरी टेलिंग।
2: श्रोताओं, आपको और क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए चलिए आपको सीधे मंच से जोड़ते हैं।
0: अधिकारियों की भावनाओं को एक मार्मिक कथा का रूप दिया है। बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए रजत कमल, तमिल फिल्म ब्लू के लिए श्री टी एस हरिहारा सूदन को प्रदान किया जा रहा है।
3: As you would have figured, for exceptional sound design and immersive sonic textures, waves, silence and ambient shifts that evoke a child's wish to see a whale, blending hope, emotion and the vastness of sea into a moving experience. Silver Lotus for the best cinematography for the film Life in Loom is presented to Sri Edmund Ransom.
4: When Britishers introduced the chemical dyes in India, every viewers lived.
0: Shri Edmund Ransom ko apni bhavpurn kavyatmak prastutikaran ke liye puraskar diya ja raha hai jo Bharat ke prakritik drishyon ko ek jivant canvas mein badal dete hain jahan manohar chhayankan gati hathkargha bunai ki kalatit kalatmakta aur bhavna ka utsav manati hai. Aur ab gair feature film shreni mein Golden Lotus Award kartal dhwani ke sath taiyar ho jaye kyunki sarvashreshth nirdeshan ke liye हिंदी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के निर्देशक श्री आनंद एल राय प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल का सम्मान।
5: आसमान छूती प्रतिमा के तौर पर विश्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा है।
3: The film is recognized for creative chronicle of the making of the world's tallest statue through dynamic cinematic storytelling, transforming an engineering marvel into a stirring tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, unity and national pride. Award for the best short film is being presented to Anushka Motion Pictures and Entertainments for the Marathi language film Hamsafar. On behalf of Anushka Motion Pictures and Entertainments, Shri Narendra Shanti Kumar Firodia receives the Silver Lotus.
0: एक करुणामयी सिनेमाई कथा के माध्यम से फिल्म हमसफर दर्शाती है कि कैसे साधारण वस्तुएं गहरे व्यक्तिगत महत्व की बन जाती हैं और उनका खोना एक गहरा खालीपन उत्पन्न करता है।
3: Ladies and gentlemen, for the same film, director Shri Abhijit Arvind Dalvi is being awarded Silver Lotus. Through a compassionate cinematic narrative, the film reveals how ordinary objects become deeply personal, how their loss opens a poignant void, sparking a heartfelt search for memory, identity, and emotional connection.
0: बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए जेबी प्रोडक्शंस को मूक फिल्म टच्ड एज वाटर के लिए रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। जेबी प्रोडक्शंस की तरफ से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं फिल्म के एनिमेटर, निर्देशक और निर्माता श्री जोशी बेनेडिक्ट।
3: The film is recognized for its simple yet profound artistry. The film transforms grief into poetic animation, capturing love, loss, and hope through graceful visuals and extraordinary cinematic simplicity. The next award for the best non-feature film promoting social and environmental values goes to Hindi Rajasthani English language film Piplantri, a tale of eco-feminism. On behalf of Johnson Suraj Film International, Ms. Garima Singh is receiving the Silver Lotus.
6: ये जो क्षेत्र है पिपलांत्री पंचायत, ये पूरी तरह मार्बल के खदानों के बीच में है।
7: बहुत बड़े स्तर पर माइनिंग हो रही है, आपको दिख रहा है कि।
2: श्रोताओं, इसी कड़ी में सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया है जॉनसन सूरज फिल्म इंटरनेशनल के बैनर तले बनी फिल्म पिपलांत्री अ टेल ऑफ इको फेमिनिज्म ने, जिसे प्राप्त कर रही है मिस गरिमा सिंह। यह फिल्म हिंदी, राजस्थानी एवं अंग्रेजी भाषाओं में है। इसे मिला है रजत कमल का सम्मान और साथ ही फिल्म के निर्देशक सूरज कुमार को भी मिलता है रजत कमल का सम्मान। श्रोताओं, यह 84 मिनट्स की एक बेहद प्रभावशाली फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री है जो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित पिपलांत्री गाँव की वास्तविक और प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है। इस गांव के पूर्व सरपंच और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्याम सुंदर पालीवाल ने एक अनूठी और ऐतिहासिक मुहिम शुरू की थी।
1: नेक्स्ट इन कैटेगरी इज बेस्ट डॉक्यूमेंट्री रामनामी इन हिंदी, प्रोड्यूसर बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत, रिप्रेजेंटेड बाय मिस लिनेट डिमेलो। She is going to receive Rajat Kamal. Producer Lynette DeMello accepts the Rajat Kamal for backing this striking documentary on the Ram Nami sect of Chhattisgarh. The film documents a community that tattoos sacred names across their bodies as an act of devotion and social defiance.
2: श्रोताओं, यह documentary Ram Nami समुदाय पर केंद्रित है। यह समुदाय अपनी धार्मिक आस्था और पहचान को शरीर पर राम नाम का गोदन या टैटू बनवाकर व्यक्त करने के लिए जाना जाता है। फिल्म उनके विश्वास, परंपराओं और सामुदायिक जीवन को दस्तावेजित करती है।
1: एक्लेम्ड डायरेक्टर भरत बाला गणपति रिसीव्स द रजत कमल फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री रामनामी इन हिंदी। नेक्स्ट इन लाइन इज बेस्ट आर्ट्स कल्चर फिल्म मैनिदा इन हिंदी, प्रोड्यूसर इज संप्रेषण मल्टीमीडिया, रिप्रेजेंटेड बाय श्री अतुल गंगवार एंड ही इज गोइंग टू रिसीव रजत कमल।
2: श्रोताओं, मैनिदा प्रसिद्ध शायर और गीतकार निदा फाजली के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। यह फिल्म सिर्फ निदा फाजली की जीवनी नहीं बल्कि उनके विचारों, संवेदनशीलता और कविता के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश है। उनके शेर दिल को छू जाते हैं। क्या खूब लिखा है उन्होंने कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। और जब वे कहते हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, तो ऐसा लगता है मानो पुरस्कार विजेताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए सराह रहे हों और भीड़ का हिस्सा नहीं बने बल्कि अपना अलग रास्ता चुनकर अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं।
1: Next in line in the non-feature film category is Best Biographical Historical Reconstruction Film, Kakori in Hindi. Producer KSR Brothers and Minty Mishra, represented by Shri Jaswinder Singh, he is going to receive a Rajat Kamal.
2: श्रोताओं, इस फिल्म का विषय 1920 के दशक के ब्रिटिश भारत की ऐतिहासिक काकोरी रेल कार्यवाही है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, के क्रांतिकारी दौर से जुड़ी हुई है। फिल्म में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों से जुड़े घटनाक्रम को ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
1: The same film, best biographical historical reconstruction.

0: मुद्दों विशेषकर महानगरों की ओर युवाओं के बड़े पैमाने पर पलायन यानी माइग्रेशन को दिखाने के लिए है या दर्शाती है कि कैसे विकास की अंधी दौड़ युवाओं को उनकी मूल भाषा संस्कृति और पहचान से दूर कर देती है।
1: Next in line is the filmmaker Sumira Roy claiming the top non-feature award, the Swarna Kamal, as both producer and director. Film Bhangar explores urban waste, informal labor and human resilience with unyielding cinematic power. The film was unanimously hailed by the jury as a masterpiece of modern non-fiction storytelling.
0: श्रोताओं, भंगार फिल्म का केंद्र कबाड़ और उसे इकट्ठा करके जीविका चलाने वाले लोगों की दुनिया है। फिल्म ऐसी वस्तुओं और लोगों पर ध्यान देती है जिन्हें समाज अक्सर महत्वहीन या बेकार मानकर नजरअंदाज कर देता है। यह फिल्म कबाड़ बीनने और उसका पुनर्चक्रण करने वाले लोगों के जीवन, श्रम और रोजगार की वास्तविकता को दर्शाती है।
1: And now,

0: निर्माता निर्देशक और टेक्नीशियन और देश विदेश से पधारे
1: अतिथि
0: मीडिया के साथियों और भारत सरकार एवं गुजरात सरकार के सभी अधिकारियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकत्र हुए हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, आप यहां पर पधारे और इस कार्यक्रम को गौरवमय बनाया। जूरी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत की। ऑल ऑफ यू वर्क्ड वेरी हार्ड, सॉ सो मेनी मूवीज, हैड वेरी डिटेल्ड डिस्कशंस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट यू पुट इन। एंड स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स, गेटिंग अ नेशनल फिल्म अवार्ड इज सच अ ग्रेट ऑनर, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द विनर्स। हर फिल्म के पीछे एक पूरी टीम की मेहनत होती है। आज का सम्मान न केवल जो विजेता यहाँ पर मंच पे आ रहे हैं, बल्कि उस पूरी टीम का है जो पर्दे के पीछे अपनी मेहनत से और अपनी डिसिप्लिन से फिल्म को फिल्म के देखने लायक जैसा बनाते हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द टेक्नीशियंस, सिनेमाटोग्राफर्स, ऑल ऑफ यू मेक द मेक इट पॉसिबल फॉर द विनर्स टू कम हियर एंड स्टैंड ऑन द स्टेज। आज दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के विजेता श्री अनंत नाग जी भी हैं। आज आपका विशेष अभिनंदन, वी विश यू सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन ग्रेट सर्विस टू द फिल्म वर्ल्ड, अ वेरी वर्सेटाइल टैलेंट। आई हैव इंटरेक्टेड विद मिस्टर नाग, ही हैज सर्व्ड द फिल्म वर्ल्ड फॉर मोर देन 5 decades. Give him a huge round of applause. Standing ovation for Anant Nag ji. Great. Thank you. Thank you. आप सब जानते हैं कि जब G20 हुआ था, भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को एक अलग तरीके से पूरे देश में, कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज़ में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वॉज एन एग्जाम्पल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आर कंट्री कैन बी शोकेस्ड टू द वर्ल्ड। That is the thought process that we have adopted in this year's NFA. The thought process is, let us take the National Film Awards to very important tourist destinations of our country. आज हम एकता नगर, जहाँ सरदार साहब की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, world's highest tallest statue है, उस जगह आज हम इकट्ठे हुए हैं। That gives a huge opportunity for all of you from the film world.

0: to come and experience this beautiful place. Come and experience the heritage of this place. Come and experience the historic events which happened in our country when the British were thrown out of the country. Ab agli bar we'll go to one more important destination. How will we select the destination? I am giving a call to all the states and union territories. Select one of the most important tourist destinations in your state. Tell us what improvements you will make in it. Make those improvements. And then your destination will be selected and we'll have the next round of NFA in the selected tourist destination. Is method say we will be able to move around to some of the most important tourist destinations in our country. The film world, all of you are so popular among the youngsters, among the entire country. Aap jab us tourist destination par jaoge, obviously us tourist destination ka promotion apne aap ho jayega. Aur aapko bhi benefit hai because you will also experience the unique tourist destinations of our country. So it's a win-win. That is the thought process. So those who get into narrow political discussions, I want to request you, look above your political interests and think of our country first. Think of the nation first. Nation first, always first. Last year, I shared with you, हम किस तरह से नौजवानों के लिए एक नया टैलेंट डेवलपमेंट का प्रोग्राम बना रहे हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT. वी स्टार्टेड द फर्स्ट कैंपस इन मुंबई इमिडिएटली आफ्टर वेव्स. एंड वेव्स वॉज सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, सच अ ग्रेट समिट. एज अ फॉलो अप टू सो मेनी थिंग्स विच हैव हैपेंड आफ्टर वेव्स, IICT वॉज वन ऑफ देम. And I'm very happy to share with you, while the permanent campus is being constructed in the NFDC campus building, we have started the IICT, and by now about 380 students have already taken admissions in 13 courses. Most important point is the entire course curriculum is designed by the industry. We had promised you that this will be state of the art education which is totally driven by industry, totally driven by the modern changes in technology, and that is what we have delivered in IICT. And now Honorable Prime Minister has approved 15,000 creative labs across the country, जिससे हमारे youth को एक नई opportunity मिलेगी, नई technologies को सीखने की, अपनी creativity को market में लाने की. भारत के जो विविध संस्कृति है, the diverse culture that we have, उसको देश में दुनिया में पहुँचाने की. मैं आपसे कुछ छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं. एक, वी वॉन्ट टू स्टार्ट अ वे बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई टैलेंट, रॉ टैलेंट, टैलेंट विच डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी इन अ बिग सिटी, टैलेंट विच डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी मेंटोर्ड और बी गाइडेड बाय सम रियली इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम द फिल्म वर्ल्ड. How do we create a program for that talent? हमने आपके फिल्म वर्ल्ड से हमारे प्रसून भाई जोशी को सरकार में ले लिया है, दूरदर्शन में. प्रसून भाई, why don't you wave at the... So now he is with us. So he was always with us. Now we have given him a very big task. Young talent को, raw talent को identify करने के लिए Prasoon Bhai will be making a team and I'll be requesting all of you from the film world जो यहाँ पे present है और जो present नहीं है उनमें से भी please volunteer, please those who want to contribute to this journey where raw talent, where good talent, where talent which is hidden in the villages and small towns of our country, उस talent को एक नया मंच मिले, उस talent को एक बड़ा स्टेज मिले, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हेल्प करोगे? कोई वॉलंटियर्स यहाँ पे? Can I see one hand, two hands, three hands? Oh wow! ये तो बात बन गई। इतने लोग तैयार हैं साथ। प्रसून भाई आपका काम आधे से ज़्यादा पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट सपोर्ट। दूसरा है वेव्स 2027। वेव्स 2027 अगले साल अक्टूबर में करेंगे। अब तक बहुत अच्छे तरीके से वेव्स का फॉलोअप चल रहा है। वेव्स बाजार में बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और अब इस अगले एडिशन का 2027 में विल डू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर आइडियाज, शेयर योर थॉट्स एंड मेक वेव्स एन इंस्टीट्यूशन विच विल बी देयर फॉर द क्रिएटिव वर्ल्ड फॉर मेनी मेनी ईयर्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड वंस अगेन मैं माननीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप यहाँ पधारे। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। माननीय गवर्नर साहब को धन्यवाद देता हूँ। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नेक्स्ट इन लाइन वी नाउ गो टू फीचर फिल्म्स अवार्ड्स इन वेरियस लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। Such enigmatic and charismatic is the charm of Indian cinema that I cannot help but tread into my co-commentator Neelam's territory and recite these few couplets in Hindi. Zindagi ye aina hai aur cinema us aina-e wajood par chamakti hui roshni. Har parda ek daastan kehta hai, har tasveer mein ek fasana hai. Kahin ashk hai, kahin muskurahat, kahin ek khwab suhana hai. Aur inhi daastanon ki darkhanon mein gungunata hamara Hindustan hai. Let's now go on to the feature films category. Special mention about two films. Maya Jahan in Talim, Tamil. Sound mix engineer Shri Suren ji would be now receiving a certificate. Sound engineer Suren ji receives a special mention certificate for his delicate acoustic mixing in Maya Jahan. His sound mix captures the natural ambience of rural landscapes and intimate dialogue. The subtle sound design deepens the film's emotional intimacy. Second in the category of special mention is the film Captain Miller in Tamil. Actor Shri Dhanush is coming on to the stage to receive this award. Superstar Dhanush earns a special mention certificate for his intense, raw and fiery performance in Captain Miller.
2: श्रोताओं, संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्मों के पुरस्कार का समय आ गया है, जिसमें दो फिल्मों को चुना गया है, तुलु फिल्म और गढ़वाली फिल्म। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म का पुरस्कार मिला है इम्बू को, जिसके निर्माता पिक्चर स्टूडियोज की ओर से श्री प्रशांता कुमार बी ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान, और फिल्म के निर्देशक शिवाध्वज शेट्टी को भी मिल रहा है रजत कमल का राष्ट्रीय सम्मान। श्रोताओं, यह फिल्म आज के डिजिटल युग में समाज के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक है, जो मुख्य रूप से तीन संदेश देती है। केवल स्मार्टफोन खरीद लेना काफी नहीं है, बल्कि उसके सुरक्षित उपयोग की समझ होना बेहद जरूरी है। यह फिल्म साइबर स्कैमर्स के तौर तरीकों को उजागर करती है और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी देती है। कहानी यह सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक तकनीक जहां एक तरफ विकास का जरिया है, वहीं अगर उसे बिना सोचे समझे अपनाया जाए तो वह हमारी पारंपरिक जीवन शैली और मानसिक शांति को कैसे बर्बाद कर सकती है।
1: Producer Sunil Nayak takes home the Rajat Kamal for bringing Garhwali culture to the national stage. Dholi film centers around traditional folk musicians and their socio-economic struggles in the Himalayan hills. The film was commended for its strong cultural preservation value.
2: श्रोताओं, ढोली की कहानी उत्तराखंड की पारंपरिक ढोल सागर यानी ढोल बजाने की प्राचीन कला और इसे जीवित रखने वाले ढोली समुदाय के संघर्ष पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि उत्तराखंड में कोई भी शुभ कार्य सामाजिक या धार्मिक ढोल के बिना पूरा नहीं होता।
1: बेस्ट घरवाली फिल्म ढोली, डायरेक्टर श्री दिनेश पुंडलिक भोसले रिसीव्स रजत कमल। He wins for his sensitive portrayal of mountain life and artistic heritage. His direction captures breathtaking Himalayan landscapes alongside poignant human drama. The film gives a powerful voice to Uttarakhand's regional storytellers. And the next in line is best Telugu film, Kamiti Kurallovu. Producer Pink Elephant Pictures and Sri Radha Damodara Studios, represented by Miss Niharika Konidela.
2: श्रोताओं, कमेटी कुरोल्लू आंध्र प्रदेश के एक गांव की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म है जिसमें बचपन के दोस्तों के बीच के गाढ़े रिश्तों, आपसी मनमुटाव, ग्रामीण राजनीति और समय के साथ बदलते सामाजिक समीकरणों की कहानी कहती है।
1: The same film also receives the Best Director Award. Shri Yadu Yuamsi wins for his dynamic ensemble staging and nostalgic narrative framing. He manages a large cast of newcomers while maintaining crisp dramatic control. His direction captures authentic rural warmth and emotional coming-of-age moments. Next in line is the Best Odia film, Lahari. Producer Jilik Motion Pictures, represented by Miss Jilik Bhattacharji, is on the stage to receive the Rajat Kamal.
2: श्रोताओं, इसी पिक्चर के निर्देशक अमृत्य भट्टाचार्य को भी रजत कमल का पुरस्कार मिल रहा है। यह एक बेहद प्रशंसित और समीक्षकों द्वारा सराही गई ओडिया फीचर फिल्म है। इस फिल्म को कलात्मक सिनेमा के क्षेत्र में अपनी अनूठी कहानी और बेहतरीन प्रस्तुति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।
1: Lahari delves into human relationships, artistic passions and coastal life realities. The film represents a bold aesthetic leap forward for contemporary Odia cinema. The film stands as a triumph of independent artistic cinema. Next in line is the best Marathi film, Mukkam Post Bombilwale Wadi. Producer Vivek Films, represented by Shri Bharat Dilip Shitode. He is there to receive the Rajat Kamal.
2: श्रोताओं, यह फिल्म 1942 के स्वतंत्रता संग्राम के समय की एक मजेदार काल्पनिक कहानी है जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर गलती से कोंकण के एक छोटे से गांव बॉम्बिलवाड़ी में आ जाता है। इसके बाद गांव के सीधे साधे लोग और एक स्थानीय नाटक मंडली मिलकर हिटलर का सामना अपने अनोखे और हास्यास्पद अंदाज में करते हैं, जिससे पूरी फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी पैदा होती है।
1: Next film in the language category is Best Manipuri Film, Sunita. Producer Skyline Pictures and Company, represented by Shri Yomanam Brojen Singh. Producer Yomanam Brojen Singh accepts the Rajat Kamal for backing this powerful social drama. Sunita highlights female resilience, social struggles and cultural endurance in Manipur. The film brings vital stories from the northeast to national prominence.
2: श्रोताओं, यह फिल्म श्रीमती मोइंगा मोइरांगदम सुनीता देवी के वास्तविक जीवन की सच्ची घटनाओं और उनके संघर्षों पर बनी एक बायोपिक है जिसमें उनका अपनी दृष्टिहीनता से संघर्ष, शिक्षा के लिए दृढ़ता और पारिवारिक चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणादायक यात्रा दिखाई गई है।
1: Director Shri Yomanam Ajit Singh also receives the Best Director Award for the same film, Sunita. He wins for his realistic, compassionate and directorial approach. He draws deeply affecting performances from his cast while depicting real social challenges. Next in line is the Best Malayalam film, Feminichi Fatima, producer 1001 Stories and AFD Cinemas, represented by Shri Tamar Mon Karuanta Vallapil.
2: श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी फातिमा नाम की एक आम गृहिणी के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घर और समाज की पितृसत्तात्मक सोच और पाबंदियों से आजाद होने की कोशिश करती है। ज्यूरी ने घरेलू पितृसत्ता पर इसके मजाकिया और सटीक कटाक्ष की सराहना की है।
3: फिल्म के निर्माता फ्लोइंग मंजोवी फिल्म्स LLP, आरएस क्रिएशंस एंड कठपुतली आर्ट्स एंड फिल्म्स की तरफ से श्री शरद मित्तल को रजत कमल का सम्मान।
4: Hi Jack, how are you? Gracie.
5: The story beautifully blends grief, love and cultural identity with remarkable sensitivity. The film offers deeply rooted narrative marking significant milestone for Konkani cinema. And The director of the film, Sri Radhesham Pipalwa, is receiving the Silver Lotus.

0: फिल्म बॉग असुम को एक ऐसी भावनात्मक कहानी के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है जो दुख, प्रेम और सांस्कृतिक पहचान की बेहद संवेदनशीलता से सामने लाती है। अपनी जड़ों से जुड़ी ये फिल्म कोंकणी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
1: Also, the director of the film, Sri Agnello Braganza, being awarded with Silver Lotus.
0: मॉग असुम कोंकणी सिनेमा में अपनी अनूठी कहानी और भावपूर्ण अंदाज के कारण एक मील का पत्थर साबित हुई है। और सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म का पुरस्कार फिल्म मिथ्या को प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक श्री सुमंत भट्ट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारते हुए।
1: The film is recognized for its profound portrayal of childhood trauma, angst, grief and fragile illusions of stability in fractured society. The award for the best Hindi film is awarded to Shrikant, produced by Super Cassettes Industries Private Limited, Shock and Cheese Films Production. Shri Bhushan Kumar receives the Silver Lotus.
2: What is your name, young man?
3: Sir, my name is Shrikant Bola.
0: सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रीकांत दृष्टिबाधित उद्योगपति की जीवनी पर आधारित एक प्रेरणादायक हिंदी फिल्म है जो इंसानी जज्बे की जीत के गहन मानवीय चित्रण के लिए प्राप्त कर रही है राष्ट्रीय पुरस्कार। इसी फिल्म के लिए रजत कमल ग्रहण करते हुए फिल्म के निर्देशक श्री तुषार हीरानंदानी।
1: Shrikant transcends the conventions of biographical drama to deliver a story of hope with honesty and grace. The next award is for Best Gujarati Film, conferred to Maran, produced by Cineman Productions Limited, and Sri Amit Desai to receive the Silver Lotus.
4: Beauty and a Beast, Bhega Thai.
0: Film Maran, अन्याय का सामना करती महिलाओं के साहस, दृढ़ता और एकजुटता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है और समकालीन गुजराती सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसी फिल्म के निर्देशक श्री अभिषेक जैन को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है।
1: The film is recognized for its bold exploration of gender violence and patriarchal oppression through a powerful narrative. Thank you, Honorable President and distinguished guests. May I now request Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel, to address the gathering.

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 कार्यक्रम में हम सभी के साथ मंच पर उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के राज्यपाल माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग के सचिव श्री चंचल कुमार, फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष श्री जयराज, नॉन फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष श्री असीम सिन्हा, बेस्ट फिल्म लेखन ज्यूरी के अध्यक्ष श्री ए चंद्रशेखर, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल और 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माता और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की धरती गुजरात में पधारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया तथा आप सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। गुजरात गांधी जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। मित्रों, अगर सरदार पटेल न होते तो शायद जिस भारत को आज हम देखते हैं वो भी नहीं होता। सरदार साहब ने दृढ़ संकल्प से तत्कालीन रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके एक और अखंड भारत का निर्माण किया। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक और अखंड भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार साहब के महत्वपूर्ण योगदान को इस एकता नगर में लोह पुरुष सरदार साहब की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण से यथायोग्य गौरव दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का एकता नगर में पहली बार आदरणीय राष्ट्रपति महोदया की प्रेरक उपस्थिति में आयोजन हमारे लिए गर्व का अवसर है। आज एकता नगर में देश के फिल्म जगत का यह राष्ट्रीय सम्मान एक और संदेशा भी देता है। हमारी एकता जितनी विराट है उतनी ही हमारे सर्जकों फिल्म मेकर्स की सृजन शक्ति भी विशाल है। सिनेमा केवल मनोरंजन की ही नहीं परंतु समाज का प्रतिबिंब है, संस्कृति और संवेदनाओं को व्यक्त करने का सक्षम मंच है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में भारत ने विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाई है। इस पहचान को और गति देने में भारतीय सिनेमा उद्योग सॉफ्ट पावर की बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक फिल्म भाषा की सरहद पार कर सकती है, कलाकार करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं, एक कहानी विश्व को भारत के साथ जोड़ सकती है। ऐसी ही विविध भाषाओं, संस्कृतियों और भारत के कोने कोने में मौजूद प्रतिभाओं में से उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के हाथों सम्मानित करने का आज का अवसर है। श्री ममूटी, श्री कार्तिक आर्यन, श्रीमती यामी गौतम, हमारे बाल कलाकारों और इन प्रेरणादायी कहानियों के पर्दे पर साकार करने वाले सभी कलाकारों, निर्देशकों, लेखक और टेक्नीशियनों को अभिनंदन एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह समारोह गुजरात के लिए दुगुनी खुशी का अवसर है, क्योंकि गुजराती फिल्म मारण को भी बेस्ट गुजराती फिल्म का पुरस्कार मिल रहा है। सिनेमा जगत के इतने दिग्गज रचनाकारों का गुजरात की धरती पर संगम केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि नई रचनात्मक यात्रा की शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने उद्योग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी तथा सेमिकॉन जैसे इमर्जिंग सेक्टर तथा टूरिज्म में अपनी विशेष पहचान बनाई है। अब इस डेवलपमेंट जर्नी में क्रिएटिव इकोनॉमी को भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाने की मंशा है। गुजरात के पास प्रकृति और विरासत का अद्भुत खजाना है। कच्छ का सुंदर सफ़ेद रण है, नर्मदा, तापी और साबरमती जैसी पवित्र नदियाँ हैं।
गिरनार और सापुतारा जैसे रमणीय पर्वत हैं, एशियाटिक लायन और गिर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एट्रैक्शन हैं, धौलावीरा और लोथल जैसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो देश के सबसे लंबी 2300 किलोमीटर से अधिक की समुद्री तटरेखा भी गुजरात के पास है। गुजरात अपनी पौराणिक विरासत, सदियों पुरानी परंपराएं, अनूठी संस्कृति, विश्व प्रसिद्ध गरबा, लोक मेले और उत्सवों से समृद्ध हैं। गुजरात के अद्भुत लोकेशन के कारण ही ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर, सत्य प्रेम की कथा, कसुम्बो, काइपोचे, फोर्स त्रण और लालो जैसी फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के सभी निर्माताओं और निर्देशकों को हमारा निमंत्रण है, गुजरात के इन विविधपूर्ण पर्यटन लोकेशन का अनुभव कीजिए और अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए गुजरात को डेस्टिनेशन बनाइए। गुजरात फिल्म निर्माताओं के लिए रिक्वायर्ड परमिशन, फिल्म प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तथा प्रोड्यूसर फ्रेंडली अप्रोच जैसे इनिशिएटिव्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात को फिल्म प्रोडक्शन तथा ओटीटी के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस बनाने के उद्देश्य से गुजरात सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई है। हमारा प्रयास है कि गुजरात में

0: फिल्मों के शूटिंग लोकेशन से आगे बढ़कर प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग क्षेत्र का पूरा इकोसिस्टम बने। हम एक ऐसी संगीन संरचना बनाना चाहते हैं कि गुजरात का युवा अपने शहर या गांव में रहकर वर्ल्ड क्लास फिल्म, एनिमेशन, वीएफएक्स या डिजिटल कनेक्ट पर काम कर सके। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के आयोजन से गुजरात की यश कीर्ति में एक नया मोरपंख जुड़ा है। हमें इस अवसर का सौभाग्य देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने में, गुजरात को अग्रसर रखने में आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके भविष्य के प्रयासों में निरंतर सफलता प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।
1: श्रोताओं, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के संबोधन के बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है और प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की के पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिसकी श्रेणी में अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का।
2: द फिल्म इज रायन, प्रोड्यूसर सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, रिप्रेजेंटेड बाय मिसेस कावेरी कलानिधि। शी वुड बी देयर टू रिसीव द रजत कमल।
1: श्रोताओं, रायन निर्माता सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड की ओर से श्रीमती कावेरी कलानिधि को रजत कमल का पुरस्कार मिल रहा है और निर्देशक धनुष को भी रजत कमल का राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है।
2: The production combines high technical scale with visceral family drama. It stands as a commercial and critical highlight of modern Tamil cinema. Feature film best in the category of the language Tamil is Rayan, and the director is Shri Dhanush. Dhanush claims his second award of the ceremony, winning Best Director for guiding his 50th landmark film. His directorial vision crafts intense action, deep brotherhood ties, and relentless moral conflict. His staging proves his commanding authority both behind and in front of the camera. The next category is Best Bengali Film. Chalchitra Ikon, producer Anjan Dutt Production, represented by Shri Neel Dutt.
1: Shrotaon, यह फिल्म निर्देशक अंजन दत्त की खुद की यादों और उनके वास्तविक जीवन पर आधारित है। यह फिल्म उनके द्वारा उनके गुरु भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता मृणाल सेन के जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें समर्पित एक भावुक श्रद्धांजलि है।
2: प्रोड्यूसर नील दत्त एक्सेप्टेड द अवार्ड फॉर दिस डीपली पर्सनल होमेज टू लेजेंडरी ऑशियर मृणाल सेन। द फिल्म एक्सप्लोर्स द मेंटर डिसिपल रिलेशनशिप इन 1980s कोलकाता फिल्म सर्कल्स। इट इज ऑल्सो रिसीविंग द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर द सेम फिल्म चलचित्र इकॉन। एंड हियर कम्स श्री अंजन दत्त। Veteran artist Anjan Dutt wins for directing a deeply reflective semi-autobiographical tribute to his mentor.
1: श्रोताओं, अब श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म में जुई फूल को दिया जा रहा है सम्मान। इसके निर्माता श्री जादुमोनी दत्ता, मिस रीता दत्ता और मिस नंदिनी शर्मा दत्ता। मिस रीता दत्ता रजत कमल का पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। इसे फिल्म के निर्देशक श्री जादुमोनी दत्ता को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। श्रोताओं, यह फिल्म एक असमिया विधवा और एक नागा महिला के बीच के मानवीय रिश्तों और मातृत्व की एक बेहद संवेदनशील कहानी को दर्शाती है।
2: Best Assamese film Joyful receives awards for producer and also for the director. Shri Jadumani Datta is also there to receive the award as a director. It is one for guiding Joyful with deep compassion and documentary-like realism. The camera work focuses on ordinary lives caught in territorial tensions, finding hope in shared humanity. The direction delivers a quiet yet unforgettable emotional impact. Next in line is the best action direction film Maharaja in Tamil language wins the best

0: Best Action Direction Film Award. Stunt choreographer Shri Anil Arasu will be there to receive the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन में तमिल पिक्चर महाराजा के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार मिल रहा है अनिल अरसु को। इन्हें मंच पर पुरस्कार ग्रहण किए करते हुए हम देख सकते हैं।
0: The next in line is the award for the best choreography and in Hindi's 3-2 film choreographer Shri Vijay Ganguly comes on stage to receive the award.
1: श्रोताओं, गीत आज की रात के लिए विजय गांगुली को मिल रहा है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड। सिनेमा में कभी एक धुन कहानी कहती है, कभी एक शब्द और कभी एक कदम।
0: The sequence became a national pop culture moment demonstrating choreography's power in mainstream cinema. Here's Vijay Ganguly receiving the Rajat Kamal. Next in line is the award for best lyrics in Hindi for the film Maidan. Lyricist Shri Manoj Muntashir receives the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, मैदान के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए मनोज मुंतशिर को दिया जा रहा है पुरस्कार। फिल्म में यह गाना कठिन परिस्थितियों में हौसला और लचीलापन बनाए रखने की भावना को दर्शाता है।
0: The poetic lyrics that capture national pride and sporting grit, Manoj Muntashir comes on the stage and receives the award for his lyrics in the film Maidan. Next in the category is Best Music Direction Background Score. Amaran film Tamil, music director Shri G.V. Prakash Kumar, he is there to receive the award on stage.
1: फिल्म अमरन, तमिल फिल्म अमरन के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक जी वी प्रकाश कुमार के लिए को मिल रहा है रजत कमल का सम्मान।
0: The powerfully and emotionally charged background score really touches the heart. The film अमरन, म्यूजिक डायरेक्टर श्री जी वी प्रकाश कुमार रिसीविंग द बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर अवार्ड। नेक्स्ट इन लाइन इज द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन सॉन्ग्स फॉर द फिल्म Article 370, music director Shri Shashwat Sachdev comes on stage to receive this award.
1: श्रोताओं, संगीत निर्देशन और गीत में अब मिल रहा है आर्टिकल 370 के लिए गीतों के संगीत निर्देशन के लिए शाश्वत सचदेव को रजत कमल का सम्मान।
0: The compositions of this film combine modern orchestral arrangements with patriotic vocal lines. The songs elevate the film's narrative momentum without distracting from the tension. Next in line is the category Best Makeup for Kamiti Kurallu Telugu Film. Makeup artist Shri Pasupuleti Ravi Kumar comes on stage to receive the award.
1: श्रोताओं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें कई नाम शायद फिल्म देखते समय दिखाई नहीं देते, लेकिन पर्दे पर जो कुछ दिखाई देता है उसकी नींव इन्हीं लोगों के काम से तैयार होती है। और सर्वश्रेष्ठ मेकअप कमेटी कुरुलु के लिए पी रवि कुमार को मिलता है रजत कमल का सम्मान।
0: द नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर द फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट 2। तेलुगु फिल्म कॉस्ट्यूम डिजाइनर श्री शीतल इकबाल चंद शर्मा रिसीव्स द अवार्ड। शीतल इकबाल चंद शर्मा विंस फॉर क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर अटायर रूटेड इन रस्टिक टेक्सचर्स। हिज डिजाइंस गिव डिस्टिंक्ट विजुअल आइडेंटिटी टू राइवल फैक्शंस एंड रीजनल कल्चरल अटायर। द कॉस्ट्यूम्स प्लेड अ मैसिव रोल इन शेपिंग द फिल्म्स आइकॉनिक विजुअल स्टाइल। द नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन अगेन पुष्पा द रूल पार्ट 2। तेलुगु कॉस्ट्यूम डिजाइनर मिस दीपाली नूर आल्सो रिसीव्स द को अवार्ड।
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दो डिजाइनर्स को सम्मानित किया गया है। पुष्पा द रूल पार्ट 2 में दीपाली नूर और पुष्पा द रूल पार्ट 2 के लिए ही शीतल शर्मा को रजत कमल से सम्मानित किया गया है।
0: नेक्स्ट इन लाइन इज बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन Kalki 2898 AD in Telugu. Production designer Shri Nitin Zihani Chaudhary receives the award for this film Kalki 2898 AD. Best production design.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जो तमिल में बनी है मूवी कल्कि 2898 AD, तेलुगु मूवी, नितिन जिहानी चौधरी को मिल रहा है रजत कमल का सम्मान।
0: और आइए अब आपको स्टेज पे ले चलते हैं, वहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है।

0: The luminous black and white cinematography transforms light and shadow into powerful storytelling tools.
1: सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए श्री अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के लिए रजत कमल का सम्मान।

0: गीत नवसाची गोराई माजी में उनकी शक्तिशाली प्रस्तुति और शास्त्रीय संगीत में निपुणता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सम्मानित अतिथिगण, पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी से विनम्र आग्रह करते हुए उन्हें संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी।
1: भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मान्य श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मान्य डॉक्टर एल मुरुगन जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय सचिव श्री चंचल कुमार जी, फीचर फिल्मों की जूरी के अध्यक्ष माननीय श्री जयराम जी, नॉन फीचर फिल्मों के जूरी के अध्यक्ष माननीय श्री असीम सिन्हा जी, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन की जूरी के अध्यक्ष माननीय श्री ए के चंद्रशेखर जी, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने

वाले माननीय श्री अनंत नाग जी, फिल्म जगत के महानुभाव तथा देश के कोने कोने से पधारे सभी सम्मानित पुरस्कार विजेताओं, भाइयों और बहनों, आज जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, फिल्म पुरस्कार लगभग दिल्ली में होते थे। पहली बार मैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिल्ली से बाहर प्रथम बार इस फिल्म पुरस्कार को स्थानांतरित किया, तो वो भी गुजरात में किया और गुजरात में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वास्तव में 562 रियासतों में बटा देश आज़ाद हो भी गया था। यदि वो इन खंडों में बटा होता तो आज भारत कैसा होता अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे लौह पुरुष जिनके व्यक्तित्व को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो मान दिया, वो सम्मान दिया, जिसके वो सही अर्थों में अधिकारी थे, आज यह बहुत बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी का स्थल पूरे देश के लोगों के लिए भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का केंद्र बन चुका है। आप फिल्म जगत के लोग हैं, आप अपनी विधा के द्वारा जिस सरलता से, जिस सहजता से समाज की हर वर्ग की चुनौतियों को लोगों के दिलों तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज फिल्म जगत ने भारत की सभी भाषाओं को समृद्ध करने का काम किया है, भारत की राष्ट्रभाषा से देश को जोड़ने का काम किया है, लोगों को एक दूसरे से पहचान दिलाने का काम किया है। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। एक छोटा सा निवेदन भी मैं ज़रूर करूँगा, भाई और बहनों, हम मनोरंजन की दुनिया में आज बहुत तनाव में दुनिया गुजर रही है, बहुत डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, लेकिन आप उनको भी बाहर निकालने का काम करते हैं। इसी के साथ गुजरात प्रांत एक बहुत बड़ा अभियान चला रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें नेतृत्व है। आज हमारी युवा पीढ़ी, हम सब लोग हर दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनको कोई सुनता नहीं था, आज से 40 वर्ष पहले इस देश में कैंसर को कोई नहीं जानता था, डायबिटीज़ को कोई नहीं जानता था, हार्ट अटैक को कोई नहीं जानता था, पेनक्रियाज फेल होती कोई जानता नहीं था। हम जितने बैठे, किसी के पिताजी ने कभी घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज हम सब लाइन में बैठे हैं। 20-20 साल के बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे कैंसर से जूझ रहे हैं, पेनक्रियाज फेल हो रही, कारण के बिना कार्य नहीं होता। और इसका बहुत बड़ा कारण आज हमारा जो पर्यावरण है वो तेजी से बिगड़ रहा है। आपने और हमने फिल्मों के माध्यम से नेचुरल फार्मिंग की ओर लोगों को प्रेरित करने का काम करना चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी तरीके आ सकें वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना चाहिए। ऐसा खान पान जिससे लोग स्वस्थ और निरोग होकर के जी सकें। आज भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हम उन्नति कर रहे हैं। यदि भारत अपनी पुरातन सांस्कृतिक परंपरा,
जो सारे देश में एक जैसी है।

0: आपके माध्यम से भारत की संस्कृति के वो मूल सूत्र जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पर जुड़े हुए थे, जो शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय पर जुड़े थे, हमारी फिल्मों के माध्यम से मार धाड़ का रूप थोड़ा सा हल्का करके लोगों में एकता, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा, और हम एक दूसरे के काम आ सकें और राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ एक एक मेरे देश का व्यक्ति आगे बढ़े। मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आज जो युवा पीढ़ी के लोग मंच पर आए, भारत की सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने जिनको आज बड़े गर्व के साथ सम्मानित किया है, इस दिशा में यदि हम आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित कर पाए, निर्व्यसनी कर पाए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से सोचने का पैदा कर पाए, ये फिल्म जगत के माध्यम से, क्योंकि वो लोगों के दिलों में उतरती है, सहज भाव से आप कठिन विषय को सरल बनाकर लोगों तक पहुंचा पाते हैं। मैं पुनः आप सब गुजरात की इस पावन धरा पर आए आपका अभिनंदन करते हुए आपके सुमंगल भविष्य की कामना करता हूं और सबको पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी के संबोधन को, और इसके बाद कार्यक्रम फिर से पुरस्कार वितरण की ओर बढ़ चला है। माननीय राष्ट्रपति जी अन्य डिग्निटरीज के साथ पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर पधार गई हैं। क्रम चल रहा है संगीत और गायन के पुरस्कार का। अब समारोह में संगीत का रंग घुल गया है। सिनेमा की कहानी आंखों से शुरू होती है लेकिन अक्सर दिल तक पहुंचती है संगीत के रास्ते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला है वैकोम विजयलक्ष्मी को फिल्म एआरएम के लिए, जो मलयालम फिल्म है, और गीत है अंगुवाना कोनिलू।
2: वैकोम विजयलक्ष्मी अर्न्स रजत कमल फॉर हर कमांडिंग पिच परफेक्ट वोकल डिलीवरी ऑफ अंगुवाना कोनिलू। Her unique vocal timbre adds mythic scale and emotional depth to a period fantasy adventure. Her performance stands out as a high point in film music. Next in line is Best Child Artist, Onko Kikothing in Bengali. Child Artist, Miss Geeta Shri Chakravarti receives the award.
1: Shrotao, category hai Sarvashrestha Bal Kalakar ki, aur aapko bata de कि ये नई पीढ़ी मंच पर खूबसूरत दिखाई दे रही है और इसमें दो पिक्चरों के लिए बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है। टोटल 5 बच्चों को इसमें पुरस्कार मिल रहा है, जिसमें अंकों की कोथोन यानी क्या गणित कठिन है के लिए, जो बंगाली फिल्म है, उसके लिए 3 बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है। सबसे पहले आ रही हैं गीताश्री चक्रवर्ती, जो अपना पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं।
2: यंग गीताश्री चक्रवर्ती रिसीव्स रजत कमल फॉर अ हार्टवार्मिंग कंप्लीटली नेचुरल परफॉर्मेंस। शी पोर्ट्रेज अ स्कूल चाइल्ड डीलिंग विद क्लासरूम प्रेशर्स एंड चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी विद इनोसेंस। हर स्क्रीन प्रेजेंस ब्रिंग्स जेन्युइन चार्म टू द बंगाली फीचर। नेक्स्ट इन लाइन इज द चाइल्ड आर्टिस्ट तपोमोय देव शेयर्स टॉप चाइल्ड आर्टिस्ट ऑनर्स फॉर हिज एक्सप्रेसिव एंड विटी परफॉर्मेंस। हिज कॉमिक टाइमिंग एंड अनइनहिबिटेड एक्टिंग bring light-hearted energy to child education themes. The jury praised his effortless comfort in front of the camera. And third in line, best child artist, Onko Kikothing in Bengali, is Shri Riddhiman Banerjee.
1: Shrotaon, 35 Chinna Katha Kadu, Telugu film ke liye, Arun Dev Pothula ko bhi mil raha hai Rajat Kamal ka samman. Aur movie Mithya, yani Kannad movie Mithya ke liye, अतीश एस शेट्टी को भी मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। आज इन छोटे कलाकारों की आंखों में जो चमक है, शायद वही कल भारतीय सिनेमा की पहली किरण बनेगी।
2: श्री अरुण देव पोथुला विंस रजत कमल फॉर पोर्ट्रेइंग अ यंग बॉय स्ट्रगलिंग विद स्कूल मैथमेटिक्स। हिज परफॉर्मेंस कैप्चर्स फ्रस्ट्रेशन, इनोसेंस एंड डिटरमिनेशन विद एब्सोल्यूट सिंसियरिटी। He anchors the film's narrative heart alongside veteran actors. And next in line

0: is the child artist Shri Atish S. Shetty. He is receiving the Best Child Artist Award for the Kannada film Mithya. Atish S. Shetty earns national acclaim for his hauntingly quiet portrayal of an 11-year-old orphan. Handling grief, confusion and subtle acceptance without dramatic melodrama, his eyes carry the film's emotional weight. His performance is a masterclass in child acting. Next in line is the Best Actress in a Supporting Role. Kannada film Mithya supporting actress Miss Roopa Shri Varakadi receives the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दो अभिनेत्रियों को मिला है। कन्नड़ा फिल्म मिथ्या के लिए रूपश्री वरकाड़ी को मिलता है रजत कमल का सम्मान और दूसरी फिल्म तमिल महाराजा के लिए सचना नामिदास को भी मिलता है रजत कमल का सम्मान। श्रोताओं, दो अलग भाषाएं, दो अलग फिल्में, लेकिन सम्मान का मंच एक, यही भारतीय सिनेमा की असली तस्वीर है।
0: Both the supporting actresses, Ms. Roopa Shri Varakadi and Ms. Sanchana Namidas, have brought glitters to regional cinema for their supporting role in the films Mithya and Maharaja in Kannada and Tamil language respectively. Next, best actor in supporting role would be for the film Bhakshak in Hindi, supporting actor, one and only Shri Sanjay Mishra.
1: श्रोताओं, अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का, जो मिल रहा है संजय मिश्रा को। अब मंच पर एक ऐसा अभिनेता जिनके चेहरे को देखते ही दर्शक अनेक यादगार चरित्रों को याद कर लेते हैं। भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता संजय मिश्रा। संजय मिश्रा का सिनेमा सफर हमें बताता है कि अभिनेता की महानता केवल मुख्य भूमिका में नहीं होती, कभी कभी कुछ मिनट का चरित्र भी पूरी फिल्म की स्मृति बन जाता है और आज उस अभिनय को राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है, रजत कमल का सम्मान।
0: संजय मिश्रा's performance as a weary yet courageous ground reporter brings quiet dignity, humor and moral resolve to an investigative journalism drama. His character serves as the conscience of hard-hitting story. And the next in line is the best actress in a leading role award goes to Yami Gautam Dar for the film Article 370 in Hindi. Yami Dar wins the prestigious Best Actress Award for her intense portrayal of intelligence officer Zuni Haksar. She leads a political thriller with sharp authority, physical discipline and emotional restraint.
1: जी हाँ श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी यामी गौतम एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अलग अलग तरह के किरदारों से अपनी पहचान बनाई। विकी डोनर से शुरुआत, फिर काबिल, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, बाला, ओएमजी 2 अ थर्सडे और अब आर्टिकल 370।
0: Next in the category is the best actor in a leading role. Now the dais is shared by two great champions of acting. First comes for the movie Chandu Champion in Hindi, actor Shri Karthik Aryan. He earns a historic shared award with the one and only Shri Mamuti for the film ब्रह्मयुगम इन मलयालम।
1: श्रोताओं, मंच पर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, जिन्होंने प्यार का पंचनामा से लोकप्रियता पाई, सोनू के टीटू की स्वीटी से मजबूत पहचान, भूल भुलैया 2 से बड़ी व्यावसायिक सफलता और अब चंदू चैंपियन में एक बिल्कुल अलग चुनौतीपूर्ण भूमिका। इसके बाद मिल रहा है ममूटी को बेस्ट एक्टर का सम्मान।
0: Screen legend Mamuti shares the best actor honor for his chilling performance as Koduman Potti. Operating in a monochrome folk horror setting, his vocal modulation, posture and sinister charm deliver an acting masterclass. It stands as another crown jewel in his multi-decade career. Next in line is the Best Direction Award for the Tamil film Amaran. Director Shri Rajkumar Periaswamy receives the Swarna Kamal.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजकुमार पेरियासामी को मिल रहा है स्वर्ण कमल का सम्मान। अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन राजकुमार पेरियासामी। यह फिल्म भारतीय सेना के जांबाज शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन के जीवन और उनकी वीरता पर आधारित है।
0: राजकुमार पेरियास्वामी इन द फिल्म अमरन, हिज डायरेक्टोरियल विजन ऑनर्स रियल लाइफ हीरोज विद एस्थेटिक ब्रिलियंस एंड डिग्निटी। ही बैलेंसेस ऑथेंटिक

0: tactical military action with tender personal storytelling. Next is the category of best children's film. 35 Chinna Kathakodu, Telugu film, producer S Originals and Vulture Productions, represented by Shri Shrujan Yarabolu.
1: जी हाँ श्रोताओं, बच्चों की दुनिया, उनकी जिज्ञासा, उनके सवाल और उनकी नज़र से समाज को देखने का प्रयास,

0: light-hearted direction treats children with dignity while delivering a vital message on empathy in education. The next is the category of best feature film promoting social values, and the film is Captain Miller in Tamil. Producer Satyajyoti Films, represented by Shri Tyagarajan TG, comes on to receive the Rajat Kamal.
1: जी हाँ श्रोताओं, राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म अब पुरस्कार मिल रहा है तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को। तमिल सिनेमा की इस फिल्म के निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, इन्हें मिल रहा है रजत कमल का सम्मान, मंच पर सम्मान ग्रहण किया जा रहा है।
0: Producer Tyagarajan accepts the Rajat Kamal for his scale, epic tackling operation, caste barriers and freedom struggle story. Next in category is the best feature film promoting social values. Captain Miller in the film in Tamil receives the best director award. Shri Arun Matheshwaran comes on stage. He wins for crafting an uncompromising historical revolution drama. His staging blends cinematic scale with strong socio-political commentary against systemic oppression. His direction delivers visceral excitement alongside meaningful themes.
1: अब बारी है लोकप्रिय एवं संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, जो गया है तेलुगु फिल्म कल की 2898 AD को। बारी है उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा के भविष्य और हमारी पौराणिक कल्पनाओं को एक विशाल सिनेमाई संसार से जोड़ने का प्रयास किया। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है कल की 2898 AD, जिनके निर्देशक हैं नाग अश्विन सिंह रेड्डी, इन्हें जाता है स्वर्ण कमल का पुरस्कार।
0: The wholesome entertainer Kalki 2898 AD receives the award for best producer and director, both received respectively by Shri Chalasani Ashwini Dutt and Shri Nagashwin Singareddy. Next in line is the best debut film of a director. Swatantra Veer Savarkar in Hindi, directed by Shri Randeep Hooda, wins the honors.
1: Shrotaon, Sarvashreshth Navodit Nirdeshak का अवार्ड मिला है रणदीप हुड्डा को, एक ऐसा नाम जिसे दर्शक अभिनेता के रूप में वर्षों से जानते हैं, लेकिन आज उनकी पहचान के साथ एक नया अध्याय जुड़ रहा है। स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा ने हाईवे, सरबजीत, रंग रसिया और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की अलग पहचान बनाई, और आज कैमरे के सामने खड़ा होने वाला यही कलाकार कैमरे के पीछे की अपनी दृष्टि के लिए सम्मानित हो रहा है।
0: After the best debut director comes the turn of the best feature film, and that is the Hindi feature film Article 370. Producer Geo Studios and B62 Studios, represented by Shri Aditya Dhar, is going to receive the award. Producer Aditya Dhar receives Indian cinema's top prize, the Swarna Kamal, for best feature film. The production delivers a high-stakes political thriller examining complex national intelligence operations. It was lauded for its high technical finish, research and cinematic tension. And next in line is the best feature film Article 370 Hindi director, Shri Aditya Suhas Jambale.
1: जी हाँ श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आर्टिकल 370 घोषणा हो चुकी है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल जाता है आर्टिकल 370 को। फिल्म के निर्माता हैं जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज, और इनकी ओर से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री आदित्य धर, और निर्देशक हैं आदित्य सुहास जम्भाले।
0: Director Aditya Suhas Jambale just received the Swarna Kamal for directing the best feature film of the year. He handled complex procedural drama with narrative clarity, suspense and technical discipline. And now all listeners, we have arrived at the sacred high point of this ceremony. The entire gathering of 1,000 dignitaries in this German dome has risen to its feet. A roar of standing applause would be following, reverberating across the pavilion. This is the moment for the conferment of Indian cinema's supreme lifetime honor, the Dadasaheb Phalke Award. Instituted by the Union government in 1969 to commemorate Dundiraj Govind Phalke, the visionary patriarch who dared to dream that Indian faces can see the screen.

0: Over. It carries the Swan Kamal medallion, a hand-woven Kashmiri shawl, and a cash purse of 15 lakh rupees. And this year's Dada Saheb Phalke awardee is Shri Anant Nag.
1: जी हाँ श्रोताओं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस बार मिल रहा है अनंतनाग को। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके 5 दशकों से अधिक के योगदान के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने 1970 के दशक से लगातार अभिनय किया और 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल और मराठी फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें उनका योगदान कई भारतीय भाषाओं तक फैला। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में अंकुर और लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक मालगुडी डेज शामिल हैं। उन्हें 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स और 5 कर्नाटका स्टेट बेस्ट एक्टर अवार्ड सहित सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्हें 2025 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है।
0: For over 50 uninterrupted years, Anant Nag has stood as the definitive master of naturalistic acting, an artist who proved that true cinematic power does not require theatrical thunder or exaggerated artifice, but a luminous, quiet truth. Discovered on the Mumbai theatre stage and brought to celluloid by the maestro Shyam Banegal, Anant Nag became the undisputed face of the Indian parallel cinema movement. In landmark Hindi classics such as Ankur, Nishant, Manthan, Bhumika, Kandura and Kaliyug, he brought an unprecedented psychologically forensic nuance to complex roles portraying feudal arrogance, bureaucratic moral dilemmas and human vulnerability. Simultaneously, he became the soul of Kannada cinema. From profound philosophical literary adaptations like GVIS classical musical masterpiece, Ham Sagiti, P. Lankesh Pallavi, and the cinematic adaptations of Jnanpith laureate Dr. Shivaram Karan, to redefining middle-class comedy with unforgettable warmth in films like Ganeshna Madhue, Gauri Ganesha, and Belandigala Bale. His versatility has never been matched. In modern contemporary cinema, his dignified patriarchal presence in KGF Chapter 1 and Rishabh Shetty's Sarkari Hi Prashale continues to captivate young generations. And here's actor Anant Nag, who has come along with his wife Gayatri, who is now walking to the screen to receive the award from Honorable President Madam. 1978 में भूमिका तथा 1981 में द अवार्ड ऑनर्स अ ट्रू टाइटन ऑफ इंडियन सिनेमा. द एंटायर ऑडिटोरियम एट एकता नगर स्टैंड्स इन ओवेशन एज लेजेंडरी एक्टर श्री अनंत नाग इज वॉकिंग टुवर्ड्स द स्टेज रिसीविंग द दादा साहेब फाल्के अवार्ड. देयर इज अ ब्रीफ फिल्म फॉर 5 मिनट्स शोन about Anant Nag, which is being displayed on the screen right now as his various characters are being portrayed on the screen. We go through the history, reminiscing those times of Malgudi days and the film Kaliyug, where he portrayed an aristocratic businessman, or a loving male character with Simi Garewal. He has received Karnataka State Best Actor Award, Filmfare Awards, and Karnataka Rajyotsava Award, Karnataka Sahitya Academy Award, Karnataka State Lifetime Achievement Award, and now is the time for him to achieve the Dada Saheb Phalke Award. He walks to the screen and receives the award from the President as the hall is coming up in thunderous applause. His various characters are being depicted on screen. Let's now go on to the actual stage to listen from him.
2: यूनिवर्सिटी ने सिनेमा में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें ऑनररी डॉक्टोरेट की उपाधि से सम्मानित किया. केवल कला में ही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया. ये 1988 से 1994 तक कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे तथा 1994 से 1999 तक ये न केवल कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रहे, बल्कि इस दौरान कर्नाटक के मंत्रिमंडल में बतौर बेंगलुरु विकास मंत्री कार्य भी किया. चाहे मेनस्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा हो या न्यू वेव सिनेमा, दोनों ही क्षेत्रों में कार्य कर इन्होंने अपनी अभिनय परिपक्वता का प्रमाण दिया। आज भारत सरकार भारतीय सिनेमा में इनके अप्रतिम

0: योगदान के लिए इन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कर रही है।
1: Request Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu to confer Dada Saheb Phalke Award for the year 2024 upon Sri Anantnag, and I now invite Sri Anantnag to come forward and receive the highest and the most distinguished recognition in Indian cinema. Let's put our hands together as we give a standing ovation to Sri Anantnag Ji, for the artist who is recognized for more than five decades of natural performances, from landmark parallel cinema classics to beloved Kannada comedies and nuanced later roles. Sri Anantnag has enriched Indian cinema with rare versatility, grace and humanity. Ladies and gentlemen, Sri Anantnag getting Dada Saheb Phalke Award for the year 2024.
2: Kartal Dhwani ke saath Abhinandan Bharatiya Cinema ke atyant sammanit aur lokpriya kalakar ka jinhone विभिन्न भाषाओं में अपनी विशिष्ट कला साधना से देश की विविध सिनेमाई परंपराओं को समृद्ध किया, जिनकी सादगी में गरिमा, सहजता में प्रभाव और प्रत्येक भावाभिव्यक्ति में असाधारण गहराई दिखाई देती है। अपनी बहुआयामी प्रतिभा और स्मरणीय प्रस्तुतियों से भारतीय सिनेमा की विरासत को गौरवान्वित करने वाले श्री अनंत नाग जी।
1: Shaped by the stage and fluent across languages as we learnt, Sri Anantnag moved effortlessly between art house and mainstream cinema, bringing wit, warmth and quiet depth to every character he played.
2: और अब मैं हमारे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।
1: And many congratulations and good wishes to you, Sri Anantnag sir, for the honor. We are all eager to hear from you. Would you kindly come and share your thoughts with us?

0: परम सम्मानीय श्री अनंतनाथ जी, आपके आत्मीय उद्गारों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर आपको पुनः हार्दिक बधाई। भारतीय सिनेमा में आपका अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। कर्तव्य ध्वनि से आइए एक बार पुनः करें श्री अनंतनाथ जी का हृदय से अभिनंदन। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सविनय अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति जी,
1: बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मेलन में उपस्थित गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, विभागीय सचिव श्री चंचल कुमार जी, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण तथा सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजन, सभी को मेरी नमस्कार। मुझे पुरस्कार विजेताओं से बहुत बहुत मैं उनको बधाई देती हूँ। विशेष प्रतिभा और कठिन परिश्रम के बल पर आपने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत सराहना करती हूँ। एक फिल्म को बनाने में बहुत से लोगों का योगदान होता है। आप सभी पुरस्कार विजेताओं से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि अपनी टीम के उन सभी सदस्यों तक भी मेरी सराहना अवश्य पहुँचाएँ जिनके योगदान से आपकी पुरस्कृत फिल्म का निर्माण संभव हुआ। मैं अनंतनाग को भारतीय फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पिछले वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला।

बहुत छोटी उम्र से ही और रंगमंच के प्रख्यात लोगों के साथ जुड़ गए थे। अपने पहले नाटक में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख भूमिका निभाई और दूसरी नाटक में गौतम बुद्ध की। फिल्म में उनका अभिनय थिएटर और सिनेमा के श्रेष्ठ आयामों का समन्वय प्रस्तुत करता है। फिल्मों का गंभीर अध्ययन करने वाले लोग मानते हैं कि उनका अभिनय सहज यानी नेचुरल, संयत यानी रिस्ट्रेंड और प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक होता है और कलाकारों को भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। देवियों और सज्जन, यहाँ एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन करने के लिए मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को तथा उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में हम भारत को के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। 550 से अधिक रियासतों का विलय करके सरदार पटेल ने स्वाधीन भारत की एकता का समीचित सुनिश्चित किया था। एकता नगर का ये क्षेत्र भी एक रियासत का हिस्सा था। विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्रों और आकार देने वाले सरदार पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ शोभायमान है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अद्भुत परिकल्पना को जाता है। आज पुरस्कृत फिल्मों में स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक भी शामिल है। देवियों और सज्जन, आज पुरस्कृत फिल्मों का एक संक्षिप्त विवरण मुझे दिया गया है। इन फिल्मों के बारे में जानकर मैं आप सबके योगदान से बहुत प्रभावित हुई हूँ। मैं आप सबकी बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रीयता के एक विशेष अध्याय को उजागर करने वाली फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ये फिल्म देश की एकता से जुड़ी गंभीर चुनौतियों और उनके समाधान का जीवंत विवरण प्रस्तुत करती है। इस फिल्म की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सुश्री यामी गौतम धौर की मैं विशेष सराहना करती हूँ। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म भंगार जीवन और मृत्यु सार्थकता और निरर्थकता के जुड़े अनदेखा आयामों में अभिव्यक्ति करती है। ऐसे असाधारण विषय पर हृदयस्पर्शी फिल्म बनाने के लिए मैं निर्माता निर्देशक सुश्री समीरा राय और उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। चौथी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री मम्मूटी को मैं विशेष बधाई देती हूँ। इसी वर्ष उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत करने का अवसर मुझे मिला था। देवियों और सज्जनों, वर्ष 1970 में वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर भारत के इस महान सपूतों की स्मृति ने एक डाक टिकट जारी किया था। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हवाई अड्डे को वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। आज पुरस्कृत फिल्मों में शामिल सांतनीय वीर सावरकर उनकी असाधारण जीवन गाथा के प्रति एक कलात्मक श्रद्धांजलि है। इस फिल्म के निर्देशनों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री रणदीप हुड्डा को मैं बधाई देती हूँ। कुछ लोगों की जीवन गाथा बहुत प्रेरक

होती है। मैं मानती हूँ कि ऐसे प्रेरक व्यक्तियों पर बायोपिक बनाना बहुत सराहनीय कार्य है। बचपन से खेल जगत के प्रसिद्ध होने का सपना देखने वाले भारतीय सैनिक श्री मुरलीकांत पटकार 1965 के भारत पाक युद्धों के दौरान घायल हो गए। गंभीर चुनौतियों के बावजूद अपने साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर वर्ष 1972 में वे पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने थे। वर्ष 2018 में श्री पटकर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके चरित्र को अपने अभिनय से जीवंत बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री कार्तिक आर्यन को मैं बधाई देती हूँ। भक्षक नामक फिल्म महिला सुरक्षा के अत्यंत गंभीर विषय पर समाज को जागरूक करती है। बेटियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के प्रति समाज को कृतज्ञ रहना चाहिए। इस विषय की संवेदनशील अभिव्यक्ति के लिए फिल्म की पूरी टीम को मैं विशेष साधुवाद करती हूँ। संताली फिल्म आंगेन के राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने से एक उत्कृष्ट फिल्म को तो प्रोत्साहित मिल ही रहा है, साथ ही साथ सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिला है। इस फिल्म के निर्देशन के लिए पुरस्कृत श्री रविराज मुर्मू को मैं बधाई देती हूँ। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म को पुरस्कृत करना तथा बाल कलाकारों को पुरस्कार देना देश के भविष्य में कलात्मक निवेश है। इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल कलाकारों आतिश सेट्टी, अरुण देव पथुला, रिद्धान बनर्जी, तपोमय देव एवं गीताश्री चक्रवर्ती को मैं बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देती हूँ। आज पुरस्कृत सभी फिल्में उल्लेखनीय है, परंतु समय की सीमा के कारण मैं कुछ फिल्मों का ही उल्लेख कर पाई हूँ। मैं एक बार फिर सभी पुरस्कृत फिल्मों से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समाज और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्मों का चयन करने के लिए मैं जूरी के सदस्यों की सराहना करती हूँ। मैं चाहूँगी कि प्रत्येक रीजनल जूरी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे आज जितने कलाकार पुरस्कृत किया गया है कलाकारों को, उनमें से बहुत सारे महिलाएं हैं, इसलिए जूरी भी महिलाएं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने हैं करके ही समग्र मानवीय दृष्टि का निर्माण संभव होता है। देवियों और सज्जनों, आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले। मैंने पिछले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में ये अनुरोध किया था कि पूरी टीम के सभी सदस्यों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का भाव रखना फिल्म उद्योग के वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सब मेरे इन अनुरोधों पर ध्यान देते होंगे। देवी और स्वजनों, जो फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं, तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि लोकप्रिय कलाकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का एंडोर्समेंट ना करें। स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, अंधेरा नहीं। देश में बन रहे अच्छे फिल्मों के बारे में जानकर मेरा ये विश्वास और दृढ़ता है कि हमारी फिल्में गुणवत्ता यानी क्वालिटी के विश्व स्तरीय प्रतिमान बनाएगी। मैं आप सबके
और फिल्म उद्योग के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
1: थैंक यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट, लेट अस ऑल राइज फॉर द नेशनल सॉन्ग एंड द नेशनल एंथम।

हमने कलाकारों के चेहरों पर उपलब्धि की मुस्कान देखी और हमारे कानों में अब भी कुछ देर पहले गूंजती तालियों की आवाज है। आज हमने यहाँ पुरस्कारों का वितरण ही नहीं देखा, हमने सपनों को सम्मानित होते देखा, हमने मेहनत को मंच पर आते देखा, हमने भारत की अनेक भाषाओं को एक साथ

तालियां बजाते देखा और शायद इसी को भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत तस्वीर कहा जा सकता है। अब मैं नीलम थपलियाल अपने साथी अंग्रेजी समीक्षक शैलेंद्र सिंह जाडेजा एवं आकाशवाणी वडोदरा और अहमदाबाद की पूरी टीम के साथ आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: ये आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल है। ये प्रसारण आप डीआरएम पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। 6:09 हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले तक आप सुन रहे थे सीधा प्रसारण 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का। हमारे अगले कार्यक्रम अब आप सुन पाएंगे एफएम रेनबो चैनल पर।

107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। शाम के 6:11 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंदाज़े बयां। सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त हैं अभिनव पुंशी और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं शाम के 6:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट। और आज की दोस्तों सबसे बड़ी खबर जो है वो यही रहेगी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भारत को एशियन गेम्स के अंदर इस वर्ष उसका पहला स्वर्ण पदक दिला दिया है। जी हाँ, द गोल्ड मेडल हैज फाइनली कम टू इंडिया थ्रू द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम हु वेंट ऑन to defeat Sri Lanka today by a huge margin of 147 runs. India, who won the toss pehle, chose to bat first and batting karte hue bhartiya team ne aaj 216 run banaye unke nirdharit 20 overon mein, jisko Sri Lanka jab chase karne aaya to unki puri team simat gayi sirf 69 runs mein. And this goes to show that this has also been one of the biggest defeats that India has churned out to an opposition when it comes to the margin of runs jisse aaj Bharat ne Sri Lanka ko हराया है। अभिनव, अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन।
2: इट्स अ ग्लोरियस मोमेंट और बहुत ही गर्व है हम सब भारतीयों को। आज हमारी इंडियन वुमेन्स टीम एशिया कप भी जीता और आज एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और याद दिलाएं ब्रॉन्ज मेडल गया पाकिस्तान को जिन्होंने हराया बांग्लादेश को। और आज लग रहा है कि थीम है इंडिया को श्रीलंका को हराने का, क्योंकि हॉकी में इंडिया ने श्रीलंका को 16-1 से हराया। इंडियन मेंस टीम आज तो पूरी तरह फायर पे थी, क्योंकि जुगराज के 4 गोल, अभिषेक और दिलप्रीत की हैट्रिक और हरमनप्रीत के 2 गोल की वजह से इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली अपना मैच जीता 16-1। इंडोनेशिया को हराया था 13-1 और अब 16-1, तो लग रहा है हॉकी टीम सीधा करेक्ट पाथ पे जा रही है।
1: इंडीड, हॉकी टीम करेक्ट पाथ पे जा रही है, उनसे ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद भी थी और अच्छा लगता है देखकर कि हमारे हॉकी के खिलाड़ी हमारी आशाओं पर खरा उतर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वुशु की दुनिया से भी। आज एक बहुत अच्छी बड़ी ताजी खबर आ रही है, विच इज दैट इन भारत की वुशु स्टार जिसको हम कहते हैं रोशिबिना देवी अशोर्ड हरसेल्फ ऑफ अ थर्ड सक्सेसिव एशियन गेम्स मेडल आफ्टर स्टॉर्मिंग इनटू द वुमेन्स सैंडा 60 किलोग्राम सेमीफाइनल्स विद अ 5-0 विक्ट्री ओवर मकाओ चाइनाज चू मैनसिन आज के दिन। वेल, द सेमीफाइनल बर्थ गारंटीज रोशिबिना एटलीस्ट अ ब्रॉन्ज मेडल इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। और आपको ये बता दें कि रोशिबिना देवी जो हैं वो पहले भी भारत की एक बहुत कहते हैं ना जगमगाता हुआ स्पोर्ट्स का खिलाड़ी रह चुकी है। वो ऐसा सितारा है जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं, बिकॉज ये वही शख्सियत हैं, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल भी दिलवाया हुआ है 2018 में और सिल्वर मेडल भी दिलवाया हुआ है 2023 में। और उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष उनका सफर एक पायदान ऊपर ही जाए अभिनव, एंड शी गोज ऑन टू गेट द गोल्ड फॉर अस आल्सो फॉर आवर कंट्री।
2: ऑफ कोर्स रोशिबिना देवी मेकिंग इंडिया प्राउड। अनफॉर्चुनेटली आर्यन जिन्होंने कोशिश करी थी अपने क्वार्टर फाइनल मैच में, वो अपना मैच हारे 2-1, नहीं तो वो भी प्रवेश करते सेमीफाइनल्स, वो गारंटीड होता इंडिया को एक ब्रॉन्ज। गारंटी तो इंडिया को ब्रॉन्ज होता अगर इंडियन विमेंस टीम हरा पाती टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल टीम्स इवेंट में नॉर्थ कोरिया को, मगर वो नहीं हो पाया। 3 सिंगल्स मैचेस हुए, 3-0 में क्लीन स्वीप करा नॉर्थ कोरिया ने, श्रीजाकुला यशरवीन घोरपड़े और दिया चतेले तीनों को हार का सामना करा। मेंस टीम की भी याद

0: दिलाएं। आज सुबह प्री क्वार्टर फाइनल्स में साउथ कोरिया से हारे 3-0, सो अ डिसअपॉइंटिंग डे इन टेबल टेनिस।
1: राइट, एंड समहाउ दैट डिसअपॉइंटमेंट आल्सो सीव्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ जिम्नास्टिक्स, बिकॉज जिम्नास्टिक्स में अगर हम कहें तो अ स्लाइट करेक्शन ओवर देयर, डिड नॉट सीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ जिम्नास्टिक्स। उल्टा जिम्नास्टिक्स की तरफ से एक छोटी सी खुशखबरी आपको देती हूँ फिलहाल के लिए, विच इज दैट प्रणति नायक क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड फाइनल्स इन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स विद द स्कोर ऑफ 12.916। जी हाँ, प्रणति नायक जो भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन रख रही है जिम्नास्टिक्स की दुनिया में, अब देखना होगा क्योंकि उनको फाइनल में अपनी जगह वो बना चुकी है, कि वहां से क्या वो इस सफर को एक कदम और आगे ले जाती है और भारत को मेडल दिला के लाती है, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए खुशखबरी यही है कि प्रणति नायक भी क्वालिफाई कर चुकी है वॉल्ट फाइनल्स के अंदर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में विद अ स्कोर ऑफ 12.916 अभिनव।
0: और अगर हम कल की बात करें तो एशियन गेम्स में और गोल्ड मेडल्स की बरसात हो सकती है भारत के लिए, क्योंकि 6:15 बजे एक्शन में होंगी या मनु भाकर और आईएस रुचि एंड ईशा सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन्स टीम एंड इंडिविजुअल इवेंट। एंड उसके बाद हमारे पास एक और गोल्ड का मौका है, क्योंकि 10 बजे आने वाली है मीराबाई चानू एंड साक्षी, आई एम श्योर यू आर वेरी एक्साइटेड टू सी मीराबाई चानू गेट हर एशियन गेम्स मेडल व्हिच शी इज डेस्परेट फॉर।
1: यस, आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड द गुड थिंग इज दैट आई शुड होपफुली बी कवरिंग दैट एंड वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द मेडल्स गोइंग अप टुमारो। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमारे पास 6:30 बजे शाम के अपडेट्स में इतनी ही आपके लिए खबर थी। शाम को 7:30 बजे एक घंटे बाद फिर आपसे एक बार आकाशवाणी के माध्यम से जुड़ेंगे और लेके आएंगे आपके लिए दिन का रैप अप और ऑल्सो ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड द प्रीव्यू फॉर टुमारोज इवेंट्स। गुड बाय फॉर नाउ।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

6:35 हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां। अब अंदाजे बयां कार्यक्रम में अगली गजल खूबसूरती के बारे में अपना अंदाज बयां करती हुई।

दोस्तों शाम के 6:42 हो रहे हैं, अंदाजे बयां आप सुन रहे हैं माया के साथ। हमारा अगला जो कार्यक्रम 7:10 पर पेश होगा वो होता है हम तुम। जी हाँ, और इस कार्यक्रम को आप सभी बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं क्योंकि ये आपके पसंदीदा गीतों का आपका पसंदीदा कार्यक्रम है। तो चलिए, इस कार्यक्रम में यदि आपको शरीक होना है, इसमें आपको भाग लेना है तो क्या करना है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। यदि आपको आपका पसंदीदा कोई गीत सुनना है तो आपको करना ये है कि आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। अब कौन से नंबर पर, नंबर बता देती हूँ, 8657661071, 8657661071। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए। क्या मैसेज कीजिए? आपको कौन सा गीत सुनना है, उस गीत के बोल, उस फिल्म का नाम, हो सके तो आपका नाम, आप कहाँ से हैं, ये सारी जानकारी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर जल्द से जल्द

भेज दीजिए ताकि हम आपका पसंदीदा गाना इस कार्यक्रम में आपको सुना सके। चलिए, खूबसूरती की बात हो रही है तो एक और बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल आपको सुना दी जाए पंकज उदास की मखमली आवाज़ में, और जो बोल हैं कतील शफाई के हैं।

पंकज उदास की गाई हुई इस गजल के साथ ही हमारा आज का अंदाजे बयां कार्यक्रम बस यहीं तक ही। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे मराठी बातमियां और तत्पश्चात 7:10 पर होगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम। आप सुनते रहे FM रेनबो माया के साथ।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours
1: 107.1 MHz पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। शाम के 7:12 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम तुम। सभी श्रोताओं को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम जानते हैं ये आपका बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा कार्यक्रम है, क्योंकि ये आपकी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है। जी हाँ, यदि आपको भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है और आप इसके नियम नहीं जानते, क्या करना है नहीं जानते हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं क्या करना है। हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर अब देंगे, उस पर आप मैसेज करना है, आपको मैसेज करना है आपको किस फिल्म का गीत सुनना है, फिल्म का नाम, गीत के बोल, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, ये जानकारी हमें तुरंत लिखकर भेजिए और हम आपके पसंदीदा गीत को कार्यक्रम में शरीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले जब अनाउंस किया था सारी जानकारी, तब से इतने सारे मैसेजेस हम तक पहुँच गए हैं कि मुश्किल है अब पूरे एक घंटे में अब जो नई एंट्रीज आएगी या फिर मैसेजेस आएंगे उनको सम्मिलित करना। लेकिन फिर भी अगली बार जब आप कोशिश करो तो ये बातें जरूर ध्यान में रखिए और जल्द से जल्द हमें मैसेज कीजिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पंकज मोहर जी ने

अगली फरमाइश श्रीधरन जी से हमें प्राप्त हुई है। आप तो ऐसे न थे फिल्म से मन और उदास का गाया हुआ ये गीत आप सुनना चाहते हैं।

अगली फरमाइश कार्यक्रम में हमें भेजी है प्रकाश शिंदे जी ने। सौगंध फिल्म का अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ ये गीत आप सुनना चाहते हैं। शांति प्रिया अभिनेत्री जो हैं, आज उनका जन्मदिन है और उन्हीं से अभिनीत सौगंध फिल्म।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: वेलकम टू द एशियन गेम्स अपडेट फ्रॉम आईजी नगोया एंड माय नेम इज अभिनव पुंछी एंड ऑफ कोर्स टुडे इज अ गोल्ड मेडल डे बिकॉज इंडिया हैज फाइनली स्ट्रक गोल्ड थैंक्स टू द इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम। दे प्लेड आउटस्टैंडिंगली वेल अगेंस्ट श्रीलंका इन द फाइनल और क्या धमाकेदार बैटिंग करी थी। 216 रन बनाए स्मृति मंदना, टॉप स्कोरिंग विद 79 रन्स। उसके जवाब में श्रीलंका वर ऑल आउट एंड फॉर जस्ट अ वेरी वेरी एवरेज स्कोर ऑफ 69 और इंडिया को जीत मिली 147 रन से। शानदार जीत और हमारी इंडियन विमेंस टीम ने अपना टाइटल डिफेंड करा है और गोल्ड मिला है इंडिया को। और इस गोल्ड की वजह से इंडिया जो 18वें पोजीशन में थे अब 8वीं पोजीशन में जा चुकी है मेडल्स टैली में विद 1 गोल्ड एंड ऑफ कोर्स टोटल ऑफ 7 मेडल्स एज वेल, 4 सिल्वर्स एंड 2 ब्रॉन्ज। Also good news coming for India from the badminton circuit, a stunning victory 3-0 versus Japan in the men's team competition. Ab India apne pravesh kare semi-finals mein aur semi-finals mein agar aap jaate hain men's team badminton mein to you are guaranteed a bronze medal. And semi-finals mein pravesh रोशिबिना देवी ने भी करा है वुशु सैंडो में। उन्होंने अपना क्वार्टर फाइनल मैच जीता विद द पॉइंट्स डिफरेंस और अब वो भी गारंटी है ब्रॉन्ज। याद दिलाएं रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल जीता था हैंगजाओ एशियन गेम्स में और 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो अगर कल की बात करी जाए तो इट्स गोना बी अ ब्लॉकबस्टर डे क्योंकि सुबह 5:30 बजे ही जय मीना का सॉफ्ट टेनिस का क्वार्टर फाइनल मैच है और अगर जय मीना प्रवेश करते सेमीफाइनल्स में ही इज गारंटीड अ ब्रॉन्ज मेडल। एंड देन उसके बाद शूटिंग में सबको इंतजार था, एवरीबॉडी हैज बीन वेटिंग फॉर मनु भाकर एंड हर शूटिंग बडीज टू कम एंड टेक टू द शूटिंग रेंज क्योंकि मनु भाकर, ईशा सिंह और आईएस सुरुचि विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन्स टीम और इंडिविजुअल इवेंट में है। उसके बाद शूटिंग के स्कीट का भी थर्ड एंड फाइनल डे है मेन्स एंड विमेन्स इंडिविजुअल एंड टीम इवेंट्स। एंड देन वी हैव द बिग वन 10 AM मीराबाई चानू, शी वॉन्ट्स गोल्ड। कभी एशियन गेम्स में उन्होंने नहीं जीता है मेडल और उनको चाहिए वेट लिफ्टिंग की 49 kg में एक मेडल। एंड ऑफकोर्स हमने बात की थी कुछ देर पहले बैडमिंटन के बारे में और 11:30 बजे होगा इंडिया वर्सेस चाइना। जी हाँ, ये वही मैच है जो फाइनल था पिछली बारी और इंडिया हारी थी वो फाइनल, सिल्वर मेडल मिला था इंडिया को। मगर इस बारी इंडिया क्या चाइना को हरा पाएगी, क्या फाइनल में प्रवेश कर पाएगी क्योंकि सामना उनका अगर जीतेंगी सेमीफाइनल करेगी इंडोनेशिया या थाईलैंड। ऑल्सो आपको याद दिलाएं कल कबड्डी एक्शन भी है इंडिया वर्सेज ईरान एट 8:30 AM, 9:45 AM इंडिया वर्सेज बांग्लादेश मेन्स कबड्डी। एंड एक और बड़ा गोल्ड मेडल मैच है, अगर आप सुबह उठेंगे तो प्लीज 6:30 बजे इक्वेस्ट्रियन इवेंटिंग टीम को प्लीज चेयर करना बिकॉज उनके पास मौका है गोल्ड लाने का। और आज मेंस हॉकी टीम ने तो श्रीलंका की धुनाई कर दी। जी हाँ, 16-1 का स्कोर था आफ्टर बीटिंग इंडोनेशिया इन द फर्स्ट मैच 13-1। द मेंस हॉकी टीम वेंट बेटर एंड बीट श्रीलंका 16-1। जी आज का थीम ऑफ द डे है श्रीलंका को हराना, विमेंस क्रिकेट टीम ने करा और मेंस हॉकी टीम ने भी करा। तो कल क्या इंडियन विमेंस टीम थाईलैंड को हरा पाएंगी, 11:30 AM होगा इंडिया और थाईलैंड का वो हॉकी मैच। एंड हमने आपको मीराबाई चानू के बारे में तो बताया ही, वेट लिफ्टिंग में ऑल्सो ज्ञानेश्वरी यादव इज इन एक्शन इन द विमेंस 53 kg बाउट, दैट्स एट 11:30 AM। सो इट्स एन एक्शन पैक डे फॉर इंडिया एंड दे'ल बी होपिंग दैट सम मोर मेडल्स कम इंडियाज वे टुमारो बिकॉज टुडे वी हैव स्ट्रक गोल्ड। और आईजी नगोया से एशियन गेम्स में अब इंडिया आगे बढ़ा है एंड होपफुली दे कीप ऑन गोइंग द राइट डे। ऑफ कोर्स देयर वर डिसअपॉइंटमेंट्स, टेबल टेनिस टीम्स, इंडियन विमेंस टीम क्वार्टर फाइनल्स में हारे नॉर्थ कोरिया के साथ खिलाफ एंड प्री क्वार्टर फाइनल में इंडियन मेंस टीम को हारना पड़ा साउथ कोरिया के खिलाफ। सो दैट वॉज डिसअपॉइंटिंग फॉर द टेबल टेनिस कंटेंजेंट। द दे'ल बी होपिंग दैट टुमारो द इंडियन कंटेंजेंट पुट्स ऑन अ फैंटास्टिक शो एंड डज वेल क्योंकि आज एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है हमारी क्रिकेट टीम ने दी है। ऑफकोर्स याद दिलाई बॉक्सिंग से भी गुड न्यूज आई थी, जादूमणि सिंह ने हराया था चंद्र बहादुर थापा को, वो एडवांस कर चुके हैं राउंड ऑफ 16 में। सो गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम बॉक्सिंग विद जादूमणि सिंह ऑफकोर्स एंड वी आर होपिंग

7:35 हो रहे हैं। हम तुम कार्यक्रम आप माया के साथ सुन रहे हैं और अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 की कुछ प्रमुख झलकियां।

अगली फरमाइश संजय दर्शन जी ने भेजी है। श्रेया घोषाल का गाया हुआ कृष्णा कॉटेज का ये गीत आपको सुनना है।

अगली जो कार्यक्रम में फरमाइश है, शायद अगली केवल दो ही फरमाइशें हम कार्यक्रम में ले पाएंगे क्योंकि 7:48 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अंतिम दो फरमाइशें हम कार्यक्रम में पूरी कर रहे हैं। अब जो गीत हम सुनाएंगे, राज फिल्म का गीत है, अलका याग्निक का गाया हुआ। राकेश माथुर जी ने इसकी फरमाइश की है। तत्पश्चात प्रेम पर्वत फिल्म का लता दीदी का गाया हुआ गीत आप सुन पाएंगे। सुनील पांचाल जी ने इस गीत की फरमाइश की है और ये कार्यक्रम का अंतिम गीत रहेगा। और बस इन्हीं गीतों के साथ माया आपसे इजाज़त लेना चाहती है। और बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने, प्रिय श्रोताओं ने हम तक अपनी फरमाइशें भेजी हैं, लेकिन आप तो जानते हैं केवल एक घंटे के कार्यक्रम में इतनी सारी फरमाइशें पूरी कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगली बार यदि आप फरमाइश करें तो थोड़ा जल्दी, हम इसलिए कोशिश करते हैं कि अंदाज़े माया कार्यक्रम में ही आपकी आपके लिए जो फरमाइशें हैं वो किस प्रकार से आनी चाहिए इस बाबत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हो सके तो अगली बार जिनकी फरमाइशें पूरी नहीं हो पाती वो थोड़ा जल्दी हमें मैसेज किया करें, तो आपकी फरमाइशें हम कार्यक्रम में शरीक करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए ये दो गीत आपको सुनाए रहते हैं और इन्हीं के साथ ही माया आपसे इजाज़त लेगी। गणपति उत्सव चल रहा है, आप इस उत्सव की धूम में ज़रूर शामिल होइए, अपने अपनों

नमस्कार नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ

0: अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकतानगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखे कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगिरेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म भ्रमयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद आनन एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव।

0: ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
2: जब G20 हुआ था भारत में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस टू द वर्ल्ड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। 2 दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार मिला रही है।
4: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जैम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
5: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जैम पोर्टल जैम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
4: आकाशवाणी समाचार से बात कर

0: हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जेम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
1: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
0: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जेम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for year 2024 at Ekatanagar in Gujarat, honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saheb Phalke Award, Yami Gautam, Karthik Aryan and Mammootty received Best Actor Awards.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जापान का शहर नागोया 20वें एशियन गेम्स की मेजबानी करने के अलावा दो चीजों के लिए मशहूर है। पहले सामुराई, यानी जापान के वो पारंपरिक योद्धा जिनके शौर्य, शक्ति और संघर्ष की कहानियां इतिहास में दर्ज है, और आधुनिक जमाने में नागोया की विश्व प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहां सटीकता के साथ हर नई तकनीक नई संभावनाओं का रास्ता खोल देती है। शौर्य, संघर्ष, शक्ति, सटीकता और संभावनाएं। आज मंगलवार 22 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में ये पांचों रंग दिखे। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी के मैदान में भारत ने अपनी शक्ति का बखान किया, तो वहीं आज बॉक्सिंग रिंग में भी हमारे मुक्केबाजों ने अपना शौर्य दिखाया। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और सॉफ्ट टेनिस में सफलता और संघर्ष का मिला जुला खेल रहा। स्विमिंग और शूटिंग, जहां सेकंड के कुछ हिस्से और कुछ मिलीमीटर जैसी रेजर थिन मार्जिन्स का सवाल है, वहां भारतीय खिलाड़ियों की सटीकता की परीक्षा हुई। तो एक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, ई स्पोर्ट्स, सेपेक टकरो और वुशू जैसे खेल जो अभी भी भारत में अपनी पहचान तलाश रहे हैं, वहां नई संभावनाओं के द्वार खुले। पूरे दिन का लेखा जोखा ले मैं दर्पणजी क्या आपके समक्ष मौजूद हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत महिला क्रिकेट की, जिसने भारत को दिलाया है एशियन गेम्स 2026 में उसका पहला गोल्ड। हरमनप्रीत कौर की महिला क्रिकेट टीम से सिर्फ पोडियम फिनिश की नहीं, गोल्ड मेडल की ही उम्मीद थी। एनीथिंग लेस वुड हैव बीन एन अपसेट। लेकिन दबदबा बनाने की इस अपेक्षा के साथ उम्मीदों का वजन भी आता है, और उसके साथ आता है दबाव, और कई बार इस दबाव में अच्छे खासे खिलाड़ी बिखर जाते हैं। लेकिन आज शेफाली वर्मा और स्मृति मानधना ने कहा आज नहीं। दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। 99 रन की सलामी साझेदारी, जिसने नींव रखी एक विशाल फर्स्ट इनिंग स्कोर की। जहां शेफाली ताबड़तोड़ 48 रन बनाने के बाद आउट हो गई, तो वहीं उपकप्तान मानधना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर आई ऋचा घोष, जिन्होंने 222 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 49 रन बनाए और भारत ने श्रीलंका को 217 का टारगेट दिया। श्रीलंका की पारी शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगी। बल्ले से अपने जोहर दिखाने के बाद शेफाली ने गेंद से भी दो विकेटें लेने में योगदान दिया। अंततः भारत ने 147 रन के बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीता।
2: मेंस कबड्डी के ग्रुप ए मुकाबले में इंडिया ने अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखते हुए दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। डिफेंडिंग चैंपियंस ने पूरे मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी और ग्रुप ए में अपनी स्थिति मजबूत की। इंडिया ने शुरुआत से ही अटैक और डिफेंस दोनों में दबाव बनाया। हाफ टाइम तक इंडिया 34-14 से आगे था और उसने दो बार प्रतिद्वंदी को ऑल आउट किया। दूसरे हाफ में भी अर्जुन देशवाल, देवांग, अयान, राहुल और पवन कुमार जैसे रेडर्स ने स्कोरिंग जारी रखी, जबकि जयदीप, सुमित और सुनील कुमार ने डिफेंस में इंडिया की पकड़ बनाए रखी। आखिरकार इंडिया ने दूसरे हाफ में 29 पॉइंट जोड़ते हुए मुकाबला 63-31 से अपने नाम किया। पूरे मैच में इंडिया ने 3 ऑल आउट, 17 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल पॉइंट्स हासिल किए। दक्षिण कोरिया की तरफ से कैप्टन ली जांगकुन ने सुपर 10 जरूर दर्ज किया, लेकिन इंडियन टीम की लगातार अटैकिंग और डिफेंसिव प्रेशर के सामने कोरिया वापसी नहीं कर सका। इंडिया ने इस तरह ग्रुप ए में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब इंडियन मेंस टीम का अगला मुकाबला 23 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा, जहां टीम जीत की इस लय को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी।
1: हॉकी की भी यही कहानी है। वहां गोल्ड मेडल जीतना केवल शक्ति दिखाने और साख के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ घटा आज हॉकी के मैदान पर, आइए सुनते हैं।
2: मेंस हॉकी में इंडिया ने आज अपने अटैकिंग अंदाज का शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 16-1 से करारी शिकस्त दी। इंडिया की हॉकी टीम से इसी तरह के हैवी परफॉर्मेंस की उम्मीद हमेशा रहती है, और आज मैदान पर टीम ने उसी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह जस्टिफाई किया। पूल ए में ये इंडिया की लगातार दूसरी जीत है और दो मैचेस में इंडिया अब तक 29 गोल कर चुका है। इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरे हाफ में भी अटैकिंग मोमेंटम बरकरार रहा और इंडिया ने कुल 16 गोल दागे। इस शानदार स्कोरिंग परफॉर्मेंस में जुगराज सिंह ने 4 गोल्स किए, जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने भी 3-3 गोल्स के साथ हैट्रिक्स पूरी करी। और इंडिया के डिफेंसिव स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे मुकाबले में श्रीलंका को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला। यानी इंडिया ने सिर्फ गोल्स के सामने नहीं बल्कि अपने डिफेंस में भी श्रीलंका पर लगातार दबाव बनाए रखा। श्रीलंका के लिए सुरेश रत्नायके ने 50वें मिनट में एकमात्र गोल किया, जो एशियन गेम्स में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका का पहला गोल भी रहा। अब इंडिया का अगला पूल ए मुकाबला 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ होगा।
1: अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग की तरफ, जहां आज चुनौती कड़ी थी। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजों से जो उम्मीदें हैं, उनका वजन भी बढ़ गया है। लेकिन दबाव में भी दमखम दिखाते हुए इंडियन बॉक्सर्स ने अपना वर्चस्व कायम रखा। सबसे पहले महिलाओं की 51 किलोग्राम की कैटेगरी, जहां साक्षी चौधरी के सामने थी पेरिस ओलंपिक्स की मेडलिस्ट फिलीपींस की आयरा विलिगास। लेकिन साक्षी ने तो मानो प्रतिद्वंदी को मौका ही नहीं दिया, शुरुआत से ही बाउट को डोमिनेट किया और अंततः सर्वसम्मति से मुकाबला जीत प्री क्वार्टर्स में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट वॉज जादूमणि सिंह इन द मेन्स 55 किलोग्राम कैटेगरी। ही वॉज अप अगेंस्ट नेपाल्स चंद्र बहादुर थापा एंड द सेम स्टोरी रिपीटेड। जादूमणि डोमिनेटेड द फाइट एंड इवेंचुअली वॉज हेल्ड एज द बेटर बॉक्सर ऑन ऑल 5 कार्ड्स। He won his bout by a unanimous decision and made it to the prequel.

0: क्वार्टर फाइनल्स। चलिए अब बात करते हैं नई संभावनाओं की। भारत का एक और मेडल सुनिश्चित हो चुका है वुशु में। वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट्स कुंगफू से उत्पन्न हुआ एक खेल है और इसके सांडा इवेंट में दो फाइटर्स आमने सामने होकर एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते हैं। भारत की रोशबीना देवी ने इस इवेंट में 2018 में कांस्य पदक और 2023 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। 2026 में भी उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश पा कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर लिया है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि सेमीफाइनल जीत वो सिल्वर और हो सके तो गोल्ड पर भी निशाना साधेंगी। इसी इवेंट में पुरुषों की 56 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के आर्यन ने भी उम्मीदें जगाई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में उज्बेकिस्तान के सेडुला अब्दुराशिटोव के खिलाफ उनको हार मिली। वुशु में ही एक परफॉर्मेंस इवेंट भी होता है जिसको नानकुआन कहा जाता है। उसमें आज भारत की लांगलिन टोम्बी देवी शिरकत कर रही थी। हालांकि 10 खिलाड़ियों में उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया और मेडल की रेस से बाहर हो गई। फाइट स्पोर्ट्स की ही बात हो रही है तो जापान में ही उत्पन्न हुआ कराटे कैसे पीछे रह सकता है?
1: जी हाँ, कराटे में इंडिया के लिए आज का दिन मेडल के बेहद करीब पहुंचकर खत्म हुआ। सबसे पहले पुरुष कुमीते 84 किलोग्राम में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। चेतन ने पहले सेमीफाइनल में जॉर्डन के मोहम्मद अल जफारी का सामना किया लेकिन 0-8 से हार गए। इस रिजल्ट के बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह मिली। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चुंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चुंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। लेकिन इसके बाद फैसला सेंशु से हुआ। सेंशु उस एथलीट को मिलता है जिसने ओपोनेंट के स्कोर करने से पहले सबसे पहला अनकंटेस्टेड पॉइंट हासिल किया हो। चुंग ने पहला स्कोर किया था इसलिए टाई होने पर सेंशु के आधार पर उन्हें विनर घोषित किया गया और चेतन ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। अब महिला कुमीते 55 किलो की कैटेगरी में अलीशा चौधरी को राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया की चौक एस्त्री सानिस त्रयानी से 1-6 से हार मिली। अलीशा ने 1 यूको स्कोर किया जबकि सानिस त्रयानी ने 3 यूको और 1 इपोन के जरिए 6 पॉइंट्स हासिल किए। अलीशा का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 16 में समाप्त हुआ। इस तरह कराटे में इंडिया के दोनों एथलीट्स मेडल कंटेंशन में पहुंचे लेकिन चेतन भट्ट का बेहद करीबी 1-1 ब्रॉन्ज मेडल बाउट और सेंचू का फैसला आज के मुकाबलों का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा रहा।
0: संघर्ष और सफलता का ये मिला जुला खेल बैडमिंटन कोर्ट पर भी देखने को मिला। क्वार्टर फाइनल में जहां महिलाओं की टीम को हार मिली तो वहीं पुरुषों ने जापान की मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच अपने लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। डिटेल्स बता रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन बैडमिंटन द इंडियन वुमेन्स टीम कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर अ 1-3 लॉस टू जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स। द फर्स्ट मैच वाज प्लेड बिटवीन पीवी सिंधु एंड अकाने यामागुची ऑफ जापान वेयर पीवी सिंधु डिस्पाइट हैविंग वन द फर्स्ट गेम वेंट ऑन टू लूज द नेक्स्ट टू अकाने यामागुची। इन द नेक्स्ट मैच उन्नति हुडा ऑफ इंडिया लॉस्ट टू तोमोका मियाजाकी। द थर्ड मैच वाज प्लेड बिटवीन त्रिशा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद ऑफ इंडिया हु बीट युकी फुकुशिमा एंड मायू मात्सुमोतो ऑफ जापान। येट दिस विक्ट्री वॉज नॉट इनफ फॉर इंडिया टू बी एबल टू डिफीट जापान इन टोटैलिटी because the last match that was played between Tanvi Sharma of India and Nozomi Okuhara of Japan, we saw Tanvi Sharma losing to her Japanese opponent. We now move on towards the men's team event in badminton quarterfinals. The first match in this was played between Lakshya Sen of India, who beat Japan's Kodai Naraoka in a very thrilling 66-minute encounter to give India a 1-0 lead in the men's team quarterfinal tie. This victory thereby set the momentum and pace for the next shuttlers who were to represent India in the second match. Because in that match also we saw India's Chirag Shetty and Satwik Ranki Reddy up against Japan's Hoki Takuro and Kobayashi, whereby they pulled out a brilliant victory from the hands of Japan by defeating them in straight games to win the match 2-0 in favor of India.
0: It was a mixed bag.

0: overall in racket sports. In table tennis, the men's team lost to South Korea, while the women defeated Thailand and made it to the quarterfinals. However, their North Korea came in their way.
1: Let's now talk about table tennis. Indian women's table tennis team beat Thailand 3-2 in a hard-fought match at the Asian Games 2026, advancing to the quarterfinals. In a dramatic turnaround in table tennis, India's Srija Akula conceded the final three games after taking a 2-0 lead early on. In the second game, India's Yashaswini Ghorpade win against Suthasini Savitabu to keep India's hopes alive. The Achitale went down in another five-setter, losing to Jineppa Savitabu of Thailand. In the fourth game, Yashaswini Ghorpade defeated Orawan Paranang, and finally Srija Akula won a crucial match against Suthasini, help India secure the overall victory. The final scoreline read 3-2 in favour of India.
0: टीटी और बैडमिंटन के अलावा एक और रैकेट स्पोर्ट एशियन गेम्स का हिस्सा है, जहां पर भारत की पदक की उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टेनिस की।
1: आद्या तिवारी सफर्ड 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा जिलगर इन द वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी मैच। लेटर इन द डे इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जैमीना टुक ऑन अरेन हुसैन इन मेन्स सिंगल्स ग्रुप डी क्लैश, वेयर इंडिया बीट पाकिस्तान। जैमीना सिंपली वॉज द बेटर प्लेयर अगेंस्ट पाकिस्तान्स अरेन हुसैन। द इंडियन टुक द मैच अवे फ्रॉम हिम कम्प्लीटली, फिनिशिंग द मैच विद अ स्कोर लाइन ऑफ 4-2, 4-0, 4-2, 4-0, देयर बाय कम्प्लीटली आउट प्लेइंग हिज अपोनेंट।
0: इसके बाद रुख करते हैं फेंसिंग का।
2: फेंसिंग यानी तलवारबाजी में इंडिया के लिए दिन मिला जुला रहा, लेकिन वुमेन्स ईपी में तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 16 तक पहुंचकर सबसे लंबा सफर तय किया। चारों इंडियन फेंसर्स ने पहले अपने रिस्पेक्टिव पूल बाउट्स के जरिए नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 से आगे का मुकाबला हुआ। सबसे पहले वुमेन्स ईपी तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 32 में थाईलैंड की नाथपपात सांगनियो को 15-10 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहां उनका सामना हुआ साउथ कोरिया की रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सोंग सेरा से। तनिक्षा ने बड़ी चुनौती दी, लेकिन 9-15 से हार कर उनका कैंपेन समाप्त हुआ। यह भी खास है कि तनिक्षा इस साल सीनियर वुमेन्स ईपी में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। इसी कैटेगरी में मितवा चौधरी का मुकाबला चाइना की योंग रिंगवेन से बेहद करीबी रहा। मितवा ने तीनों पीरियड्स में फाइट जारी रखी, लेकिन अंत में सिर्फ एक पॉइंट के अंतर से 14-15 से हार गई। अब अगर चले मेंस फॉइल स्पर्धा की तरफ, हिमांश सिंह और सचिन दोनों ने पूल स्टेज में 3 जीत और 2 हार के साथ राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी। राउंड ऑफ 32 में हिमांश ने कजाकिस्तान के गलीम नूरुमूव के खिलाफ पहले पीरियड में 6-5 की बढ़त बनाई, लेकिन नूरुमूव ने वापसी करते हुए मुकाबला 15-9 से जीत लिया। वहीं सचिन को कजाकिस्तान के टिमोफी ने भी 15-9 से हराया। इस तरह मेंस फॉइल में दोनों इंडियन फेंसर्स का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 32 में हुआ समाप्त।
0: जहां इन खेलों में मिला जुला रिजल्ट रहा, तो वहीं स्विमिंग और शूटिंग में पदक आते आते रह गया, और बता रहे हैं अभिनव।
3: आर्यन नेहरा वॉज एन एक्शन फॉर इंडिया इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन इन द मेन्स 1500 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल बी। आर्यन ट्राइड हिज बेस्ट, स्ट्राइव्ड हार्ड, बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश्ड फोर्थ एंड केम सो क्लोज इन दैट मेन्स कॉम्पिटिशन। The Indian men's 4x100 meter medley relay team comprised of Utkarsh Patil, Danush Suresh, Benedict Beniston and Akash Mane. The men's team finished 7th and then qualified for the final, and there were huge expectations that they would show some outstanding performances in the pool. However, when it came to the final, the competition was fierce. It was really tough. While the Indian swimmers strived hard, they unfortunately finished last and 8th in the medley relay final. It was really tough competition for India. And it was a great experience for them, while China once again took the gold in the swimming pool.
0: फिर शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल हासिल कर लेने वाली एला वलेन वलारीवन के पास मौका था मिक्स्ड टीम में भी पार्थ माने के साथ पदक पर निशाना साधने का, पर वो चौथे पायदान पर रही।
3: द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ एला वेनिल वलारिवन एंड पार्थ माने फिनिश्ड 4th इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल एट द एशियन गेम्स 20। 26 in Aichi Nagoya, Japan. In the qualification round, Valarivan and Parthmanesh shot a strong combined score of 634.6, finishing second to qualify for the medal round. However, in the medal round, the duo scored 376.3 in the final, maintaining the fourth position from the opening series and missed out on a podium finish. And as usual,

0: Samuel, as we have seen in the Asian Games, China won the gold medal with a world record score in the event. The qualification round score of the Indian athletes was the best Asian Games record. Moving on to the men's and women's skeet competition. Talking about the men's team first, after 100 shots, the Indian men saw contrasting fortunes as the individual qualification rounds progressed. A.S. Naruka is currently in second place with a total of 96 points so far, putting himself in prime position to qualify for the individual finals. Miraj Ahmed Khan is positioned further down the order at 23rd place with a total of 91 points. While Bhavdev Singh Gill is ranked 35th following a tough run of series with a total of 86. Now when we talk about the skeet men's team finals, India stood at the end of day 2 in the 5th position with a total of 273 points. Meanwhile, in the women's skeet standings, the Indian women remain in contention for the finals, led by a strong push from Raisa Dhillon. Raisa moved up significantly to 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhaliwal was positioned just outside the top tier at 9th place with a total of 89 points, while Maheshwari Chauhan currently sits at 16th place with 85 points. The Indian women's team are in 3rd place with 266 points. A reminder that there are 125 shots in this event, and just 25 shots tomorrow will decide the team standing for both India men's and women's.
1: कुछ और खेल भी आज चर्चा का केंद्र रहे, उसके लिए चलते हैं विदुषी की तरफ।
2: आइए अन्य खेलों में सबसे पहले शुरू करते हैं सेपेक टेक रॉ में, जहां इंडिया के लिए आज का मुकाबला टफ रहा। मेंस टीम रीगू के ग्रुप बी में इंडिया को मलेशिया के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चलते हैं इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में इंडिया के प्रदर्शन के ऊपर, जहां इवेंटिंग टीम कैंपेन आज 7th पोजीशन के साथ खत्म हुआ है। टीम ड्रेसेज में इंडिया ने 112.40 पेनल्टी पॉइंट्स के साथ 7th प्लेस हासिल करा है। टीम जंपिंग में भी इंडिया का कैंपेन एलिमिनेशन के साथ समाप्त हुआ, और इस तरह टीम इवेंट में इंडिया मेडल कंटेंशन से बाहर रहा, लेकिन आशीष लिमाय का 6th प्लेस फिनिश आज इंडियन इक्वेस्ट्रियन कंटिंजेंट के लिए सबसे अहम प्रदर्शन रहा। ई स्पोर्ट्स के फुटबॉल में इंडिया का कैंपेन भी खत्म हो गया, जिनमें साहू और दानियाल शकील पटेल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-0 ड्रॉ खेला, जबकि मंगोलिया के खिलाफ स्केड्यूल्ड मैच में ओपोनेंट के डीएनएस रहने से इंडिया को वॉकओवर मिला। पॉइंट्स बराबर होने के बावजूद टाई ब्रेक में उज्बेकिस्तान आगे निकल गया और इंडिया नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गया। मेडल टैली की बात करें तो इंडिया इस समय 8th पोजीशन पर है, जहां उसके खाते में कुल 7 मेडल्स हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। मेडल टैली में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले स्थान पर है, जापान दूसरे एंड कोरिया तीसरे स्थान पर है।
1: कल एक बार फिर इसी समय हम पूरे दिन का हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। एडिटर स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं दर्पण टिकिया।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के

प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में लोग 100 दिनों से अधिक समय से इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकिंग, कारोबार, पढ़ाई और सूचना तक पहुंच प्रभावित हुई है। ग्रीस की वेबसाइट जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से पीओजेके में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के नेतृत्व में शुरू हुई विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया को न छोड़ें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने कभी गौर किया है कि अल्फाज अगर दिल से निकलें तो सीधा दिल में उतर आते हैं, और जब वही अल्फाज शेर और गजल की शक्ल में ढल जाएं तो जज्बात की एक नई दुनिया बस जाती है। दिल में हो तुम मगर सामने बैठा ना जा सके, दिल में हो तुम मगर सामने बैठा ना जा सके, हमसे तो अब खुदा अपना ही गम सहा ना जा सके। गजल सिर्फ एक मौसिकी नहीं है बल्कि एहसास है, और आज की शाम उन्हीं एहसासात के नाम। मैं हूं खुर्शीद, प्रोग्राम रंगी महफिल।

सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM के लहरों पर। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। अजाब, कभी अकेलेपन की खामोशी में कोई पुरानी आवाज़ गूंज जाती है और कभी कोई शोर यूं चुप जाता है जैसे वो आपके लिए ही लिखा गया हो। शायर कहता है कि कोई खामोश है इतना कि सदा देता है,

खामोश है इतना कि सदा देता है, हर कोई जख्म नहीं दिखाता मगर होता है। शायद यही वजह है कि जब हम तन्हा होते हैं तो गज़लें हमारी सबसे अच्छी साथी होती हैं, और मुझे यकीन है कि आपने भी महसूस किया होगा। वैसे मोहब्बत की अगर बात करें तो मोहब्बत का पहला एहसास या कहें कि एक मासूम सी मुस्कान होती है, एक बेख्याली और धड़कनों का तेज़ होना जो होता है वो मोहब्बत में ही होता है। और गज़लकारों ने इन एहसासात को कुछ नए अंदाज में कहा है। कहते हैं कि तेरा नाम लू जुबां से, तेरा नाम लू जुबां से, तेरा नाम हो जबां पे, मेरे इश्क की ये आदत भी अजीब है। क्या आपकी जिंदगी में कभी किसी ने ऐसा रंग भरा है जो आप उस रंग को हमेशा महसूस करना चाहते हैं? वैसे मुझे लगता है कि हर किसी की जिंदगी में कोई ऐसा जरूर होता है जो उसकी जिंदगी गुलजार कर देता है। बस फर्क इतना होता है कि किसी को वो जल्दी मिलता है और किसी को लंबा इंतजार करना पड़ता है। बहरहाल ये अगला कलाम आप तक पहुँचा रहा हूँ, यकीनन आपको पसंद आएगा।

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: जी हाँ साहब, आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 एफएम ग्लैरो पर। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। प्रोग्राम चल रहा है रंग महफिल। साहब, खुदा करे कि किसी को कभी अपनों की जुदाई का एहसास ना हो, क्योंकि ये हमें अंदर ही अंदर कहें कि खा जाती है जुदाई। और कब आप खुद को ही खो देते हैं आपको खुद पता नहीं चलता। ये ऐसा दर्द है जो सुकून तो देता है पर बेचैन भी करता है। पर कुछ लोग बिछड़ते भी नहीं हैं मगर साथ भी नहीं रहते। इस पर शायर कहता है कि मत कर यकीन उनका मेरे दोस्त, मत कर यकीन उनका मेरे दोस्त, जो मिलते हैं किसी से और होते हैं किसी के। वो कहीं भी गया लौट तो मेरे पास आया, वो कहीं भी गया लौट तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी है मेरे हर जाए की। वैसे शायद किसी की यादें आज भी आपकी सांसों में घुली हुई हैं। चलिए उनकी याद में एक और कलाम आप तक पहुंचाते हैं।

कभी कभी गज़लें सिर्फ किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने लिए भी होती हैं, जब हम खुद से मिलते हैं और अपने सच से मुलाकात करते हैं। मैं किसके हाथ पे अपना लहू ढूंढता रहूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू ढूंढता रहूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दास्ताने। ये अगली गज़ल है उन लम्हों के लिए जब हम सवाल भी खुद करते हैं और जवाब भी खुद ही देते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल

0: प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM की लहरों पर। इस वक्त खुर्शीद आपके साथ है। और साहब, जब हम गजलों की बात करते हैं, गजल का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, और जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है तब गजलें रोशनी का काम करती हैं। एक उम्मीद एक किरण की तरह होती है, मानो सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। और फिर शायर भी कुछ कहता है कि ये माना जिंदगी है चार दिन की, ये माना जिंदगी है चार दिन की, मगर हर दिन को जीना चाहिए। वैसे गज़लों की अगर मैं बात करूं तो गज़ल जो है वो हमें कहें कि मोहब्बत में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और जब हम गमज़दा होते हैं तब भी हमें गज़लों का सहारा होता है। इसलिए हर हाल में जो गज़लें हैं वो ऐसा लगता है कि हमारे दिल के अल्फाज जो है वो गज़लों के गज़लों से बयां किए जा रहे हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जैसा आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM की लहरों पर। इस वक्त खुर्शीद आपके साथ है और प्रोग्राम आपका अपना पसंदीदा चल रहा है जिसका नाम है रंगे महफिल। भीड़ में भी तन्हा होना, ये एहसास आजकल आम हो गया है और गज़लें हम तन्हाई के आहट को बयां करती हैं, हमारी तन्हाई के आहट को बयां करती हैं और कहते हैं कि दिन में लोग सोने नहीं देते और रात में तन्हाई जो है वो हमें जगाए रखती है। और शायर कहता है कि कौन कहता है शहर में कोई अपना नहीं है, कौन कहता है शहर में कोई अपना नहीं है, कोई छुप के मेरी तन्हाई में आता जरूर है। बहरहाल अब अगला कलाम आप तक पहुंचा रहा हूं। यकीन मानिए कि गज़लों का ये सिलसिला जो है वो ऐसा लगता है कि बस चलता ही रहे और वक्त कहता है कि अभी हमें ठहरना होगा। बहरहाल अभी एक और गज़ल मैं आपको अब तक पहुंचाऊंगा, फिलहाल ये सुनते हैं।

क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने कोई वादा किया हो और निभाया ना हो? और मुझे लगता है कि ऐसा सभी के साथ हुआ होगा। वैसे बेवफाई के शेर सीधे दिल में उतर आते हैं, और शायर भी कहता है कि वो भी क्या दिन थे जब हम हर बात पे रो देते थे, अब मुस्कुराने की आदत भी अजीब सी लगती है। बहरहाल गज़लें सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि ज़िंदगी के फ़लसफे भी सिखाती है। हसरतें, शिकवे, सफ़र, सब कुछ गज़ल मोहब्बत में भी अच्छी लगती है, और वहीं दूसरी तरफ तन्हाई और जुदाई में भी सुकून देती है। बहरहाल अब ये गज़ल का जो सफ़र है यहीं पर अब थमता है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल इस प्रोग्राम से इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।

बहुत खूबसूरत रंगे महफिल खुर्शीद की तरफ से और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के साथ ये कार्यक्रम अब विदा ले चुका है, क्योंकि कैलेंडर बदल चुका है। कैलेंडर का मतलब दिन बदल चुका है, अब मंगलवार नहीं है दोस्तों, अब हम बुधवार में दाखिल हो चुके हैं। और 0000 हमें दिखने लगा है अपने सिस्टम पर, यानी 0 आवर्स का हो चुका है टाइम। लेकिन उससे पहले एक सिलसिला है जिसका निर्वाह हमें करना ही होता है, और वो है मुख्य समाचार अब तक के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा कि सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इनका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की, इसमें उत्तर प्रदेश की 10 और एक उत्तराखंड की सीट भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को रवाना किया। कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। औषधि नियंत्रण विभाग ने दिल्ली के भागीरथ पैलेस स्थित एक फर्म से करीब 2 लाख रुपए मूल्य की 481 यूनिट नकली रैबीज वैक्सीन जब्त की है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज और कल के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तर अटलांटिक में सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता, पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबिना देवी से भारत को और अधिक पद मिलने की उम्मीद। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा आप हमसे जुड़े हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। मैं हूं रजत, प्रोग्राम का आगाज करते हैं जिसका नाम है जीरो आवर शो, बस पल भर में।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, माँ का खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आज हमारे साथ अमराज कुमार जुड़े, अफशा खानुम जुड़ी और रिया दिल्ली से जुड़े। आप के अलावा भी बहुत मैसेज हमें मिले। फिलहाल इस अंतिम प्रस्तुति के साथ दीजिए जीरो और शो यहीं संपन्न करने की इजाज़त। जल्दी मिलेंगे अगले शो में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। रात्रि के एक बज चुके हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामिनी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांत पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 से अधिक हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और एक उत्तराखंड की सीट शामिल है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को रवाना किया। कहा, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। औषधि नियंत्रण विभाग ने दिल्ली के भागीरथ पैलेस स्थित एक फर्म से करीब 2 लाख रुपए मूल्य की 481 यूनिट नकली रेबीज वैक्सीन जब्त की। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज और कल के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिका और उत्तर अटलांटिका में सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। और जापान एशिया खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशबीना देवी से भारत को और अधिक पदक मिलने की उम्मीद। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल के साथ। रात्रि के 1:03 हो चुके हैं और हमेशा की तरह अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी रात। और इस प्रोग्राम में मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक बजकर 10 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, कभी मैं कहूँ। 1:24 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात मेरे यानी अर्चित के साथ।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

साथ रात्रि के 2 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामिनी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांत पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की। इसमें उत्तर प्रदेश की 10 और एक उत्तराखंड की सीट शामिल है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को रवाना किया। कहा, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। औषधि नियंत्रण विभाग ने दिल्ली के भागीरथ पैलेस स्थित एक फर्म से करीब 2 लाख रुपए मूल्य की 481 यूनिट नकली रेबीज वैक्सीन जब्त की। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज और कल के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिका और उत्तर अटलांटिका में सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु के स्टार खिलाड़ी रोशबीना देवी से भारत को और अधिक पदक मिलने की उम्मीद। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: अच्छा तुम ये तो गाओ, तेरे नैना
1: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो ये गाओ,

0: नमस्कार, बहुत ही ज़्यादा वाला स्वागत, एक ख़ास अभिनंदन आपके लिए, क्योंकि प्रोग्राम है भुलाए ना बने, और इसमें ख़ास अगर दुआ सलाम ना हो और दुआ सलाम और स्वागत सत्कार की अगर खासियत ना हो, कोई खसूसियत ना हो, तो वो थोड़ा जमेगा नहीं, आपको याद कैसे रहेगा। और ऐसी याद बनाना है हमें तो उसे जो आपको कभी भूले ना, तभी तो प्रोग्राम का नाम भी सार्थक होगा। कहीं आप किसी के साथ मोहब्बत में हैं, किसी के साथ लगाव में हैं, किसी काम को लेकर आप बहुत समर्पित हैं, तो आप कुछ उसमें ऐसा करना चाहते हैं दोनों तीनों सूरतों में, या घर परिवार के लिए, किसी खास खुशी के लिए जिसे आप कभी भूल ना पाए, वो सालों साल एक यादगार रहे आपके साथ। और जब आपको लगे कि मुझे याद करना, तो एक प्रोग्राम की अगर कड़ी हम जोड़ दें, किसी खास शो को अगर उसके साथ जोड़ दें, तो उसकी खसूसियत, तो उसकी विशेषता और बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा महत्व देने लगती है। तो ऐसी ही कोशिश करते हैं हम आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी, जहां आप हमें सुन पा रहे हैं देश और दुनिया के हर कोने हर हिस्से से, वहाँ हमारी कोशिश होती है कि इस तरह का प्रोग्राम कर जाए, उस तरह का कर जाए कि वो कभी भुलाए ना बने। भुलाए ना बने में मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ रजत, आकाशवाणी रेनबो पर, और आप जुड़ चुके हैं तो ज़रूर बताइए किस तरह की आप चाहते हैं कि पेशकश हो जो आपको। मैं गानों की फरमाइश की बात नहीं कर रहा, मैं जॉनर की बात कर रहा हूँ। मैं रात का भी ख्याल रखना है, क्योंकि सभी लोग तो इस वक्त सो रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन जो नहीं सोए हैं, किसी काम में हैं, कहीं ट्रैवल पे हैं, कुछ आप याद करने के लिए बैठे हैं, तो ज़रूर जुड़िए हमारे साथ और बताइए कि क्या आप मिस करते हैं जो भुलाए ना बनता हो आपसे। आपका एक बार फिर से खूबसूरती के इस प्रोग्राम में, खूबसूरत यादों के इस प्रोग्राम में स्वागत करते हुए मैं रजत आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप, और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।

तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। रात्रि के 3 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंतनाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामिनी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांत पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश

प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की। इसमें उत्तर प्रदेश की 10 और एक उत्तराखंड की सीट शामिल है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को रवाना किया। कहा, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। औषधि नियंत्रण विभाग ने दिल्ली के भागीरथ पैलेस स्थित एक फर्म से करीब 2 लाख रुपए मूल्य की 481 यूनिट नकली रेबीज वैक्सीन जब्त की। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज और कल के लिए मूसलाधार बारिश का अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तर अटलांटिक में सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और अधिक पदक मिलने की उम्मीद। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 3:03 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: 3:33 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

तो आपने भरपूर लुत्फ उठाया होगा मिडनाइट मेलोडीज का, उम्मीद करते हैं। गाने भी बहुत खूबसूरत है, 90 के दशक का अच्छा संकलन और अच्छी अच्छे संग्रह के साथ। हमें पता है, हमारे मैसेजेस बॉक्स में दिख रहा है, बहुत सलाहियत मिली है इस प्रोग्राम को। फिलहाल बज चुके हैं 4, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर ये वक्त है मुख्य समाचारों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए हैं। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और एक उत्तराखंड की सीट भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा कर दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को रवाना किया। उन्होंने

हाँ, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। औषधि नियंत्रण विभाग ने दिल्ली के भागीरथ पैलेस स्थित एक फर्म से करीब 2 लाख रुपए मूल्य की 481 यूनिट नकली रेबीज वैक्सीन जब्त की। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज और कल के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तर अटलांटिक में सुरक्षा को मजबूत बनाने के मकसद से डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या इसके साथ 7 हो गई है। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशेबिना देवी से भारत को और अधिक पद मिलने की उम्मीद है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। कार्यक्रम आने वाला है सारे गामा, मेरे यानी रजत के साथ जुड़े रहिए, नए पुराने गीतों को आनंद लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आप 102.6 पर तो हैं ही, साथ ही आप जुड़े हैं हमारे साथ हमारी ऐप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
2: तेरे ची नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी

0: एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, एसएमएस, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।